फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.6 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। आप हमारा प्रसारण मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी सुन सकते हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 9वीं तिथि, तदनुसार 30 जून सन 2026 5:56 होने को हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 6 बजने को है। अब आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम, जिन्हें हम मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
2: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से शुरू आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी।

0: सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। वे किसानों से सीधे संवाद करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी जाएंगे। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांव और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के पेट्रोल पंप पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मूज जल डमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए खतरा है। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले यात्रियों का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया। दोनों टीमें निर्धारित समय पर 1-1 गोल की बराबरी पर थी। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे ने जर्मनी को 4-3 से हराया। वहीं ब्राजील भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

नमस्कार। प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदनवार। आज का चिंतन भर्तृहरि के नीति शतकम के अनुसार विद्यारूपी धन सबसे श्रेष्ठ धन है, क्योंकि इसे न तो चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाइयों में इसका बंटवारा होता है और न ही ये कोई बोझ बनता है। ये ऐसा धन है जो खर्च करने पर हमेशा बढ़ता ही है। आइए अब सुने भक्ति संगीत।

अब से थोड़ी देर में सुबह 6:35 से सुनेगा श्री रामचरित मानस गान, इसका 235वां भाग आप सुन सकेंगे। आज सुबह 6:45 और संध्या 6:45 से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम संगीत सरिता। इसके अंतर्गत विविध भारती के खजाने से के अंतर्गत गायिका विदुषी डॉक्टर गंगूबाई हंगल से बातचीत सुनिएगा। सुबह 7 से भूले बिसरे गीत, 7:30 से हम है राही प्यार के, सुबह 8:15 से सुनेगा त्रिवेणी, आलेख एवं स्वर विधि जैन, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सुबह 8:30 से चित्रलोक, सुबह 9:30 और रात्रि 9:30 से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम आज के फनकार। इसके अंतर्गत संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के कल्याण जी पर केंद्रित यह कार्यक्रम सुनिएगा, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। सुबह 10 से आपको सुनवाएंगे पिटारा के अंतर्गत सेहतनामा, इसके अंतर्गत सुनिएगा डॉक्टर गौरव मेहता गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेप्टोलॉजिस्ट से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा भाग, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

सुबह 11 बजे और रात्रि 11 बजे से सुनिएगा कार्यक्रम रंग तरंग। दिन में 12:05 से यादों की महफिल। दोपहर 1 बजे से आपको सुनाएंगे कार्यक्रम सुरीला सफर। त्रिवेणी सुनिएगा दोपहर 2 बजे से। दोपहर 2:30 से आपको सुनाएंगे सदाबहार नगमे सखी सहेली। इस कार्यक्रम का वक्त होता है दोपहर 3 बजे से। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

शाम 4 बजे से सुनेगा पिटारा के अंतर्गत सेल्यूलॉइड के सितारे। इसके अंतर्गत गीतकार, शायर और लेखक शकील आजमी से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा भाग सुन सकेंगे। संपादन सहयोग काजल भद्रेगी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। छाया गीत का पुनर्प्रसारण आप सुनते हैं शाम 5:30 से तराने नए पुराने, शाम 6 बजे से हिंदी में समाचार, 6:05 संध्या सुनेंगे तराने नए पुराने का शेष भाग, शाम 6:30 पर झरोखा, शाम 6:35 से संध्या रंजन। फौजी साथियों के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा शाम 7 बजे से जयमाला। शाम 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनेगा पॉप एक्सप्रेस। रात 8 बजे से हवा महल के अंतर्गत सुनवाएंगे आपको नाटका, उनके महबूब लेखन विमला रैना का, निर्देशन लोचन बख्शी का। चित्रलोक सुनेगा रात 8:15 से। रात 9 बजे से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम आपके लिए। रात 10 बजे से सुनेगा छाया गीत, आलेख है उनसर ममता सिंह का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। और रात 10:30 से सुनेगा ढलती जाए रात। रात 11 बजे रंग तरंग। अभी आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत कार्यक्रम विवरण।

चित्रकूट जाते हुए श्री राम के राज्याभिषेक के लिए गुरु की आज्ञा पाकर भरत जी पवित्र तीर्थों का जल ले गए थे, किंतु वहां से श्री राम के स्थान पर वो केवल उनकी पादुका लेकर ही लौट सके। अब उस पवित्र जल की समस्या थी, जिसे किसी उचित स्थान पर तिरोहित करना था। चित्रकूट की सभा में भरत जी के सभी संशयों के समाधान के पश्चात अत्रि मुनि के परामर्श के अनुसार तीर्थों के पवित्र जल की स्थापना उस अगम कूप में की गई, जो निकट के पर्वत के समीप ही था। छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि ऋषि तथा अन्य साधु संतों समेत भरत जी उस अनादि स्थल पर पहुंचे, जो कालक्रम में लोप हो गया था। इसी कारण किसी को उस कुएं का पता भी न था। सेवकों ने पवित्र जल रखने के लिए उस जलयुक्त स्थान पर एक विशेष कूप का निर्माण किया। अत्रि ऋषि ने भविष्यवाणी की कि लोग इसे भरत कूप की संज्ञा देंगे। ऋषि ने उस स्थल विशेष

की महिमा श्री राम को भी सुनाई। अपने समग्र समाज सहित भरत तथा शत्रुघ्न ने चित्रकूट के उस वनखंड का विचरण करके प्रकृति की छटा का सुख प्राप्त किया।

0: संगीत सरिता।
1: मित्रों नमस्कार, संगीत सरिता में विविध भारती के खजाने से कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग्स हम आपके लिए चुनकर ला रहे हैं जो अपने आप में अनूठी हैं, क्योंकि वो दुर्लभ हैं और अमूल्य हैं। आइए आज सुनते हैं किराना घराने की वरिष्ठ गायिका विदुषी डॉक्टर गंगूबाई हनगल से डॉक्टर बिंदु माधव पाठक की बातचीत।
2: डॉक्टर गंगूबाई हनगल जी नमस्ते।
3: नमस्ते।
2: सुना है कि आपकी माता जी कर्नाटक संगीत पद्धति की विदुषी थी, फिर भी आपको हिंदुस्तानी संगीत के प्रति कैसी प्रेरणा मिली?
3: वो उस वक्त ऐसे है, ज्यादा हिंदुस्तानी सुनने को मिलता था। मेरी माई कर्नाटक गाती थी, हम किसी को नहीं सुना उस वक्त।
2: अच्छा।
3: इसलिए जो ग्रामोफोन रिकॉर्ड जी आते जाते चाय के दुकान में हो या किसी के घर में हो, हम सुनते थे। वो हम सुन के थोड़ा थोड़ा गाने लगे
2: हिंदुस्तानी संगीत।
3: अच्छा। उस वक्त झोरा भाई, जानकी भाई और पैरा साहेब, ऐसे लोगों के हमने, मुझे याद है वो नाम इतने, वो हमने गाने लगे थोड़े बहुत सुन सुन के घर में। मुझे, मेरे माँ को ऐसे लगा इसको हिंदुस्तानी संगीत पसंद है, इसको सिखाएंगे, इसलिए
2: हिंदुस्तानी संगीत
3: सिखाएंगे। अच्छा। बाद में वो थोड़ा इधर से धारवाड़ में हमारा जन्म है, बाद में मुझे

0: उस हुबली ले गई, वहां होलगर कृष्णाचार्य करके
1: संगीत विद्वान
0: हुए, अब्दुल करीम खान के शागिर्द थे। अच्छा। उसके पास एक साल तक हमने
1: शिक्षा
0: की। तो एक साल में मुझे ऐसा लगता है 50 धृत लय की वो चीजा बंदिश हमको बताए।
1: अच्छा।
0: मेरे आवाज पतला बहुत था।
1: अच्छा।
0: वो तो तीन तीन मिनट में एक एक बंदिश में दो दो ताने ऐसे कुछ वो बताए थे।
1: अच्छा।
0: हम ऐसे छोटा मोटा कहीं हमारे माँ का प्रोग्राम हम बीच में हुए, मैं भी गाती थी,
1: स्वर लगाती थी।
0: नहीं अलग से, क्योंकि मेरे माँ ने थोड़े बहुत शुरू में जो मुझे सिखाए स्वर के ज्ञान उनसे हो गया मेरे माँ से।
1: अच्छा।
0: हाँ, वो सुबह सुबह उस वक्त मुझे बहुत छोटी थी उम्र में, हाँ 9-10 साल की, 5 बजे मुझे उठाती थी।
1: अच्छा।
0: हाँ, कर्नाटक स्वर तो कर्नाटक हिंदुस्तानी तो अलग नहीं है,
1: बिल्कुल।
0: इसलिए स्वर का साधना मेरे माँ से मिल गया।
1: अच्छा।
0: हाँ, वो उनकी पद्धति से मुझे रोज वो 1-1.5 घंटा सूर्यास्त करवाती थी। बाद में बीच में थोड़ा कुछ वजह से बंद हुआ, बाद में सवाई गंधर्व के पास थोड़े से बड़ी हुई थी, उस वक्त से हमने
1: उच्च शिक्षा
0: प्राप्त हो पाए।
1: डॉक्टर गंगूबाई जी।
0: हाँ।
1: आप तो किराने घराने की प्रसिद्ध गायिका हैं।
0: हाँ।
1: क्या आप किराना घराने के विशेषता के बारे में कुछ बताएंगे?
0: किराने घराने ऐसे हैं, स्वर अच्छी तरह से लगाना, बाकी का बेसुर गाते ऐसे नहीं,
1: बिल्कुल।
0: हाँ। ये स्वर में ज्यादा ध्यान रखे हैं, इसलिए वो तो ऐसे बोलते हैं तंत्रवाद्यकार थे इनके पूर्वज, ऐसे कैसे भी वो ज्यादा स्वर का ध्यान रखते, स्वर के ज्यादा महत्व देके, स्वर एकदम आ करके नहीं लगाएंगे, उसको गोल ऐसे आ ऐसे करके लगा के एकदम स्वर में गाड़ना बोलते हैं, क्या बोलते मुझे याद नहीं,
1: मग्न हो जाना।
0: हाँ, हाँ, ऐसे गाने का हमारे किराने घराने की पद्धति है।
1: क्या आप गुरु की पद्धति में विश्वास रखती हैं?
0: हाँ जरूर, क्यों नहीं, क्योंकि हम आजकल देखते हैं सभी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में संगीत है, फिर वो अच्छे हैं, क्योंकि प्रचार के लिए गायक बनना हो तो गुरुकुल पद्धति चाहिए, नहीं तो उनके लिए क्या होता है, किस घराने से जाना, किसके पास सीखना, ये कुछ मालूम हो जाता है उनको।
1: अच्छा।
0: हाँ, गायक बनने के लिए गुरु पद्धति, मैंने तो शिक्षा पाई है, मुझे उस विश्वास इसी में है।
1: अच्छा, आप नए छात्रों के लिए क्या देने के, कैसे रियाज करना चाहिए और रागों की बढ़त कैसी करनी चाहिए?
0: वो तो किसी का आवाज पतला रहते हैं, किसी का बुद्धि अच्छा रहता है, आवाज नहीं रहती, वो गुरु ने बताना चाहिए किस पद्धति से वो
1: रियाज
0: करना। हमको तो हमारे गुरु जी ने एक एक स्वर का सुबह बैठने से तोड़ी शाम में मुल्तानी ऐसे हमको रियाज करने के लिए मुझे बताए थे। ऐसे एक एक स्वर षड्ज नीचे जितने जाता है खर्च पे उतने एक एक स्वर, सांस जब तक है उस तक एक एक स्वर
1: कहना चाहिए।
0: और बाद में उसका ताने के तरह एक एक श्वास में कितनी दफे ताने आते हैं, सा नी रा पा दा नी सा ये जो है इस श्वास बढ़ाते ऐसे इतनी 6-7 कितने आते हैं इतने ऐसे हमको बताए थे। और विस्तार करने में 3 स्वर सारेगा गारेगा इतनी उनके अलग अलग
1: ढंग
0: होता है। बाद में गांधार के बाद मध्यम के बाद ऐसे जितने हमारे बुद्धि काम करेगा करना गाना ये हमको सिखाए उसको।
1: अच्छा।
0: रास्ता ठीक बताना ये गुरु का काम है।
1: तो आप कहते हैं कि संस्थाओं में जैसे कि यूनिवर्सिटी हो या संगीत के महाविद्यालय हो वहाँ संगीत की शिक्षा, यानी कि वहाँ से कोई संगीतकार नहीं
0: बढ़ पाता? हमने तो देखे ही नहीं ऐसे, क्योंकि क्या होता है स्कूल से वो थोड़ा बहुत संगीत हो तो हो जाता है और एकदम कॉलेज में आना, कॉलेज में जब आते हैं 16 वर्ष तो हो जाते हैं, उस वक्त कहीं ना कहीं संगीत शुरुआत होते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है स्कूल से, आजकल हम देखते हैं स्कूल में प्रार्थना का अगर दूसरे कोई उनको पता नहीं, साल में एक गायक उसमें से निकलते हैं, बहुत कुछ होगा। हाँ।
1: तो आजकल आपको किस तरह के श्रोता मिलते हैं, यानी कि शास्त्रीय संगीत के प्रति?

0: रुचि रखने वाले या
1: वो हमारे लिए तो ऐसा नहीं होता, हम जो गाते वही सुनने वाले ही हमको मिलते हैं।
0: अच्छा,
1: आज कल उनको पता है गंगू भाई दूसरे कोई कुछ नहीं गाएगी, वो जो सुनने वाले वही आते हैं, मुझे कोई फरमाइश नहीं करते।
0: अच्छा,
1: शुरू बचपन में सब कुछ गाती थी हम, मराठी गजल ठुमरी हमने, मुझे बाद में ऐसे लगा इसमें करने का मुझे फुर्सत नहीं मिलते।
0: अच्छा,
1: ये मुझे मेरा ये है वो।
0: अच्छा,
1: इसलिए यही गाते चले आए हमने।
0: छात्रों के लिए आपका क्या आदेश है?
1: श्रद्धा भक्ति से जो गुरु बताते हैं एक करना, फिर विश्वास से।
0: अच्छा, आप इतने राग गाती हैं, उनमें से आपको अत्यंत प्रिय कौन सा राग है?
1: कभी कभी एक एक राग जम जाता है
0: जी।
1: ज्यादा से ज्यादा से करुणा रस सुबह का राग मुझे ज्यादा मुझे गाने के अच्छा लगता है
0: जी।
1: वो प्रोग्राम में तो सभी राग एक एक दफे हमको ऐसा लगता है ये राग मुझे इतनी नहीं, फिर वो ही जम जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, ज्यादा से कोमल स्वर का मुझे मुझे पसंद।
0: क्या आप एक उनकी झलक दिखाएंगे किसी एक राग में?
1: अच्छा।

0: करता है ज्यादा से ज्यादा से करुणा रस सुबह करा मुझे ज्यादा मुझे गाने के अच्छा लगता है वो प्रोग्राम में तो सभी राग एक एक दफे हमको ऐसा लगता है ये राग मुझे इतनी नहीं फिर वो ही जम जाता है कभी कभी ऐसा हो जाता है ज्यादा से कोमल स्वर का मुझे मुझे पसंद
1: क्या आप एक उनकी झलक दिखाएंगे किसी एक राग में
0: अच्छा ये जो हम बता रहे हैं कोमल रेखा वसावरी
1: जी
0: हाँ।

0: धन्यवाद डॉक्टर नागोबेन जी।
1: आज आपने सुनी बातचीत किराना घराने की वरिष्ठ गायिका विदुषी डॉक्टर गंगूबाई हनगल से डॉक्टर बिंदु माधव पाठक की बातचीत। आकाशवाणी धारवाड़ केंद्र पर रिकॉर्ड की गई ये बातचीत वर्ष 1990 में विविध भारती के संगीत सरिता कार्यक्रम में प्रसारित हुई। इसकी प्रस्तुतकर्ता थी छाया गांगुली। वर्ष 1913 में जन्मी गंगूबाई हनगल जीवन भर संगीत की साधना करती रही। वैसी कठोर साधना, अथक परिश्रम और कड़े रियाज ने उन्हें गिने चुने शीर्षस्थ कलाकारों की पंक्ति में स्थान दिलाया। उनके अद्भुत कंठ से निकलकर सरों का जो आविष्कार होता था उसका कोई सानी नहीं। आज वो हमारे बीच नहीं है। वर्ष 2009 में वे असीम में विलीन हो गईं, परंतु उनकी आवाज हम सुन सकते हैं जैसे उनसे की गई ये बातचीत अभी हमने सुनी। इसी तरह आइए सुनते हैं उनका गाया हुआ राग चंद्रकौंस। 3 ताल में निबद्ध बंदिश के बोल हैं, कब घर आओ पिया।

सुन रहे थे विविध भारती के खजाने से। आज की कलाकार थीं विदुषी डॉक्टर गंगूबाई हनगल। अब संगीत सरिता कार्यक्रम समाप्त हुआ। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं मोहम्मद रफी और कमल बारोट की आवाजों में फूल बने अंगारे। इस फिल्म के गाने के साथ आनंद बख्शी ने लिखा है इसे और संगीत से संवारा है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: याद है तुझे वो मेरा तान तोड़ सांग
1: खपा है तो मुझे मुर्गे की
0: याद है तुझे वो मेरा तान तोड़ सांग
1: खपा है तो मुझे मुर्गे की
0: तूने उसी बांग पे कहा था वन सवार।

0: खुशियां पर।
1: सुनिए
2: कहिए,
3: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना।
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
4: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
3: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
5: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
3: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
6: तुम्हारी याद सताते हैं
3: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में मजबूर फिल्म का गाना आनंद बख्शी है। गीतकार और संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

0: भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब सुनते हैं सुमन कल्याणपुर और कमल बारोट की आवाजों में दिल भी तेरा हम भी तेरे। इस फिल्म का गाना गीतकार हैं शकील नौमानी और संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है भूले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए कमर जलालाबादी का लिखा और कल्याण जी आनंद जी का संगीत बद्ध किया गाना। आवाजें हैं लता मंगेशकर और साथियों की, फिल्म का नाम छलिया।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे,
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर। जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: और किससे?
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक दिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश लीजिए, सुनिए आशा भोसले, उषा खन्ना और साथियों की आवाजों में छोटी बहू फिल्म से। उद्धव कुमार हैं गीतकार और संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है उन्होंने आकाशवाणी परभणी में, वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अब आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न हुआ, आगे दीजिए नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में अपराध फिल्म के गाने के साथ। इंदिवर के बोल और तर्ज बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने। हमारे सिवा तुम्हारे और कितने दीवाने हैं।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के। लीजिए सुनिए मजो सुल्तान प्रिका लिखा और आर डी बर्मन का संगीत बद किया गाना। आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम दो चोर।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे, तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता एक दिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: लीजिए अब सुनिए किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में धड़कन फिल्म का गाना। इसे लिखा है प्रेम धवन ने और संगीत से संवारा है रवि ने।
4: अरे अरे अरे अरे नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं। मैंने

0: मोहब्बत है।
1: हाँ हाँ
0: हमको तुम्हीं से मोहब्बत है।
2: अच्छा हो दीवाने वरना मारूंगी एक गुस्सा।
0: मैंने पहली ही बार देखा गुस्सा हसीनों का, पहली ही बार देखा गुस्सा।
2: कैसा लगा गुस्सा?

0: ने पहली ही बार देखा गुस्सा, हसीनों का पहली ही बार देखा गुस्सा। सुनो सुनो तो
1: नहीं।
0: सुनो भी
1: नहीं।
0: मैंने यूं ही छेड़ा था तुम अकड़ गए, छोटी सी एक बात पर क्यों बिगड़ गए।
1: हमको तो हक है रूठ जाने का, फर्ज तुम्हारा है मनाने का।
0: वो तो है,
1: जब तक ना रूठा रूठी हो थोड़ी आए ना मजा दिल लगाने का। आए हाय हाय हाय आए ना मजा दिल लगाने का।
0: फिर तो प्यार में हम दोनों का पूरा पूरा हिस्सा, मैंने पहली ही

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है हम हैं राही प्यार के। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में पिया का घर फिल्म का गाना। आनंद बख्शी हैं गीतकार और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश आशा भोसले किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में परिचय फिल्म से। इसे लिखा है गुलजार ने और तर्ज आर डी बर्मन की है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने पहली जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थाई प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। हमलों में 36 नागरिकों की मौत और 163 अन्य घायल। अमेरिका और ईरान हुरमुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थाई प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर पहली जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में UCC लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि विधेयक की मसौदा गुरुवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। गुजरात, उत्तराखंड और असम की तर्ज पर सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन देसाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति विवाह, तलाक सहित कुल 9 विषय पर अध्ययन करेगी और 4 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जनजातियों, आदिवासियों

0: कुर्मी और प्राचीन स्वदेशी समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दो महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। एक रिपोर्ट।
2: इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियम भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। सरकार का कहना है कि इससे देश में आधुनिक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी फिल्म उद्योग के विकास को बढ़ावा मिलेगा। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से दो दिन के आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान का वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के दो दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आज से आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। यह आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति 1 जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध ढंग से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
3: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
1: और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान भी आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। मंत्रालय ने कहा कि यह पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है। भारत ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। भारत

0: ने अफगानिस्तान की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भी अपना समर्थन दोहराया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। एक रिपोर्ट।
1: विश्व के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच मिसाइल हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही और व्यापार प्रभावित हुआ। हालांकि दोनों देशों ने कल अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई है। इस महीने हुए समझौता ज्ञापन की अलग अलग व्याख्या के कारण दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच होने वाली इस वार्ता में सुरक्षित नौवहन व्यापार क्षेत्र में तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। जम्मू में सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मॉकड्रिल भी आयोजित की है। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने और सुरक्षा बलों के निर्देशों का सहयोग करने की अपील की है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
2: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह ने हूल दिवस के अवसर पर क्रांतिकारियों और संथाल विद्रोह के अमर वीरों तथा वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र बिहार कोंकण गोवा महाराष्ट्र कर्नाटक केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओडिशा झारखंड उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मध्य प्रदेश विदर्भ छत्तीसगढ़ तेलंगाना तमिलनाडु पुदुचेरी और कारिक्काल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कल गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड बिहार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। जम्मू कश्मीर पूर्वी राजस्थान गुजरात मराठवाड़ा आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में बिजली कड़कने और आंधी आने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए मुकाबले में गैब्रियल मार्टिनेली ने अतिरिक्त समय में विजयी गोल दागा। अब अंतिम 16 में ब्राजील का सामना आइवरी कोस्ट या नॉर्वे से होगा। एक अन्य मुकाबले में पराग्वे ने जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने आज दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होने वाली नई ईवी नीति को अपने मुख पृष्ठ पर जगह दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की नई ईवी नीति जारी, खरीद पर बम्पर छूट मिलेगी। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, ईवी पॉलिसी रोड टैक्स रजिस्ट्रेशन जीरो। दैनिक भास्कर ने छापा है, 30 लाख रुपए तक की ई कार टैक्स फ्री, पुरानी कार स्क्रैप करने पर 1 लाख रुपए। दैनिक जागरण ने इसी खबर पर संपादकीय आलेख में लिखा है, सर्दियों के दिनों में दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हो जाती है, ऐसे में आवश्यक था कि राजधानी में प्रभावी ईवी नीति हो ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित किया जा सके। दिल्ली सरकार को ऐसे वाहन चार्जिंग प्वाइंट बनाने चाहिए जो वाहनों की बैटरी को तेजी से चार्ज करने में सक्षम हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा

0: तथा दसवीं कक्षा के मौजूदा सत्र के विद्यार्थियों पर त्रिभाषा नीति लागू न करने का फैसला भी कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान के बोल हैं, दसवीं के मौजूदा सत्र पर त्रिभाषा नीति लागू नहीं होगी। पंजाब केसरी ने लिखा है, त्रिभाषा नीति पर छात्रों को बड़ी राहत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राजस्थान पत्रिका ने फैजाबाद बार एसोसिएशन का फैसला छापा है। पत्र लिखता है, वकील नहीं लड़ेंगे आरोपियों का केस, संत बोले आस्था पर आघात। वीर अर्जुन लिखता है, आरोपियों का केस लड़ने वाले वकीलों पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना। 3 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा पर भी समाचार पत्रों की नजर है। दैनिक ट्रिब्यून ने बाबा बर्फानी के प्रथम दर्शन को सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने भी पवित्र दर्शन का मनोरम चित्र मुखपृष्ठ पर छापा है। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ मंदिर के सामने बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं की तस्वीर भी अमर उजाला ने छापी है।
1: धन्यवाद सर फिरोजी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी जाएगी। अमेरिका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: शौक, शौक बड़ी चीज होती है ना? जो मन करे वो कर लेना, क्या यही शौक है? नहीं, जो मन को अच्छा लगे वही कर लेना, ये शौक है? ये भी गलत है। सही तो तब है जब हम वो काम करें जिससे हमारे मन को खुशी मिले और करते करते मन में आह्लाद यानी बहुत सारी प्रसन्नता आ जाए, उसे ही कहेंगे शौक। अब शौक जो है उसका मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा स्थान है। शौक वो कार्य है जो अपनी खुशी, रुचि और मन की संतुष्टि के लिए करते हैं। अब कई लोग होते हैं जो चित्रकारी करते समय कहीं खो ही जाते हैं। कई बार आवाज देने के बाद ही वो उस ओर ध्यान देते हैं। कई बार कोई खेल खेल रहा होता है, उसका ध्यान ही नहीं होता। कोई गाना गा रहा होता है, उसमें ही खो जाता है। और कोई तो किताबें पढ़ते पढ़ते एक अलग ही दुनिया में चला जाता है। नृत्य करने वाला अपने जीवन की सारी परेशानियों से मुक्त हो जाता है। और बागवानी करते करते तो कोई फूलों के साथ हंसना और बोलना शुरू कर देता है। शौक जीवन को आनंदमय, उत्साहपूर्ण बनाते हैं। और आज का जीवन कितना व्यस्त है, कितने तनावपूर्ण जीवन में जी रहे हैं, तो ऐसे में जो शौक है ना, वो आपको ताजगी देते हैं और शांति प्रदान करते हैं। और इसी शौक के साथ में हम अपने जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हैं।
1: पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, नशा, शराब,
2: तो फिर
1: हमको तो नशा है।

0: शेख चिल्ली का ये ख्वाब, अरे एक जर्रे की ये जुर्रत, छूना चाहे आफताब।
1: किबला खादिम पे न कीजिए इस कदर गुस्सा फिजूल, मैं हूँ आशिक इश्क में, मरना भी है मुझको कबूल।
0: तो मरेगा?
1: हाँ जी मरेगा।
0: ये जो कहेगी करेगा?
1: हाँ जी करेगा करेगा।

0: को कहे बाप तो मैं बाप कहूंगा, गधे को कहे बाप तो मैं बाप कहूंगा, फिर आपको भी आप नहीं बाप कहूंगा।
1: What?
0: ये जो कहे

0: मोहब्बत का झंडा।
1: शौक कब आता है, कहां से आता है और कैसे आता है, ये प्रश्न सबके मन में होते हैं। कभी कोई कहता है कि पिछले जन्म में यही काम करते रहे होगे, इसीलिए तो इस जन्म में उस चीज का शौक है। पर ऐसा नहीं है, शौक अलग ही चीज है। बस वो काम करते करते मन को सुकून मिल जाए और जिस काम को भी कर रहे हैं वो करते करते आत्मिक शांति मिल जाए, शायद इसे ही शौक कहेंगे। और ये जो शौक है इसके कई सारे फायदे हैं। मानसिक तनाव कम होता है। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई काम करने का मन नहीं है, परंतु जबरन या आवश्यकता अनुसार उसे करना पड़ता है। और करते करते, लगातार उस कार्य को करते करते जब बोर हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं, तो थोड़ी देर, किंचित समय के लिए ही अपने शौक को पूरा करना शायद मन को शांति ही दे दे, और फिर से नई ऊर्जा के साथ हम वो कार्य कर सकते हैं जो करने में हमें बहुत ज्यादा मन नहीं लग रहा है। या आज के जमाने में मोबाइल इंटरनेट पर रहने की जगह कोई व्यक्ति अपने शौक के काम करके अपना समय बचा सकता है और अच्छे कार्यों में लगा लेता है, और व्यक्तित्व का विकास भी होता है।

अब एक और बात मन में आती है कि यदि किसी व्यक्ति ने शौक को ही पेशा बना लिया, जैसे बचपन से कोई गाना गाना चाहता था और वो गायक बन गया, जैसे किसी को बातें करने का शौक था और वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताने लगा, या कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे चित्रकारी का शौक था और उसने उसे ही अपना शौक, उस शौक को ही अपना पेशा बना लिया और निकल पड़ा इस दुनिया के उस युद्ध में जहां से उसे कमाना है पैसा भी और भोजन भी, तो इससे फायदा क्या होता है या नुकसान क्या होता है? तो हालांकि इस बात से तो फायदा ही फायदा है, क्योंकि आपने अपने शौक को ही पेशा बना लिया तो और अधिक मेहनत लगन से आप काम करेंगे, उसमें नई नई आवश्यकताएं खोजेंगे, नए नए अनुसंधान करेंगे, काम में खुशी और संतोष मिलेगा, व्यक्ति अपनी प्रतिभा का पूरा उपयोग कर पाएगा, तनाव तो बढ़ेगा ही नहीं, सफलता और प्रसिद्धि भी मिल जाएगी और आर्थिक लाभ तो होगा ही, साथ में होगी मानसिक संतुष्टि भी। तो कभी अगर मौका मिले अपने शौक को अपना व्यापार या अपना व्यवसाय बनाने का तो जरूर बना लीजिए।

अब एक और प्रश्न आता है कि बच्चों को किस चीज का शौक है ये कैसे पता करें। बहुत आसान है, माता पिता ही अपने बच्चे का मूल्यांकन करके उसकी गतिविधियों को ध्यान से देखकर उसके बारे में पता कर सकते हैं।

बच्चों को बच्चों की गतिविधियों से कैसे पहचाने, तो सबसे पहली चीज यह देखें कि खाली समय में वह क्या करना पसंद करता है, किस विषय पर अधिक प्रश्न आते हैं। कभी उसे खेल खिलाएं, कभी संगीत की ओर ले जाएं, कभी चित्रकारी कराएं, कभी नृत्य कराएं। जिसमें वो अच्छा है वही उसका शौक है। आज की त्रिवेणी में बस इतना ही। आज्ञा दीजिए विधि जैन को। नमस्कार।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं डेर इश्क फिल्म के गाने के साथ। इसे लिखा है गुलजार ने और संगीत से संवारा विशाल भारद्वाज ने। इसे गाया है रेखा भारद्वाज ने और गीत के बोल, नृत्य के जो बोल हैं, पंडित बिरजू महाराज के स्वर में।

0: ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान और शाश्वत सिंह की आवाजों में तू झूठी मैं मक्कार, इस फिल्म का गाना। लीजिए अब सुनिए ये गाना जिसे हमने लिया है तेरा क्या होगा लवली, इस फिल्म से।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए थप्पड़ फिल्म का गाना, शर्वी यादव ने गाया है इसे।

दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस है, यानी इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे। ये दिवस प्रतिवर्ष 30 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्षुद्र ग्रहों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना तथा पृथ्वी को उनसे होने वाले संभावित खतरों के प्रति लोगों को सचेत करना है। 30 जून 1908 को रूस के साइबेरिया क्षेत्र के तुंगुस्का में एक विशाल क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकरा गया था और लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर जंगल नष्ट हो गया था। इसी घटना की स्मृति में ये दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2016 से इसे आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। क्षुद्र ग्रह हमारे सौरमंडल के प्राचीन छोटे छोटे पिंड हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित पाए जाते हैं। वैज्ञानिक आधुनिक दूरबीनों और अंतर्राष्ट्रीय अभियानों के तौर पर सब लोग समेकित प्रयास से इसकी निगरानी करते हैं ताकि पृथ्वी की सुरक्षा निश्चित की जा सके। तो चलिए, चित्रलोक कार्यक्रम में अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं। कुमार ने लिखा इसे, मीत ब्रदर्स अंजन ने संगीतबद्ध किया है और मीत ब्रदर्स अंजन और स्टीवन बेन की आवाजें हैं। फिल्म का नाम शिमला मिर्च।

0: सुनिए एक खुशखबरी,
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम, जिन्हें हम मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। 9 बजे हैं, लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम के कलाकार हैं श्रवण कुमार साहू और साथी।
1: तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते, फिर खाए पिए के मामला मा एक ठन फॉर्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो, आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते। ये आप मन ला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर। तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते, फिर खाए पिए फोर्टिफाइड फूड होते। ये आप मन ला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़किन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मा सुपर हिट।
2: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
3: मम्मी मम्मी पापा आगे।
4: दक्ष, विराट, कन्हैया, तुहर मन भर मैं गरम गरम समोसा भजिया जलेबी लेके आया हूँ।
3: मम्मी प्लेट लाना।
5: प्लेट की क्या जरूरत है? तुहर ड्राइंग के कागज में खाओ। कतेक प्लेट ला, मैं मांजा धोत रहा हूँ।
6: ये मस्याही लगे है, समोसा खराब हो जाए, ये मैं नहीं खाना चाहिए।
5: ऐसने में खात खात उम्र बीत गए, कैसे जी?
4: हाँ जी,
3: कागज न्यूज पेपर मा तेल्हा फुल्हा खाए पिए के गरम जिनिस ला नहीं रखना चाहिए।
6: एमा केमिकल वाला स्याही लगे रही थे, जिन हा गरम जिनिस संग रासायनिक क्रिया करके ओला जहरीला बना देते।
3: ये कर अलावा प्लास्टिक थर्माकोल या डिस्पोजल कप गिलास मा चाय कॉफी पीना सेहत खराब करते।
2: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
7: आओ ननको भैया, कैसे हैं? होटल बढ़िया चला थे ना? ग्राहकी वगैरह ठीक है कि नहीं? रोको। अरे भैया, पहली जुन्ना तेल निकाल ले, तेकर बाद नवा तेल डालबे।
8: का है शिव भैया, तेल में तेल नहीं डालू तो जुन्ना तेल ला काय करू?
7: ताहू यार,
9: रियूट कुकिंग ऑयल योजना ले बायो डीजल बनाए जाते, जेकर ले आप और आपके वातावरण सुरक्षित रहे।
2: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
0: लोक संगीत के इस कार्यक्रम में पहले सुनिए ये देवी भजन श्रवण कुमार साहू और साथियों के स्वर में।

0: तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते। फिर खाए पिए के मामला मा एक ठन फार्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते। ये आप मन ला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़कीन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
1: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मा सुपर हिट।
2: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
3: मम्मी मम्मी पापा आगे।
4: दक्ष, विराट, कन्हैया, तुहर मन भर मैं गरम गरम समोसा भजिया जलेबी लेके आया हूँ।
3: मम्मी प्लेट लाना।
5: प्लेट के का जरूरत है? तुहर ड्राइंग के कागज में खाओ। कतेक प्लेट ला, मैं मांजा धोत रहा हूँ।
6: ये मस्याही लगे है, समोसा खराब हो जाही, ये मैं नहीं खाना चाहिए।
5: ऐसने में खात खात उम्र बीत गए, कैसे जी?
4: हाँ जी,
3: कागज न्यूज पेपर मा तेलहा फुल्हा खाए पिए के गरम जिनिस ला नहीं रखना चाहिए।
6: एमा केमिकल वाला स्याही लगे रही थे जिन हा गरम जिनिस संग रासायनिक क्रिया करके ओला जहरीला बना देते।
3: ये कर अलावा प्लास्टिक थर्माकोल या डिस्पोजल कप गिलास मा चाय कॉफी पीना सेहत खराब करते।
2: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
7: आओ ननकू भैया, कैसे हैं? होटल बढ़िया चलत है ना? ग्राहकी वगैरह ठीक है कि नहीं? रोको। अरे भैया, पहली जुन्ना तेल निकाल ले, तेकर बाद नवा तेल डाल बे।
8: का है शिव भैया, तेल में तेल नहीं डालू तो जुन्ना तेल ला काय करू?
7: ताहू यार,
0: रियूट कुकिंग ऑयल योजना ले बायोडीजल बनाए जाते, जेकर ले आप और आपके वातावरण सुरक्षित रहे।
2: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
9: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
10: जी,
9: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
10: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
9: पर ये होगा कैसे?
10: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
9: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
10: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
9: बस
10: बस
9: समझ गया।
10: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
11: आरबीआई कहता है,
12: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: लीजिए सुनिए ये कृष्ण भजन श्रवण कुमार साहू और साथियों के स्वर में।

0: तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते। फिर खाए पिए के मामला मा एक ठन फार्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते। ये आप मन ला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़कीन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
1: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मा सुपर हिट।
2: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि

0: निधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
1: मम्मी मम्मी पापा आगे
2: दक्ष विराट कन्हैया तुहर मन भर मैं गरम गरम समोसा भजिया जलेबी लेके आया हूँ।
1: मम्मी प्लेट लाना।
3: प्लेट की क्या जरूरत है, तुहर ड्राइंग के कागज में खाओ। कतेक प्लेट ला, मैं मांजा धोत रहा हूँ।
4: ये मुस्याही लगे है, समोसा खराब हो जाये, ये मैं नहीं खाना चाहिए।
3: ऐसने में खात खात उम्र बीत गए, कैसे जी।
2: हाँ जी,
1: कागज न्यूज पेपर माँ तेल्हा फुल्हा खाए पिए के गरम जिनिस ला नहीं रखना चाहिए।
4: एमा केमिकल वाला स्याही लगे रही थे जिन गरम जिनिस संग रासायनिक क्रिया करके ओला जहरीला बना देते।
1: ये कर अलावा प्लास्टिक थर्माकोल या डिस्पोजल कप गिलास माँ चाय कॉफी पीना सेहत खराब करते।
0: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
5: आओ ननको भैया, कैसे हैं? होटल बढ़िया चला थे ना? ग्राहकी वगैरह ठीक है कि नहीं? रोको। अरे भैया पहली जुन्ना तेल निकाल ले, तेकर बाद नवा तेल डालबे।
6: का है शिव भैया, तेल में तेल नहीं डालू तो जुन्ना तेल ला काय करू
5: तहु यार।
7: रियूट कुकिंग ऑयल योजना ले बायो डीजल बनाए जाते जेकर ले आप और आपके वातावरण सुरक्षित रहे।
0: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश, इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
8: आइए अब सुनते हैं ये ददरिया गीत, स्वर है श्रवण कुमार साहू और साथी के।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा लोक संगीत का कार्यक्रम। 9:30 हुए हैं। अब सुनिए हमारा और आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम सबरंग।
1: तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते। फिर खाए पिए के मामला में एक ठन फॉर्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो, आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते। ये आप मनला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़कीन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
2: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मा सुपर हिट।
3: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
4: मम्मी मम्मी पापा आगे।
5: दक्ष, विराट, कन्हैया, तुहर मन भर मैं गरम गरम समोसा भजिया जलेबी लेके आया हूँ।
4: मम्मी प्लेट लाना।
6: प्लेट के का जरूरत है? तुहर ड्राइंग के कागज में खाओ। कतेक प्लेट ला, मैं मांजा धोत रहा हूँ।
7: ये मस्याही लगे है, समोसा खराब हो जाही, ये मैं नहीं खाना चाहिए।
6: ऐसने में खात खात उम्र बीत गए, कैसे जी?
5: हाँ जी,
4: कागज न्यूज़पेपर मा तेलहा फुलहा खाए पिए के गरम जिनिस ला नहीं रखना चाहिए।
7: एमा केमिकल वाला स्याही लगे रही थे, जेन हा गरम जिनिस संग रासायनिक क्रिया करके ओला जहरीला बना देते।
4: ये कर अलावा प्लास्टिक थर्माकोल या डिस्पोजल कप गिलास मा चाय कॉफी पीना सेहत खराब करते।
3: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
8: आओ ननको भैया, कैसे हैं? होटल बढ़िया चलत है ना? ग्राहकी वगैरह ठीक है कि नहीं? रोको। अरे भैया, पहली जुन्ना तेल निकाल ले, देकर बाद नवा तेल डालबे।
9: का है शिव भैया, तेल में तेल नहीं डालू तो जुन्ना तेल ला काय करू?
8: ताहू यार,
10: रियूट कुकिंग ऑयल योजना ले बायो डीजल बनाए जाते, जेकर ले आप और आपके वातावरण सुरक्षित रहे।
3: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
0: नमस्कार, आज के सबरंग कार्यक्रम में आपकी रेडियो साथी मैं देवजानी मुखर्जी करती हूं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। श्रोताओं, आइए आज टटोलते हैं कुछ पुरानी यादों को। श्रोताओं, आजकल के बच्चों को रेलगाड़ी के सफर का वो असली रोमांच और पुरानी यादों का जादू समझाना वाकई एक बेहद खूबसूरत एहसास है। आज की पीढ़ी भले ही हवाई जहाज के सफर या हाई स्पीड कारों की आदि हो रही है, लेकिन जो बात भारतीय रेल में है वो कहीं और नहीं मिल सकती। अगर हम आज के बच्चों को रेलगाड़ी के सफर की खुशी और उससे जुड़ी पुरानी यादों से रूबरू कराना चाहें तो कुछ बातें जहन में अपने आप ताजा हो जाती हैं, जैसे खिड़की वाली सीट की वो जादुई जंग। हमारे जमाने में सबसे बड़ा युद्ध खिड़की वाली सीट के लिए ही होता था। आज के बच्चों को ये बताना जरूरी है कि उस खिड़की से आने वाली ठंडी हवा चेहरे पर उड़कर

0: हुई कोयले या मिट्टी की बारीक कण और बाहर भागते हुए पेड़ पौधे, पहाड़ और बिजली के खंभे देखना किसी सिनेमा से कम नहीं होता था।
1: आओ बच्चों खेल दिखाएं, छुक छुक करती रेल चलाएं, सीटी देकर सीट पे बैठो, एक दूजे की पीठ पे बैठो, आगे पीछे पीछे आगे लाइन से लेकिन कोई ना भागे, सारी सीधी लाइन में चलना, आंखें दोनों नीचे रखना, बंद आंखों से देखा जाए, आंख खुले तो कुछ ना पाए, आओ बच्चों रेल चलाएं, सुनो रे बच्चों टिकट कटाओ तुम लोग।

भप भप भप आओ सब लाइन डब्बू तुम्हें कोयले का डिब्बा चुन्नू मुन्नू लीला शीला माधो माधो सब पैसेंजर सब पैसेंजर यात्रा रेडी एक

रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक भड़क भड़क लोहे की सड़क भड़क भड़क लोहे की सड़क यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ छाती पार कर जाती बालू रेत आलू के खेत बाजरा धान बुढ़ा किसान हरा मैदान मंदिर मकान चाय की दुकान पुल पग डंडी टीले पे झंडी पानी का कुंड पंछी का झुंड झोपड़ी झाड़ी खेती बाड़ी बादल धुआं मोट कुआं कुएं के पीछे बाग बगीचे धोबी का घाट मंगल की हाट गांव में मेला भीड़ झमेला टूटी दीवार टट्टू सवार रेलगाड़ी रेलगाड़ी बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर मांडवा खांडवा खांडवा मांडवा रायपुर जयपुर जयपुर रायपुर तालेगांव मालेगांव मालेगांव तालेगांव नेल्लूर वेल्लूर वेल्लूर नेल्लूर सोलापुर कोलापुर कोलापुर सोलापुर कुक्कल डिंडीगल डिंडीगल कुक्कल मछलीपट्टम दिमलीपट्टम दिमलीपट्टम मछलीपट्टम ओंगोल नर्दिगोल नर्दिगोल ओंगोल कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद शोतनूर कोतनूर शोतनूर कोतनूर झुक झुक झुक झुक झुक झुक बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक।

0: तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते। फिर खाए पिए के मामला मा एक ठन फार्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते। ये आप मन ला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़कीन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मा सुपर हिट।
1: खाद्य सामग्री की सही देख रेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
2: मम्मी मम्मी पापा आगे।
3: दक्ष, विराट, कन्हैया, तुहर मन भर मैं गरम गरम समोसा भजिया जलेबी लेके आया हूँ।
2: मम्मी प्लेट लाना।
4: प्लेट के का जरूरत है? तुहर ड्राइंग के कागज में खाओ। कतेक प्लेट ला, मैं मांजा धोत रहा हूँ।
5: ये मस्याही लगे है, समोसा खराब हो जाए, ये मैं नहीं खाना चाहिए।
4: ऐसने में खात खात उम्र बीत गए, कैसे जी?
3: हाँ जी,
2: कागज न्यूज पेपर मा तेल्हा फुल्हा खाए पिए के गरम जिनिस ला नहीं रखना चाहिए।
5: एमा केमिकल वाला स्याही लगे रही थे जिन गरम जिनिस संग रासायनिक क्रिया करके ओला जहरीला बना देते।
2: ये कर अलावा प्लास्टिक थर्माकोल या डिस्पोजल कप गिलास मा चाय कॉफी पीना से

0: खराब करते।
1: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
2: आओ ननको भैया, कैसे हैं? होटल बढ़िया चलत है ना? ग्राहकी वगैरह ठीक है कि नहीं? रोको। अरे भैया, पहली जुन्ना तेल लत निकाल ले, तेकर बाद नवा तेल डालबे।
3: काहे शिव भैया, तेल में तेल नहीं डालू तो जुन्ना तेल ला काय करू?
2: ताहूं यार।
4: रियूट कुकिंग ऑयल योजना ले बायोडीजल बनाए जाते, जेकर ले आप और आपके वातावरण सुरक्षित रहे।
1: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
5: चाय चाय गरम चाय, याद है वो संगीतमयी आवाजें? ट्रेन का सफर सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि स्वादों का एक मेला है। हर स्टेशन पर आने वाली अनोखी आवाजें, चाय गरम गरम गरम समोसे और कुल्हड़ वाली चाय का स्वाद, वो तो आज के बर्गर पिज्जा खाने वाले बच्चों के लिए बिल्कुल एक नया और अनोखा अनुभव हो सकता है। किसी नए स्टेशन पर ट्रेन रुकने पर खिड़की से हाथ बढ़ाकर खाने पीने का सामान खरीदना अपने आप में एक अलग ही रोमांच था। हर स्टेशन की अपनी पहचान हुआ करती थी। बच्चों को ये बताना कितना दिलचस्प होगा कि पहले के समय में किसी शहर की पहचान वहाँ के स्टेशन पर मिलने वाले जायके से होती थी, जैसे मथुरा का पेड़ा, नागपुर के संतरे और हर छोटे बड़े स्टेशन के गरम गरम आलू बंडे और कचौड़ियाँ।

0: तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते। फिर खाए पिए के मामला मा एक ठन फॉर्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते। ये आप मन ला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़कीन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मा सुपर हिट।
1: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
2: मम्मी मम्मी पापा आगे।
3: दक्ष, विराट, कन्हैया, तुहर मन भर मैं गरम गरम समोसा भजिया जलेबी लेके आया हूँ।
2: मम्मी प्लेट लाना।
4: प्लेट के का जरूरत है? तुहर ड्राइंग के कागज में खाओ। कतेक प्लेट ला, मैं मांजा धोत रहा हूँ।
5: ये मस्याही लगे है, समोसा खराब हो जाही, ये मैं नहीं खाना चाहिए।
4: ऐसने में खात खात उम्र बीत गए, कैसे जी?
3: हाँ जी,
2: कागज न्यूज़पेपर मा तेलहा फुलहा खाए पिए के गरम जिनिस ला नहीं रखना चाहिए।
5: एमा केमिकल वाला स्याही लगे रही थे जेन हा गरम जिनिस संग रासायनिक क्रिया करके ओला जहरीला बना देते।
2: ये कर अलावा प्लास्टिक थर्माकोल या डिस्पोजल कप गिलास मा चाय कॉफी पीना सेहत खराब करते।
1: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
6: आओ ननको भैया, कैसे हैं? होटल बढ़िया चलत है ना? ग्राहकी वगैरह ठीक है कि नहीं? रोको। अरे भैया, पहली जुन्ना तेल निकाल ले, तेकर बाद नवा तेल डालबे।
7: का है शिव भैया, तेल में तेल नहीं डालू तो जुन्ना तेल ला का करू?
6: तहू यार,
8: रियूट कुकिंग ऑयल योजना ले बायोडीजल बनाए जाते जेखर ले आप और आपके वातावरण सुरक्षित रहे।
1: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
9: श्रोताओं, आपको याद होगा रेलगाड़ी में अक्सर एक अस्थाई परिवार हमारा बन जाता था। आजकल लोग सफर में कानों में ईयरफोन लगा लेते हैं या मोबाइल स्क्रीन में डूब जाते हैं, लेकिन हमारी पुरानी यादों में ट्रेन का डिब्बा एक छोटा सा गांव बन जाता था। सहयात्रियों के साथ बातचीत शुरू हो जाती थी, अंताक्षरी या ताश के पत्तों का या लूडो का दौर चलने लगता था। एक दूसरे के टिफिन से पूड़ी आलू या अचार शेयर करके खाने लगते थे हम सब। ये वो सामाजिक जुड़ाव है, ये वो सोशल बॉन्डिंग है जिसे आज के बच्चे मिस कर रहे हैं।

श्रोताओं, अगर आप चाहते हैं कि आज के बच्चे भी इस ट्रेन नॉस्टैल्जिया को पूरी तरह महसूस करें, तो उन्हें इस बार वीकेंड पर किसी लंबी दूरी की ट्रेन की स्लीपर या थर्ड एसी में सफर करवाएं, जहां खिड़की से बाहर का नज़ारा साफ दिखाई दे। सफर के दौरान मोबाइल और गैजेट्स को पूरी तरह से बैग में बंद करके रख दें। उन्हें अपने बचपन के किस्से सुनाएं कि कैसे आप दादा दादी के घर जाने के लिए महीनों पहले से ट्रेन के टिकट का इंतजार करते थे। ट्रेन का सफर सिर्फ दूरी तय करने का एक जरिया नहीं, ये यादें बुनने का सबसे खूबसूरत जरिया भी है। श्रोताओं, आज के सबरंग कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे अपनी रेडियो साथी देवजानी मुखर्जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम सबरंग। लीजिए अब सुनिए प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।

0: को पूरी तरह से बैग में बंद करके रख दें। उन्हें अपने बचपन के किस्से सुनाएं कि कैसे आप दादा दादी के घर जाने के लिए महीनों पहले से ट्रेन के टिकट का इंतजार करते थे। ट्रेन का सफर सिर्फ दूरी तय करने का एक जरिया नहीं, ये यादें बुनने का सबसे खूबसूरत जरिया भी है। श्रोताओं, आज के सबरंग कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे अपनी रेडियो साथी देवजानी मुखर्जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम सबरंग। लीजिए अब सुनिए प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।
1: और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल की बिक्री और वितरण पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को 1 जुलाई से हटाने का फैसला लिया। बिजली बिल भुगतान समाधान योजना की अवधि 3 माह के लिए बढ़ाई जाएगी और भाजपा महिला मोर्चा में संभाग प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्ति की गई। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री तथा वितरण पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध 1 जुलाई से हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के खुदरा पेट्रोल पंपों पर अब सामान्य व्यवस्था के तहत ईंधन की बिक्री होगी। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति सामान्य हो गई है और पेट्रोल डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिजली बिल भुगतान समाधान योजना की अवधि 3 माह के लिए बढ़ाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कल रायपुर के पास सोनपैरी में आयोजित कबीर जयंती महोत्सव को संबोधित करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे अधिक से अधिक उपभोक्ता सरचार्ज माफी और आकर्षक प्रावधानों का लाभ लेकर अपने लंबित बिजली बिलों का भुगतान कर सकेंगे। प्रदेश के पात्र किसानों को इस वर्ष भी पिछले खरीफ सीजन के बराबर यूरिया उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकार ने प्रदेश में यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता को देखते हुए पहले लागू कुछ प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत किसानों को उनकी पात्रता के अनुसार यूरिया का वितरण किया जाएगा। यदि संबंधित सहकारी समिति में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है तो किसानों को एकमुश्त यूरिया दिया जाएगा। वहीं स्टॉक सीमित होने की स्थिति में उपलब्ध मात्रा पहले वितरित की जाएगी और शेष यूरिया बाद में स्टॉक पहुंचते ही संबंधित किसान को उपलब्ध कराया जाएगा। शासन ने स्पष्ट किया है कि डीएपी उर्वरक के वितरण की पूर्व व्यवस्था यथावत लागू रहेगी, जबकि संशोधित निर्देश केवल यूरिया वितरण के लिए प्रभावी होंगे। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने नई दिल्ली प्रवास के दौरान राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सौजन्य भेंट की। इससे पहले राज्यपाल श्री डेका ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी ने महिला मोर्चा में संभाग प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्तियां कर दी हैं। यह सूची बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव की सहमति से प्रदेश महामंत्री और मुख्यालय प्रभारी नवीन मारकंडे ने जारी की है। हेमलता चंद्राकर को रायपुर संभाग का प्रभारी और सुषमा खलको को सहप्रभारी नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार शीतल नायक को दुर्ग संभाग का प्रभारी और वर्षा सिंह को सहप्रभारी, रंजिता रंधावा को बस्तर संभाग का प्रभारी और जानकी कोरसा को सहप्रभारी, फुलेश्वरी पैकरा को बिलासपुर संभाग का प्रभारी और किरण साहू को सहप्रभारी, किरण मरकाम को सरगुजा संभाग का प्रभारी और रजनी तिवारी को सहप्रभारी बनाया गया है। सरगुजा जिले में कल आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 5 साल के मासूम समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है। रथ यात्रा के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने गोंदिया पुरी गोंदिया के बीच रथ यात्रा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह विशेष ट्रेन 2, 9, 16 और 29 जुलाई को गोंदिया से पुरी के लिए चलेगी। वापसी में यह ट्रेन 3, 10, 17 और 30 जुलाई को पुरी से गोंदिया के लिए रवाना होगी। ट्रेन का ठहराव डोंगरगढ़, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर सहित कई प्रमुख स्टेशनों पर रहेगा। वहीं हटिया एलटीटी हटिया समर स्पेशल ट्रेन का परिचालन 15 जुलाई तक बढ़ाया गया है। छत्तीसगढ़ से इस वर्ष हज यात्रा पर गए सभी 813 हज यात्रियों की सकुशल स्वदेश वापसी हो गई है। राज्य हज कमेटी के अनुसार हाजियों का अंतिम जत्था कल मुंबई पहुंचा, जहां उनका स्वागत किया गया। हज कमेटी के अध्यक्ष मिर्जा एजाज बेग ने बताया कि इस वर्ष राज्य से 813 श्रद्धालु हज पर गए हुए थे। इनमें से 417 पुरुष और 396 महिलाएं शामिल हैं।

0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल की बिक्री और वितरण पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को 1 जुलाई से हटाने का फैसला लिया। बिजली बिल भुगतान समाधान योजना की अवधि 3 माह के लिए बढ़ाई जाएगी और भाजपा महिला मोर्चा में संभाग प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्ति की गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 10 बजे है, लीजिए अब सुनिए विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम जिन्हें हम मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।

0: आज के सेहतनामा कार्यक्रम में आप सुनेंगे जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। अपने श्रोताओं को बताते हैं कि आज मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल के जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता हमारे साथ विविध भारती के स्टूडियो में है और आज पेट की बीमारियों के बारे में और फैटी लिवर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हमारे श्रोताओं की ओर से भी डॉक्टर साहब कुछ सवाल आए हैं। एक तो IBS के बारे में सवाल था, एसिडिटी के बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा जिस पर हमने चर्चा की ही, और कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि हमें पेट में दर्द रहता है और सारे जांच करवा लिए लेकिन फिर भी सब कुछ रिपोर्ट नॉर्मल आई, फिर भी पेट में दर्द रहता है, इसकी क्या वजह हो सकती है? एक तो इन्फेक्शन, तो उसकी भी दवा कर चुका हूं फिर भी तकलीफ नहीं जा रही है।
2: तो जब जो पेट का दर्द होता है उसके कई कई कारण होते हैं। अगर पेट का दर्द ज्यादा देर तक रहे तो क्लियरली इन्फेक्शन तो हो नहीं सकता। एक दूसरी बात ये भी हमारे है कि हम एंटीबायोटिक बहुत जल्दी ले लेते हैं। कोई भी दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, एक दो लूज मोशन हमने एंटीबायोटिक ले ली, तो वो हमको अवॉइड करना चाहिए। एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली एज अ लास्ट रिसोर्ट। अगर कुछ नहीं ठीक हो तो एंटीबायोटिक फॉर शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम। पेट के दर्द के अगेन कई कारण होते हैं। एसिडिटी से किसी को पेट में दर्द हो सकता है, पेट में अल्सर हो सकता है, तो पेट में और कई ऑर्गन्स होते हैं, पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज में अगर तकलीफ हो जाए, जो अल्कोहल पीते हैं उससे पेट में कभी कभी अल्सर हो सकता है, पेट में पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, अगर कॉन्स्टिपेशन हो उससे पेट में दर्द हो सकता है, पार्ट ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो मैंने पहले कहा था IBS, उसमें भी पेट में दर्द हो सकता है। तो पेट का दर्द इज अ वेरी वेरी ब्रॉड टॉपिक, उसमें बहुत से कारण होते हैं। अगर पेट का दर्द थोड़े दिनों तक रहे और चला जाए तो उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर पेट का दर्द जारी रहे, दो से तीन दिन तक पेट का दर्द जारी रहे, उसके साथ अगर आपको बुखार आए या वॉमिटिंग हो, लूज मोशन हो या कॉन्स्टिपेशन हो, तब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये कुछ सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस का सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम पेट का दर्द होता है। तो डोंट इग्नोर पेट का दर्द। एक दो दिन तक हो तो घर के नुस्खे कर सकते हैं, मगर अगर कोई अलार्म सिम्टम्स हो जैसे बुखार, वॉमिटिंग, तब डॉक्टर को दिखाइए।
1: जी, तो ये आपने बड़ी जरूरी बात कही है और उसमें यहाँ बहुत सारे लोग घरेलू इलाज करने लगते हैं। घरेलू इलाज की व्यवस्था तब थी जब मेडिकल साइंस एडवांस नहीं था। आज जब मेडिकल साइंस उपलब्ध है तो सीधे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और डॉक्टर साहब, हम एसिडिटी की बात जब कर रहे थे तो वहाँ मेरे जहन में एक बात आई कि बहुत सारे लोग एसिडिटी के शिकार होते हैं। क्या एसिडिटी का असर गले पर भी पड़ता है, थ्रोट पर, या आवाज पर भी पड़ता है? हमने सुना है कि आवाज फटने लगती है, खराब होने लगती है, इसके बारे में जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। जब एसिडिटी बहुत ज्यादा हो जाए तो एसिड ऊपर आके गले को इरिटेट करता है और गले में हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं जहां से हमारी आवाज निकलती है।

0: स्पेशली जब हम रात को सो जाएं, नींद में हो और अगर आपको एसिड रिफ्लक्स हो तो ये गले में आके गले को इरिटेट करता है। कई पेशेंट कहते हैं गले में दर्द हो रहा है, किसी किसी की आवाज़ बदल जाती है। तो नॉर्मली ये सारे पेशेंट पहले ईएनटी को जाके देखते हैं, ये गला ख़राब है। ईएनटी जब अपना कैमरा डाल के गले में देखता है तो उनको पता चलता है कि जहाँ से खाने की पाइप शुरू होती है वहाँ पर काफ़ी लाल हो चुका है, विच टेल्स यू कि ये एसिड रिफ्लक्स के कारण है। तो एसिड रिफ्लक्स से गला ख़राब हो सकता है, एसिड रिफ्लक्स से गले की आवाज़ जा सकती है, ऐसे लगता है हमको हमेशा के गले में कुछ अटका हुआ है। तो एसिड रिफ्लक्स कैन कॉज ऑल दिस प्रॉब्लम्स इन पेशेंट्स।
1: तो मतलब आवाज़ की दुनिया में जो लोग काम कर रहे हैं और उन्हें अगर एसिडिटी की समस्या है तो फौरन जागृत हो जाएं और डॉक्टर से संपर्क करें। और बात आवाज़ की चली है तो एक गाना है, मेरी आवाज़ ही पहचान है, अगर ये गाना आप कहें तो हम सुनवाएं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया गाना है, बहुत सुनना चाहिए।
1: सुनते हैं ये गाना।

0: डॉक्टर साहब, गाने के बाद हमारे श्रोताओं को बताइए, बीच में पेट के अल्सर का भी जिक्र किया था और पेट के अल्सर की हालांकि अब तो लोग डॉक्टर्स कहते हैं कि बहुत आसान है इलाज, लेकिन जिस मरीज को होता है वो बहुत जल्दी घबरा जाता है। तो क्या अल्सर का इलाज दवाइयों से भी संभव है या ऑपरेशन करना जरूरी होता है?
1: नहीं, आज के जमाने में तो हम अल्सर

0: ऑपरेशन करते ही नहीं है, क्योंकि
1: जी
0: अभी इतनी बढ़िया दवाइयां निकल रही हैं जो अल्सर की ट्रीटमेंट टैबलेट से हो जाती है। पर क्वेश्चन है कि अल्सर क्यों हो रहे हैं? अगर आज के जमाने में अल्सर हो तो हमको ढूंढना चाहिए क्यों होते हैं
1: क्यों हो
0: अल्सर।
1: रहा है?
0: ज्यादातर अल्सर होते हैं जब हम पेन किलर्स बहुत खा लें, जैसे कभी जोड़ों का दर्द हो गया, हेडेक हो गया, तो लोग पेन के दवाइयां लेते रहते हैं,
1: जी
0: तो पेन मेडिसिन से अल्सर होने की संभावना बहुत हाई रहती है। स्ट्रेस से भी अल्सर हो सकता है, उसको स्ट्रेस अल्सर्स बोलते
1: जी
0: हैं। एसिडिटी से भी अल्सर हो सकता है, और रेयरली रेयरली पेट का अल्सर एक साइन ऑफ कैंसर भी हो सकता है। द रीजन हम अभी आजकल सर्जरीज नहीं कर रहे, क्योंकि जो एसिडी की दवाइयां हैं वो अगर आप खाओ तो मोस्ट अल्सर्स 6 से 8 हफ्ते के अंदर मिट जाते हैं। तो पुराने जमाने में ये दवाइयां नहीं होती थी, तो अल्सर लोगों के चले रहते थे, जबकि फट जाए तो सर्जरी कराओ। आज के जमाने में अल्सर की सर्जरी इज ऑलमोस्ट अनहर्ड ऑफ, दवाइयों से 6 से 8 हफ्ते में मोस्ट अल्सर्स ठीक हो जाते हैं।
1: जी, तो ये बहुत सही बात आपने बताई है। लेकिन अल्सर की पहचान कैसे करें, मतलब मरीज को कैसे पता चले कि उसे अल्सर है, क्या सिम्टम होते हैं खास तौर से?
0: नॉर्मली अल्सर में आपको पेट में, जहाँ पेट शुरू होता है, छाती के जस्ट नीचे बीच में सेंटर में पेन होगा। कभी
1: जी
0: कभी ये पेन खाने के बाद हो सकता है, कभी कभी ये पेन खाने से पहले हो सकता है, कभी कभी पेशेंट को वॉमिटिंग होती है और वॉमिटिंग में ब्लड भी आ सकता है,
1: जी जी
0: कभी कभी ये ब्लीडिंग मोशन में भी हो सकती है। काला कलर का अगर मोशन हो गया मतलब पेट में अल्सर की ब्लीडिंग हो रही है, तो ये संभावना हो सकती है। अगर आपको ब्लीडिंग हो जाए, वॉमिटिंग हो जाए ब्लड की, पेट में दर्द हो जो खाने के बाद या खाने के पहले हो, दैट टेल्स यू कि आपके पेट में अल्सर होने की संभावना काफी हाई है।
1: जी और एक बहुत बड़ी समस्या है, हमारे श्रोताओं की ओर से भी सवाल है, ये नींद और पेट की बीमारियों का क्या संबंध है? कि बहुत कम नींद लेके आजकल लोग काम करते हैं, बहुत टेंशन में, तनाव में, तो उसका क्या असर पेट पर पड़ता है?
0: हाँ बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर हम ठीक से सोए ना, अगर हमारी नींद पूरी ना हो, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा खराब हो जाता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक क्लॉक पे काम करता है, सुबह उठते हैं, मोशन होता है, और फिर पेट खाली होता है, पूरे दिन हम खाना खाते हैं, अगले दिन फिर से सोते हैं, हमारी साइकिल रीसेट होती है, अगेन नेक्स्ट दिन मोशन होता है। चूंकि स्लीप साइकिल खराब हो, या लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, ये स्लीप पैटर्न खराब हो जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हम देखते हैं आजकल के युवाओं में, जो लेट नाइट बैठे रहते हैं, जंक फूड खाते हैं, फाइबर कम खाते हैं, कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं स्लीप डिप्राइव्ड पेशेंट को, जब स्लीप पैटर्न ठीक ना हो। अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए, तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो स्लीप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप, दर्शक देख नहीं रहे कि मेरे हाथ में एक रिंग पहनी हुई है मैंने, ये मेरी स्लीप रिंग है, ये मुझे कहती है कि मैं कितना सोया हूँ कल रात को, ठीक से सोया हूँ कि नहीं। अगर मेरी नींद पूरी नहीं हुई है तो ये मुझे कहेगी कि मैं नेक्स्ट दिन मुझे इतने बजे सोना है। अगर मैं इसको फॉलो करूँ अपने स्लीप पैटर्न को, तो मेरा पेट भी ठीक रहता है, एसिडिटी भी नहीं होती, वेट भी कंट्रोल में रहता है। अगर आप स्लीप पैटर्न्स को ठीक करें तो अपने वेट को भी कंट्रोल कर सकते हैं।
1: तो ये तो बहुत जरूरी बात आपने बताई है, क्योंकि आजकल तो सोने का किसी का समय फिक्स नहीं होता है, तो शिफ्ट ड्यूटी करने वाले लोगों को पेट की समस्या ज्यादा होती है, कुछ ऐसा?
0: बिल्कुल, या एब्सोल्युटली बिल्कुल। हमारे ओपीडी में काफी कंपनी के पेशेंट्स आते हैं जो अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट खत्म करके आते हैं हमारे पास देखने, और मोस्टली सबको इधर कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ रहती है या एसिडिटी की तकलीफ रहती है, एंड दिस इज रिलेटेड टू द शिफ्ट वर्क। तो आई थिंक शिफ्ट वर्क पेशेंट्स को डेफिनेटली ज्यादा प्रॉब्लम होती है।
1: जी, हमारे एक श्रोता की ओर से सवाल है कि ये गट फ्लोरा क्या होता है?
0: गट फ्लोरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो अभी लास्ट एटलीस्ट 10 साल से डिस्कवर हुई है। जो हमारा पेट इंटेस्टाइन होता है उसमें कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं,
1: जी
0: जो हम सिंपल टर्म्स में, देर इज गुड बैक्टीरिया एंड देर इज बैड बैक्टीरिया। जो गुड बैक्टीरिया हो अगर ज्यादा हो तो डाइजेशन ईजी हो जाता है, गुड बैक्टीरिया ज्यादा हो तो ओवरऑल बॉडी का फंक्शनिंग बेटर होता है। तो
1: जी
0: बहुत
1: जी
0: बार अगर हमको लूज मोशन हो, हमने एंटीबायोटिक ले ली, तो हमारे गुड बैक्टीरिया मर जाते हैं। जब वो मर जाते हैं तो पेट के मसले और बढ़ जाते हैं, लूज मोशन ज्यादा होता है, पेट ठीक नहीं लगता, पेट का दर्द होता है। तो इसके लिए प्रोबायोटिक्स डेवलप हुई हैं, गुड बैक्टीरिया जो हम देते हैं
1: जी
0: इंटेस्टाइन्स को, एंड इट हेल्प्स नॉट ओनली मेक द इंटेस्टाइन डाइजेस्ट फूड बेटर, बट ऑल्सो इम्प्रूव्स इम्यूनिटी, बॉडी की इम्यूनिटी को भी ठीक करता है गुड बैक्टीरिया।
1: जी तो उसके लिए जो प्रोबायोटिक दवाएं आती हैं वो लेना
0: तो मैं तो
1: कर
0: कहूंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट गुड बैक्टीरिया और गुड प्रोबायोटिक्स जो हमारे घर में है ना, फर्मेंटेड फूड्स और दही,
1: दही

0: दही से अच्छा कोई
1: हाँ
0: प्रोबायोटिक नहीं है, पर ऑब्वियसली अगर ये आप नहीं ले सकते, बहुत लोग दही नहीं खाते या फर्मेंटेड फूड्स नहीं टॉलरेट कर सकते, तो उनके लिए देर इज गुड बैक्टीरिया अवेलेबल टू टेक, यू कैन टेक इट ऑलमोस्ट डेली।
1: जी, बहुत बढ़िया। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं डॉक्टर साहब, बताइए कौन सा गाना सुनवाया।
0: तो ये एक बहुत पुराना सॉन्ग है, बहुत पुरानी मूवी कर्स का, दर्दे दिल दर्दे जिगर, ये गाना एक
1: क्या
0: मुझे
1: बात
0: बहुत
1: है,
0: पसंद है।
1: आशिक बनाया आपने, बढ़िया गाना है, सुनते हैं यही गाना।

0: गाने के बाद डॉक्टर साहब हमारे श्रोताओं की ओर से एक सवाल है कि फैटी लिवर की समस्या है, इसे योगासन से क्या ठीक कर सकते हैं और एक्सरसाइज से दवाओं के साथ साथ कर सकते हैं क्या, किस तरह की एक्सरसाइज?
1: बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि अगेन पेशेंट जब हमारे पास आता है, दवाई नहीं देनी है हमने पहले एक्सरसाइज देनी है। एक्सरसाइज इंक्लूड योगा, योगा के साथ एक्सरसाइज जिससे आपका हार्ट रेट बढ़े, एक्सरसाइज जिससे आपको पसीना आए, जिससे आपके कैलोरीज बर्न हो। तो खाली योगा नहीं, योगा के साथ ऐसी एक्सरसाइजेज जिसके आपसे आपका हार्ट रेट बढ़े, एरोबिक एक्सरसाइजेज जो बोलते हैं हम ना, साथ में योगा इज गुड बिकॉज योगा से मसल बनती है। तो अगर मसल बढ़ाओगे तो आपका फैटी लिवर जल्दी जाएगा।
0: जी बिल्कुल। क्या पतले लोगों को भी, जो बहुत दुबले पतले होते हैं, उनको भी फैटी लिवर होता है?
1: हाँ बिल्कुल, इनफैक्ट उनको जो फैटी लिवर होता है वो और नुकसान डेंजरस होता है, उसको हम लीन नैश बोलते हैं।
0: जी
1: पहले हमको लगता था कि जिसका वेट ज्यादा हो उनको ये बीमारी होती है, पर अगर आप देखा जाओ कंट्रीज लाइक जापान जहाँ पे लोग काफी पतले हैं, पर उधर इंसिडेंस ऑफ फैटी लिवर बहुत ज्यादा है, उसको हम लीन नैश बोलते हैं। जो हमें लगता है कि हम सब, जैसे इंडियन पॉपुलेशन को ले लो, सारे सॉर्ट ऑफ दुबले पतले, पतले हाथ पतले पैर होते हैं, मगर जो मेन फैट होता है वो बेली में होता है, मेरे जो तोंद जो बोलते हैं सबकी निकल आती है, वो फैट इज अ मोस्ट डेंजरस फैट। तो आपका हाथ पैर पतला होगा, आप पतले लगोगे, मगर अगर आपका स्कैन करेंगे हम, सीटी स्कैन एमआरआई, तो पूरा फैट है वो पेट के अंदर आएगा, एंड दैट इज अ फैट विच इज अ मोस्ट डेंजरस फैट। तो इसको लीन नैश बोलते हैं। ये पेशेंट्स को भी फैटी लिवर के साथ सिरोसिस होने की संभावना ज्यादा होती है।
0: जी जी जी। और पेट के इन्फेक्शन के बारे में बताइए कि क्यों इन्फेक्शन होता है, किसी किसी को बार बार इन्फेक्शन होता है, बार बार लूज मोशन, कई कई बार लूज मोशन के लिए जाना पड़ता है, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: अगेन लॉट ऑफ इट इज हमारी इम्यूनिटी कैसी है, हम क्या कैसा खाना खा रहे हैं। जैसे मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ जिनको लूज मोशन दोबारा दोबारा होता है, मेक श्योर आप कुक्ड खाना खाओ, साफ सुथरा खाना खाओ। अगर आप बाहर रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो अवॉइड द चटनी, समोसा खा लो या जो भी खाना है, रोटी सब्जी खा लो, पर सलाद मत लो। बट अगर ये इमोशन दोबारा दोबारा होता रहे, दैट कुड मीन अ साइन ऑफ अदर मेडिकल प्रॉब्लम। जैसे आपको पेट के इंटेस्टाइन के अल्सर हो सकते हैं, एक तरह की बीमारी बोलते हैं IBD, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिसमें इंटेस्टाइन में और बड़ी आंतरी में छाले होते हैं, उसे दोबारा दोबारा लूज मोशन हो सकते हैं, कभी ब्लीडिंग हो सकता है। कई फूड एलर्जीज होते हैं जिसके कारण नौजिया, वॉमिटिंग, लूज मोशन हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा सीलैक डिजीज, ग्लूटिन एलर्जी। तो अगर ये सिम्टम्स थोड़े दिन तक रहे तो वी कैन मैनेज, पर अगर ये दोबारा दोबारा होते रहे तो मेक श्योर यू सी योर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और थोड़ा बेसिक चेकअप कराओ कि कोई और बीमारी ना हो, जिसको ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होती है।
0: जी जी। और एक बात डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि जो अमूमन एक्सरसाइज से सेहत अच्छी होती है, लेकिन पेट की एक्सरसाइज खास तौर से जो योगा करते हैं उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो पेट की बहुत फास्ट फास्ट एक्सरसाइज करते हैं, पेट को फुलाना पचाना, ये कहाँ तक कारगर है, सही है या गलत है?
1: हाँ, इसमें भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बहुत रिगरस स्टमक की एक्सरसाइज करना भी अच्छी नहीं है। पेट की जो हमारी लाइनिंग है उसमें दो बड़े मसल्स होते हैं, वो मसल्स को अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेच करो तो आगे जाके वो वीक हो जाते हैं, मसल के बीच का जोड़ निकल जाता है और हर्निया होने के रिस्क होते हैं, पेट बाहर आ जाता है ज्यादा उल्टा। तो यू हैव टू बी केयरफुल, जो भी एक्सरसाइज करो ध्यान से करो, अंडर सुपरविजन करो, सही तरीके से करो। अगर उसको ठीक से नहीं करोगे, ज्यादा जोर लगाओगे पेट पे, तो हर्निया होने का रिस्क ज्यादा होता है।
0: जी, तो मतलब पेट की एक्सरसाइज से पाचन क्रिया पर फर्क पड़ता है?
1: बिल्कुल पड़ सकता है
0: जी। और डाइजेशन सही रखने के लिए कुछ है ऐसी कारगर दवा, कोई इलाज है लोगों के? क्योंकि हर कोई कहता है कि मुझे तो खाना पचता ही नहीं है, क्या करें?
1: हाँ, तो ये जो खाना पचता नहीं है इसके लिए पूछना पड़ता है पेशेंट को, क्यों नहीं पच रहा है? बोले हमको खाना पचता नहीं है, पर उनको कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्जियत होती है। तो मेरा मानना होता है कि खाना आपको बहुत अच्छा पच रहा है, पूरा खाना आपने डाइजेस्ट कर लिया, आपको तो कॉन्स्टिपेशन हो गई है, जिसको नहीं पचे मतलब उसको लूज मोशन हो रहे हैं। तो पूछना जरूरी है कि प्रॉब्लम क्या है, पचना नहीं पचना इज अ डिफरेंट sort of पेशेंट का जो आउटलुक होता है वो अलग होता है, पच नहीं रहा है। तो मोस्ट टाइम्स ये पेशेंट का मतलब होता है या तो उनको कॉन्स्टिपेशन हो रही है या उनको एसिडिटी हो रही है। तो उसको बेसिक प्रॉब्लम्स को ट्रीट करो, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो फाइबर बढ़ाओ खाने में, पानी बढ़ाओ। मोस्ट टाइम्स हमने देखा है डाइट में स्पेशली यंग किड्स पानी बहुत कम पीते हैं, तो पानी नहीं पीते हैं कॉन्स्टिपेशन होती है, पानी नहीं पियो तो और तकलीफें होती हैं, डिहाइड्रेशन होता है, फिर से कॉन्स्टिपेशन होती है, फिर खाना नहीं खाते, तो इट्स अ विशियस साइकिल। तो आई थिंक

0: बैलेंस्ड डाइट, न्यूट्रिशन, वाटर इनटेक, गुड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि जो आपकी प्लेट है ना खाने की, वो कलरफुल होनी चाहिए। मतलब पेट में आपके दो तरह की भाजियाँ हो जाएं, एक रेड हो जाए, ग्रीन हो जाए, रोटी हो जाए, वो कोई भी गेहूं की ले लो, ज्वार की ले लो, थोड़ा सा राइस लो, दाल ले लो, एंड इफ यू नॉन वेजिटेरियन एक छोटा सा मीट का पोर्शन हो जाए, बट योर प्लेट शुड बी कलरफुल।
1: लेकिन अभी एक चलन चला है कि या तो एक एक अन्न खाओ, चावल खाओ या रोटी खाओ। तो कुछ लोग ये भी करते हैं कि सिर्फ कढ़ी चावल खा लिया, सिर्फ दाल चावल, तो इससे बचना चाहिए मेरे
0: बिल्कुल,
1: को।
0: इसमें तो खाली कार्बोहाइड्रेट खाया आपने, प्रोटीन तो बहुत मिनिमम हो गया।
1: तो बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, फिर हम आगे और बढ़ते हैं।
0: एक और गाना जो मुझे काफी पसंद है, बहुत पुरानी पिक्चर है, रॉकी पिक्चर का, क्या यही प्यार है। ये गाना वाज क्वाइट फेमस
1: जी
0: मेरे स्कूल के टाइम पे
1: जी
0: और
1: क्या
0: काफी
1: बात
0: सुना
1: है
0: है हमने।
1: जी।

0: डॉक्टर साहब, बीच में एसिडिटी की बात कर रहे थे जो बहुत बड़ी समस्या है, वहां पर एक बात रह गई थी, वो ये कि कहीं एसिडिटी की वजह से, एसिड रिफ्लक्स की वजह से बीमारी को थोड़ी असावधानी हो, या तो कहीं कैंसर का रूप भी लेती है वो
1: हाँ
0: आगे
1: बिल्कुल
0: चलकर।
1: बिल्कुल हो सकता है। अगर आपको एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है और आप दवाई नहीं ले रहे ठीक से, या आपने इसका इलाज ना किया हो, तो जो एसिड होता है वो तेजाब है बेसिकली, ऊपर आके खाने की पाइप को जलाते रहता है, जला जला के फिर आगे एक अल्सर बनाता है, और यही अल्सर आगे जाके कैंसर भी बन सकता है, जिसमें खाने की पाइप का कैंसर हो जाता है और खाने की पाइप छोटी हो जाती है और अटकने लगता है। इसके लिए मैंने पहले कहा था, अगर खाना अटक रहा हो तो एंडोस्कोपी करना बहुत जरूरी है। अनकंट्रोल्ड एसिड रिफ्लक्स कैन लीड टू कैंसर्स इन द फूड पाइप।
0: जी, और ये जो एसिडिटी की समस्या, एसिड रिफ्लक्स, इसके लिए एक तो आपने एंडोस्कोपी बताया जांच, और क्या क्या जांच की पद्धति है, क्योंकि अभी तो टेक्निक बहुत एडवांस हो चुकी है, हमारे श्रोताओं को जानकारी
1: हाँ, तो
0: दीजिए।
1: बेसिक एंडोस्कोपी तो सेम रही है, एंडोस्कोपी टेक्निक काफी सेम ही है, जिस तरीके से हम देखते हैं जो इमेजिंग होती है वो चेंज हो गई है।
0: जी
1: अभी काफ़ी हाई डेफिनेशन मॉनिटर्स हैं, 4K मॉनिटर्स हैं, हम हमारे एंडोस्कोपी के टाइम पे एक बटन दबाते हैं जिससे लाइट चेंज हो जाती है, हमको और बेटर दिखता है। हमारे मशीन्स पे अभी AI भी लगना शुरू हो गया है, जो अगर हम सपोज ब्लिंक कर रहे हैं, हमने लेफ्ट एंड राइट देख लिया एक सेकंड के लिए, पर वो मशीन पकड़ लेते कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है और रुक जाती है और हमको कहती है कि यहाँ पे ठीक से देखो। ये एक सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गया AI इन एंडोस्कोपी। दूसरा, अगर एंडोस्कोपी नॉर्मल है, हमको कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम कभी कभी खाने की पाइप का प्रेशर मेजरमेंट करते हैं, उसको मैनोमेट्री बोलते हैं, छोटी सी पाइप डालते हैं नाक से पेट में और वो पूरे खाने की पाइप के प्रेशर मेजर करती है, ये क्या प्रेशर की प्रॉब्लम है जिसके कारण खाना आगे नहीं जा रहा है या रिफ्लक्स कर रहा है। और फिर लास्ट एक और टेस्ट है जिसमें हम खाने के पाइप में एक पाइप डाल देते हैं और वो पाइप के साथ पेशेंट घर चले जाता है, और जब उसको एसिडिटी लग रही हो रहा है, वो बटन दबाता है और विद इन 24 to 48 hours हम वो पूरे खाने के पाइप का टेस्टिंग करते हैं कि कितना एसिड रिफ्लक्स हो रहा है। पेशेंट जो कह रहे हैं कि हमको एसिड रिफ्लक्स है, जरूरी नहीं है वो एसिड रिफ्लक्स हो, वो खाली एक सिम्टम हो सकता है, तो उसको 24 hour pH मैनोम pH प्रोब बोलते हैं, जिसमें हम डिटेक्ट करते हैं कि एक्चुअली एसिड ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देयर आर मेनी अदर वेज टू डिटेक्ट द एसोफेगस।
0: जी, तो इतनी सारी इलाज की और जांच की सुविधाएं हैं, तो मेरे ख्याल से तकलीफ हो तो सीधे डॉक्टर के पास जाना चाहिए अपनी अटकलें लगाने के बजाय। डॉक्टर साहब, एक पेट संबंधी एक बीमारी है जो कॉमन हो रही है आजकल, कोलाइटिस, ये क्या है, कौन सी बीमारी है और इससे क्या तकलीफें होती हैं?
1: तो कोलाइटिस बेसिकली एक ब्रॉड टर्म है, कोलाइटिस मतलब बड़ी आंतरी में कुछ इशू है। अभी वो इशू अगर लूज मोशन हो तो उसको भी लोग कोलाइटिस का नाम दे देते हैं। जो बीमारी हमको डिटेक्ट करनी है उसको IBD बोलते हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिसमें बड़ी आंतरी कोलन के अंदर छाले होते हैं और लूज मोशन और ब्लीडिंग होता है, तो उसको IBD बोलते हैं। ये जानना जरूरी है कि आपको कोलाइटिस IBD वाली है कि नहीं, क्योंकि अगर IBD की कोलाइटिस है तो ट्रीटमेंट उसकी लाइफ लॉन्ग रहती है, ये इम्यून मीडिएटेड डिसऑर्डर है, अगर इसको ट्रीटमेंट नहीं करो तो आगे जाके कैंसर भी बन सकता है। जो दूसरी कोलाइटिस होती है वो नॉन स्पेसिफिक कोलाइटिस होती है, मतलब हमको लूज मोशन हो गए और लूज मोशन बीच में होते रहते हैं और उसको नाम दे दिया कोलाइटिस, बट दैट इज नॉट रियली अ डिजीज, इट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ओनली। तो जानना कि आपको अल्सर वाली कोलाइटिस है कि नॉन अल्सर वाली कोलाइटिस बहुत जरूरी है।
0: तो मतलब डॉक्टर के पास संपर्क करें, यही ज्यादा बेहतर होता है। और अब डॉक्टर साहब, एक गाना सुनते हैं पहले, यहाँ
1: शायद मेरी शादी का ख्याल
0: सुनते हैं डॉक्टर साहब ये गाना।

0: बिल्कुल नहीं, तेरी कसम आऊंगा।
1: अब डॉक्टर साहब बताइए कि आईबीएस और फैटी लिवर, एसिडिटी, जो पेट संबंधी की जो बीमारियां हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बीमारियां हैं, इनसे बचने के लिए किस तरह की अवेयरनेस रखें, किस तरह की सजगता रखें और क्या सावधानी बरतें हमारे श्रोता?
2: तो ये जितनी भी ये बीमारियां, आई थिंक ये अवेयरनेस घर से शुरू होती है, बचपन से शुरू होनी चाहिए। एज ग्रोइंग अप एज अ किड हमारे घर में एजुकेशन होनी चाहिए अबाउट डाइट। आई थिंक डाइट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, अगर कोई सीख है वो डाइट है, कि प्रोटीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, फैट क्या होता है। ये तीन बेसिक पिलर्स हैं हमारे लिए जिसके ऊपर हम खाना खाते हैं, कितना प्रोटीन खाना चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, कितना फैट खाना चाहिए। सो डाइट इज वन पिलर ऑफ हेल्थी सोसाइटी, हेल्थी पेट की गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिकल इश्यूज के लिए। सेकेंड पिलर इज एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन। आई थिंक न्यूट्रिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेस्ड ऑन व्हाट आई टोल्ड एंड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करोगे तो पेट की काफी बीमारियां अपने आप ही ठीक हो जाएंगी, स्पेशली फैटी लिवर, आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एसिड रिफ्लक्स डिजीज। द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, के कब आपको टेस्टिंग करनी चाहिए, कब आपको डॉक्टर को देखना चाहिए। तो अगर ये तीन पिलर्स हम करें, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर, ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: जी डॉक्टर साहब, हमने कई लोगों को ये सुना है कहते हुए कि सिर दर्द हो रहा है और सिर दर्द की दवा ना लेके एसिडिटी की दवा लेते हैं तो सिर दर्द ठीक हो जाता है, या उल्टी की दवा लेते हैं तो सिर दर्द ठीक हो जाता है। तो मुझे बहुत अचरज हुआ कि उल्टी की दवा लेने से सिर दर्द कैसे ठीक हो गया, ये क्या समस्या है?
2: ये बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि ये पेशेंट जब हमारे पास भी आते हैं कि अगर मेरे को एसिडिटी हो गई और सिर दर्द हो गया है और एसिडिटी की दवाई लो तो मेरा सिर दर्द चले जाता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्ट पेशेंट्स को माइग्रेन होता है, बेसिकली खाना खाया नहीं होता टाइम पे, स्ट्रेस होता है, हेडेक शुरू हो जाती है। तो एसिडिटी की दवाई लो तो एसिडिटी चली जाती है, पर फॉर सम रीजन द स्ट्रेस गोज डाउन एंड द माइग्रेन ऑल्सो गोज अवे। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट कि इनको माइग्रेन है कि नहीं। तो फर्स्ट पार्ट आपका सवाल था कि हेडेक होती है पर एसिडिटी की दवाई लो हेडेक चली जाती है, तो ये मैंने अपनी सारी किताबें छांट लिए, मुझे इसका जवाब किधर नहीं मिला। ये मैंने बाहर कभी नहीं देखा, ये मैंने इंडियन पेशेंट्स में ही देखा है कि एसिडिटी की दवाई लो मेरी हेडेक चली गई है।
1: जी, जी।
2: तो आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन फॉर इट, बट जब मैं पेशेंट्स मेरे पास ये कंप्लेन लेके आते हैं ना, तो मेरा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि माइग्रेन ना हो।
1: Okay.
2: माइग्रेन कैन ट्रिगर बोथ एसिड रिफ्लक्स, नॉजिया, वॉमिटिंग एंड हेडेक्स। माइग्रेन को ठीक करोगे तो ये भी ठीक हो जाएगा। नाउ ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट ने बहुत देर तक खाना ना खाया हो, इसके लिए एसिडिटी हो। अगर हम खाना स्किप करें तो हमारी शुगर्स कम होगी तो अपने आप हेडेक शुरू हो जाएगी ना। तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, इट्स बिकॉज ऑफ स्किपिंग मील्स, इसके लिए आपको एसिडिटी हो रही है, इसके लिए आपको हेडेक हो रहा है।
1: जी, हमने भी कई बार एक डॉक्टर से और पूछा था ये सवाल, तो उन्होंने कहा था नहीं, सिर दर्द और एसिडिटी का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ने
2: कुछ तो है, देयर इज सम कोरिलेशन बिटवीन डाइट, नॉट ईटिंग ऑन टाइम, एसिडिटी एंड हेडेक्स।
1: जी, पर आजकल ये समस्या बहुत हो रही लोगों में कि स्टमक अपसेट होता है तो सिर दर्द होने लगता है। तो माइग्रेन अगर किसी को है मान लीजिए तो किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए?
2: तो अगर माइग्रेन है तो वी शुड सी अ न्यूरोलॉजिस्ट, जो ब्रेन के डॉक्टर होते हैं, बिकॉज बहुत ध्यान से देनी पड़ती है, क्योंकि सम ऑफ द माइग्रेन मेडिसिंस कैन कॉज एसिडिटी। तो अगर आपको एसिडिटी ऑलरेडी है तो माइग्रेन स्पेशलिस्ट को जब देखोगे तो यू हैव टू टेल कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो दे मेक श्योर दे गिव एन एंटासिड उसके साथ।
1: जी जी जी। और हम फैटी लिवर के बारे में बात कर रहे थे कि फैटी लिवर जिनको होता है, जिन पता चल जाता है, तो कई बार ऐसा लगता है कि कुछ लोग बहुत अल्कोहल लेते हैं या धूम्रपान करते हैं, सुपारी खाते हैं, तो क्या ये एक बड़ी वजह है फैटी लिवर की?
2: बिल्कुल
1: तो,
2: बिल्कुल
1: या बिल्कुल। फिर जो लोग नहीं लेते उन्हें भी होता है तो? हाँ, ये
2: तो अगर आप लिवर का टुकड़ा ले लो और फैटी लिवर है सपोज किसी को, वो लिवर का एक पीस निकाल के पैथोलॉजिस्ट को दिखाओ, वो पैथोलॉजिस्ट आपको बोल नहीं पाएगा, कह नहीं पाएगा कि ये पेशेंट अल्कोहल पीने के कारण फैटी लिवर हुआ है कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है। दोनों सेम चीज करते हैं। अगर आप अल्कोहल ना पियो, आपकी कार्बोहाइड्रेट इंटेक ज्यादा हो, तो लिवर में एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट फैट की तरह डिपॉजिट हो जाता है। अल्कोहल इज ऑल्सो लाइक अ कार्बोहाइड्रेट, वो भी सेम चीज होता है। एक्सेसिव अल्कोहल पीने से लिवर के अंदर फैट करके डिपॉजिट

0: डिपॉजिट हो जाता है। तो ओनली वे हम अलग कर पाते हैं कि अल्कोहल एंड नॉन अल्कोहल पेशेंट को पूछ के हिस्ट्री के ऊपर। तो अगर आपको फैटी लिवर ऑलरेडी है तो अल्कोहल आपको जरा भी नहीं पीनी चाहिए, वैसे भी अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए बिकॉज इट इज अ ग्रेड वन कार्सिनोजेनिक, मतलब अल्कोहल कैन कॉज कैंसर्स नॉट ओनली ऑफ द लिवर बट ऑल्सो ऑफ द माउथ, द फूड पाइप, द स्टमक एंड अदर ऑर्गन्स। तो अगर आपको ऑलरेडी एक बीमारी है तो आप उस पर दूसरी बीमारी क्यों डालोगे। धूम्रपान टबैको सेम चीज, धूम्रपान टबैको करने से एसिडिटी ज्यादा होती है, ऑलरेडी एसिडिटी से अल्सर होके कैंसर होने की संभावना ज्यादा है, उसके ऊपर से आप धूम्रपान करो, तंबाकू खाओ, तो ये प्रॉब्लम काफी बढ़ सकती है। अल्कोहल और फैटी लिवर गो हैंड इन हैंड। अगर आप अभी न्यू जो हमारा सिस्टम है जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को फैटी लिवर है कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज है, तो एक बीच का भी आता है समथिंग कॉल्ड मेट एएलडी, मतलब जहां पे अल्कोहल भी थोड़ा है, फैट भी थोड़ा है और दोनों बीमारियां पड़ रही हैं। ये सबसे डेंजरस है बिकॉज ऑलरेडी एक बीमारी चल रही है, आपने दूसरी बीमारी डाली है, तो ये जल्दी लिवर सिरोसिस और लिवर को खराब करती है। तो फैटी लिवर पेशेंट शुड नॉट बी टचिंग अल्कोहल।
1: जी जी डॉक्टर साहब, लिवर संबंधी और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं जिसके लिए सजग रहना चाहिए श्रोताओं को?
0: तो जो इंडिया में सबसे कॉमन है वो है हेपेटाइटिस बी, एक वायरस होता है जो इंडिया में बहुत कॉमन है, सर्टेन एरियाज ऑफ इंडिया में तो बहुत ही कॉमन है। तो इसका एक सिंपल ब्लड टेस्ट आता है हेपेटाइटिस बी का, इसके हम काफी कैंप्स करते हैं। आप एक सादा ब्लड टेस्ट हेपेटाइटिस बी का करो, अगर आपका हेपेटाइटिस बी नेगेटिव आया है तो आपको इसकी वैक्सीन ले लेनी चाहिए। दिस इज अ ट्रीटेबल कॉज ऑफ लिवर इंजरी हेपेटाइटिस बी। बाकी और भी वायरसेस होते हैं जैसे हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस ई होता है, ये बेसिकली रेनी सीजन में हमको ज्यादा दिखता है जब वाटर कंटेमिनेशन होता है, फीको ओरल कंटेमिनेशन बोलते हैं, खान पान साफ नहीं होता है, तब ये वायरस होता है, लिवर पे इंजरी करता है पर आके चला जाता है। हेपेटाइटिस ई ज्यादा हम प्रेगनेंसी में देखते हैं, हेपेटाइटिस ए कैन बी सीन एनी टाइम। एक और तरह का वायरस होता है हेपेटाइटिस सी, ये अभी हम कम देखते हैं, फॉरेन में ज्यादा दिखता है, इंडिया में कम दिखता है। ये बेसिकली ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है या कोई नीडल इंजरी से या कभी कभी सेक्सुअली भी होता है। हेपेटाइटिस सी की भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो मेरा मानना है कि ये वायरस इंजरीज हैं, ये लिवर को होती हैं, ये प्रिवेंटेबल डिजीजेज हैं। हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन आता है, हेपेटाइटिस बी का आता है और अभी हेपेटाइटिस ई का भी वैक्सीन आ गया है। तो अपने टेस्ट कराइए, अगर नेगेटिव है तो आप सब वैक्सीन लीजिए ताकि ये बीमारी ना हो। ये कॉमन इंजरी है लिवर की। तो फैटी लिवर हमने बोला, अल्कोहलिक लिवर इंजरी बहुत कॉमन है, अल्कोहल पीने के कारण लिवर फेल है वो तो हम जानते ही होता
1: जी,
0: है
1: जी, जी,
0: ये कॉमन है। वायरसेस कॉमन है, फिर बाकी की जो लिवर की इंजरीज हैं वो काफी रेयर होती हैं। लास्ट चीज मैं कहूंगा गॉल ब्लैडर स्टोन, गॉल ब्लैडर में पथरी होती है वो भी लिवर के नीचे ही बैठती है, उससे भी कभी कभी लिवर को इंजरी होती है। अगर लिवर की पथरी स्लिप हो जाए, लिवर की ट्यूब में आके फंस जाए तो उससे भी जॉन्डिस हो सकता है। तो ये कॉमन लिवर की बीमारियां हैं, गॉल स्टोन्स, अल्कोहल, फैटी लिवर एंड वायरसेस।
1: जी, आपने गॉल ब्लैडर का जिक्र किया तो मेरे जहन में ये बात आई कि कई बार जो उल्टी होती है तो क्या गॉल ब्लैडर में स्टोन है, ये भी वजह होती है क्या?
0: बिल्कुल हो सकती है, कभी कभी पेशेंट को पेट में थोड़ा दर्द होता है, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, स्पेशली फैटी फूड खाके, तला हुआ खाके, दिस इज अ साइन कि आपका शायद गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है। इसके लिए मैंने कहा था पहले भी कि अगर पेट का दर्द जारी रहे तो इन्वेस्टिगेशन करनी जरूरी है, एक सोनोग्राफी करेंगे उसमें ये पकड़ा जाएगा आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है कि नहीं।
1: जी जी, और गॉल ब्लैडर अगर ऑपरेट करके निकाला जाए तो उसके कुछ आगे चलकर मरीज को कुछ तकलीफ होती है?
0: नहीं, जरा भी नहीं। गॉल ब्लैडर और अपेंडिक्स ऐसे दो चीजें हैं जो निकाल के मोस्ट पेशेंट्स को कोई तकलीफ नहीं होती, लाइफ नॉर्मल कटते रहती है।
1: ये बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों में होती है तो दूर हुई। और डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि जो आईबीएस की समस्या है वो भी बहुत कॉमन है, अमूमन लोगों को ये होता है, ये जिसको सिकनेस ही बोलते हैं हम लोग, कि यात्रा पर जाना है तो जैसे वोमिटिंग सेंसेशन होने लगा या बार बार मोशन के लिए जाना पड़ता है, तो इसकी वजह क्या होती है? एक तो स्ट्रेस आपने बताया था, तो आंतों से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है क्या ये?
0: हाँ, ये बेसिकली मन और आंतों के कनेक्शन की प्रॉब्लम है। अगर हमको पता हो हमको जाना है किधर, तो वो स्ट्रेस ऑफ गोइंग आउटसाइड, उसके कारण हमको लगता है कि मोशन करना चाहिए, मोशन करना चाहिए और मोशन जाते हैं। तो अगर सपोज लूज मोशन की इशू है, तो कई मेरे पेशेंट है जो अगर अपने मन को नहीं शांत कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे ठीक, तो हम एक एंटी डायरियल दे देते हैं दवाई कि अगर आपको ट्रैवल करना है तो एक गोली ले लो जाने के पहले। अगर वॉमिटिंग इज अ प्रीडोमिनेंट प्रॉब्लम तो एक वॉमिटिंग की दवाई लेते हुए जाओ, एसिडिटी प्रॉब्लम है तो एक एसिडिटी की दवाई खाते हुए जाओ ताकि आपके जर्नी ठीक जाए, पहुंच जाओ जहां पहुंचना है। तो बेसिकली इट इज टू डू विद, आई वुड नॉट से वीक इंटेस्टाइन्स बट सेंसिटिविटी, दिस इज ऑल टू डू विद सेंसिटिव, हमारा पेट सेंसिटिव है बहुत।
1: तो इस समय

0: आईबीएस की समस्या से जब ग्रसित हो तो क्या फूड लेना चाहिए मरीज को? मतलब सॉलिड फूड खाना चाहिए या लिक्विड या पानी
1: हाँ
0: या
1: तो
0: कुछ नहीं?
1: नहीं, खा ऑलवेज लिक्विड तो लेना ही चाहिए ताकि वो कीप वेल हाइड्रेटेड, बट जो इजी डाइजेशन हो, जैसे कच्ची चीजें नहीं खानी चाहिए, कच्चा सलाद हो गया, यू नो फ्रूट, ज्यादा पत्ते वाली भाजी अवॉइड कर लो ट्रैवल में,
0: जी
1: कुक्ड फूड खाओ, राइस इजी होता है, दाल राइस खिचड़ी इजी है डाइजेस्ट करने के लिए, पानी अच्छे से पियो, छाछ पियो ताकि वो वेल हाइड्रेटेड।
0: और क्या उस समय आंतों में स्वेलिंग आई होती है आईबीएस?
1: एक्चुअली आईबीएस में कुछ नहीं आया होता, आईबीएस इज ऐसा सेंसिटिव थिंग, अगर आप स्कैन करके देखो, एंडोस्कोपी करके देखो तो सारा नॉर्मल होता है, इट इज अ सेंसिटिविटी थिंग, इट्स अ पेट और माइंड का प्रॉब्लम है ये।
0: अब चलते चलते एक गाना सुनवाइए हमारे श्रोताओं को, बताइए कौन सा गाना सुनवाए?
1: चले चलो ये गाना सुना है, चले चलो
0: चले चलो लगान का,
1: लगान का।
0: लगान फिल्म का गाना चले चलो।

0: डॉक्टर साहब, आजकल फैशन में है कि लिवर की बीमारी के लिए लिवर डिटॉक्स कुछ पाउडर मिला के घोल बनाए पी लिया, और बहुत सारे बीज का प्रचार हो रहा है, ये बीज वो बीज बना के घोल के पी लो। तो ये सब कितने कारगर होते हैं मरीज के लिए, चाहे वो पेट की जितनी समस्या है।
1: हाँ, तो जैसे आपने कहा ना, एज अ ह्यूमन हम हमेशा चाहते हैं कि सबसे सिंपलेस्ट वे ले लो। बार सिंपलेस्ट वे क्या होता है कि कोई बोल दे, अरे ये तेल ले, अच्छा है ये ले ले, इससे मैं ठीक हो गया, या कोई बोले कि ये गोली खा लो, ये गोली से आप ठीक हो जाओगे। बट जो रियल वे है, जैसे वेट लॉस करना, एक्सरसाइज करना, डाइट पे कंट्रोल करना, अपने मन पे कंट्रोल करना, अगर ये आप कर पाए तो ये सब नुस्खों की जरूरत नहीं है। और वी नो कि ये सब चलते नहीं है, कोई नुस्खा चलता नहीं है। वेट लॉस एक्सरसाइज का कोई शॉर्टकट नहीं है। खाना अच्छा खाना, टाइम पे खाना, अवॉइड टेकिंग सप्लीमेंट्स, अवॉइड टेकिंग आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन, क्योंकि हमको पता है कि हर्बल मेडिसिन आर नॉट रेगुलेटेड। अगर आपको कोई दवाई दे जो हमारे फार्मेसी में बनती है, सब रेगुलेटेड दवाईज हैं, आपको पता है कि एक 500 ml पैरासीटामोल है, 500 ml पैरासीटामोल है। जो आप जड़ी बूटियां लेते हैं या जो

0: तो आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं, मोस्टली दे आर डार्क इन कलर बिकॉज उसमें भस्म होता है, मेटल्स होते हैं, आपको पता नहीं उसके अंदर क्या है,
1: बिल्कुल,
0: और
1: स्टेरॉइड भी आ रहा है
0: स्टेरॉइड्स भी
1: गलत
0: आता है,
1: बताएं।
0: और ऐसी कोई चीज़ आप अपने मुंह में डालोगे और स्वॉलो करोगे, इंजेस्ट करोगे, उसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे किसी को नहीं पता। मेडिसिन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इट हैज़ टू बी टेस्टेड एंड ट्राइड, मतलब आपने ये दवाई लोगों को दी है, इनको दे के फिर फॉलो किया है, फिर देखा है कि इसका फर्क पड़ रहा है कि नहीं, देन वी मेडिसिन को अप्रूवल मिलती है। इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस। एक एक दवाई जो अभी इजीली मिल जाती है उसके पीछे बहुत इयर्स ऑफ रिसर्च होती है। तो ये जो ओवर द काउंटर मेडिसिन जो बोलते हैं, जो आजकल नेचुरोसूटिकल्स करके बिकते हैं, जो बहुत फैशन में है अभी, उस पर कोई डेटा नहीं है, और वर्स्ट कम टू वर्स्ट हमको ये नहीं पता कि उसका साइड इफेक्ट्स आगे जाके क्या हो गए। तो अगेन, बी सिंपल, लिव अ सिंपल लाइफ, एक्सरसाइज, ईट राइट। इट इज अ लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम। अगर अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करोगे, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम विल गेट सॉल्व।
1: डॉक्टर साहब, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतनी ढेर सारी पेट संबंधी बीमारियों की जानकारी

0: डेटा नहीं है, और वर्स्ट कम टू वर्स्ट हमको ये नहीं पता कि उसका साइड इफेक्ट्स आगे जाके क्या हो गए। तो अगेन बी सिंपल, लिव अ सिंपल लाइफ, एक्सरसाइज, ईट राइट। इट इज अ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। अगर अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करोगे मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स विल गेट सॉल्व्ड।
1: डॉक्टर साहब, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतनी ढेर सारी पेट संबंधी बीमारियों की जानकारी दी, जो बहुत जरूरी जानकारियां हैं, और हमें उम्मीद है कि श्रोताओं को बहुत फायदा पहुंचेगा। आपका तहे दिल से शुक्रिया। विविध भारती परिवार की ओर से नमस्कार।
0: थैंक यू, नमस्कार।
2: तो ये था सुप्रसिद्ध गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी का था। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब आज का सेहतनामा कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
3: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

0: सेवा के कार्यक्रम 11 बजे हैं। लीजिए सुनिए हमारा गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम मधुरिमा।
1: तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते। फिर खाए पिए के मामला में एक ठन फॉर्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते। ये आप मन ला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़कीन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
2: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मा सुपर हिट।
3: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
4: मम्मी मम्मी पापा आगे।
5: दक्ष, विराट, कन्हैया, तुहर मन भर मैं गरम गरम समोसा भजिया जलेबी लेके आया हूँ।
4: मम्मी प्लेट लाना।
6: प्लेट के का जरूरत है? तुहर ड्राइंग के कागज में खाओ। कतेक प्लेट ला, मैं मांजा धोत रहा हूँ।
7: ये मुसियाही लगे है, समोसा खराब हो जाही, ये मन नहीं खाना चाहिए।
6: ऐसने में खात खात उम्र बीत गए, कैसे जी?
5: हाँ जी,
4: कागज न्यूज पेपर मा तेल्हा फुल्हा खाए पिए के गरम जिनिस ला नहीं रखना चाहिए।
7: एमा केमिकल वाला स्याही लगे रही थे जिन गरम जिनिस संग रासायनिक क्रिया करके ओला जहरीला बना देते।
4: ये कर अलावा प्लास्टिक थर्माकोल या डिस्पोजल कप गिलास मा चाय कॉफी पीना सेहत खराब करते।
3: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
1: तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते। फिर खाए पिए के मामला मा एक ठन फॉर्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते। ये आप मन ला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़कीन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
2: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मा सुपर हिट।
3: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
8: आओ ननको भैया, कैसे हैं? होटल बढ़िया चलत है ना? ग्राहकी वगैरह ठीक है कि नहीं? रोको। अरे भैया, पहली जुन्ना तेल निकाल ले, तेकर बाद नवा तेल डालबे।
9: का है शिव भैया, तेल में तेल नहीं डालू तो जुन्ना तेल ला काय करू?
8: ताहू यार,
10: रियूट कुकिंग ऑयल योजना ले बायो डीजल बनाए जाते, जेकर ले आप और आपके वातावरण सुरक्षित रहे।
3: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
11: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
12: जी,
11: ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
12: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर KYC अपडेट करवाना चाहिए।
11: पर ये होगा कैसे?
12: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
11: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
12: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर KYC अपडेट करवा सकते हैं।
11: बस समझ गया।
12: अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
13: RBI कहता है,
14: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: गैर फिल्मी गीतों और गजलों के इस कार्यक्रम मधुरिमा में पहले सुनिए इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी की ये गजल, सुनिए चित्रा सिंह की आवाज में।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.6 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण।

0: तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते। फिर खाए पिए के मामला मा एक ठन फार्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते। ये आप मन ला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़किन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
1: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मां सुपर हिट।
2: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
3: मम्मी मम्मी पापा आगे।
4: दक्ष, विराट, कन्हैया, तुहर मन भर मैं गरम गरम समोसा भजिया जलेबी लेके आया हूँ।
3: मम्मी प्लेट लाना।
5: प्लेट के का जरूरत है? तुहर ड्राइंग के कागज में खाओ। कतेक प्लेट ला, मैं मांजा धोत रहा हूँ।
6: ये मुसिया ही लगे है, समोसा खराब हो जाए ये मन नहीं खाना चाहिए।
5: ऐसने में खात खात उम्र बीत गए, कैसे जी?
4: हाँ जी,
3: कागज न्यूज पेपर में तेल्हा फुल्हा खाए पिए के गरम जिनिस ला नहीं रखना चाहिए।
6: एमा केमिकल वाला स्याही लगे रही थे जिन गरम जिनिस संग रासायनिक क्रिया करके ओला जहरीला बना देते।
3: ये कर अलावा प्लास्टिक थर्माकोल या डिस्पोजल कप गिलास मा चाय कॉफी पीना सेहत खराब करते।
2: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
0: तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते। फिर खाए पिए के मामला मा एक ठन फार्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते। ये आप मन ला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़किन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
1: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मां सुपर हिट।
2: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
7: आओ ननको भैया, कैसे हैं? होटल बढ़िया चलत है ना? ग्राहकी वगैरह ठीक है कि नहीं? रोको। अरे भैया, पहली जुन्ना तेल निकाल ले, तेकर बाद नवा तेल डालबे।
8: का है शिव भैया, तेल में तेल नहीं डालू तो जुन्ना तेल ला काय करू?
7: तहू यार,
9: रियूट कुकिंग ऑयल योजना ले बायो डीजल बनाए जाते जेकर ले आप और आपके वातावरण सुरक्षित रहे।
2: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
10: नदीम परमार की ये गजल सुनिए जगजीत सिंह की आवाज में।

0: तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते। फिर खाए पिए के मामला मा एक ठन फार्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते। ये आप मन ला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़कीन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
1: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मा सुपर हिट।
2: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
3: मम्मी मम्मी पापा आगे।
4: दक्ष, विराट, कन्हैया, तुहर मन भर मैं गरम गरम समोसा भजिया जलेबी लेके आया हूँ।
3: मम्मी प्लेट लाना।
5: प्लेट के का जरूरत है? तुहर ड्राइंग के कागज में खाओ। कतेक प्लेट ला, मैं मांजा धोत रहा हूँ।
6: ये मस्याही लगे है, समोसा खराब हो जाही, ये मैं नहीं खाना चाहिए।
5: ऐसने में खात खात उम्र बीत गए, कैसे जी?
4: हाँ जी,
3: कागज न्यूज पेपर माँ तेल्हा फुल्हा खाए पिए के गरम जिनिस ला नहीं रखना चाहिए।
6: एमा केमिकल वाला स्याही लगे रही थे जिन गरम जिनिस संग रासायनिक क्रिया करके ओला जहरीला बना देते।
3: ये कर अलावा प्लास्टिक थर्माकोल या डिस्पोजल कप गिलास माँ चाय कॉफी पीना सेहत खराब करते।
2: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
0: तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते। फिर खाए पिए के मामला मा एक ठन फार्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते। ये आप मन ला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़कीन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
1: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मा सुपर हिट।
2: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
7: आओ ननको भैया, कैसे हैं? होटल बढ़िया चला थे ना? ग्राहकी वगैरह ठीक है कि नहीं? रोको। अरे भैया, पहली जुन्ना तेल निकाल ले, तेकर बाद नवा तेल डालबे।
8: काहे शिव भैया, तेल में तेल नहीं डालू तो जुन्ना तेल काय करू?
7: ताहू यार,
9: रियूट कुकिंग ऑयल योजना ले बायोडीजल बनाए जाते, जेकर ले आप और आपके वातावरण सुरक्षित रहे।
2: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
10: लीजिए सुनिए कैसर उल जाफरी की ये गजल पंकज उदास की आवाज में।

0: तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते। फिर खाए पिए के मामला मा एक ठन फार्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते। ये आप मन ला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़किन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
1: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मा सुपर हिट।
2: खाद्य सामग्री की सही देख रेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
3: मम्मी मम्मी पापा आगे।
4: दक्ष, विराट, कन्हैया, तुहर मन भर मैं गरम गरम समोसा भजिया जलेबी लेके आया हूँ।
3: मम्मी प्लेट लाना।
5: प्लेट के का जरूरत है? तुहर ड्राइंग के कागज में खाओ। कतेक प्लेट ला, मैं मांजा धोत रहा हूँ।
6: ये मस्याही लगे है, समोसा खराब हो जाए, ये मैं नहीं खाना चाहिए।
5: ऐसने में खात खात उम्र बीत गए, कैसे जी?
4: हाँ जी,
3: कागज न्यूज पेपर मा तेलहा फुल्हा खाए पिए के गरम जिनिस ला नहीं रखना चाहिए।
6: एमा केमिकल वाला स्याही लगे रही थे, जेन हा गरम जिनिस संग रासायनिक क्रिया करके ओला जहरीला बना देते।
3: ये कर अलावा प्लास्टिक थर्माकोल या डिस्पोजल कप गिलास मा चाय कॉफी पीना सेहत खराब करते।
2: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
0: तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते। फिर खाए पिए के मामला मा एक ठन फार्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते। ये आप मन ला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़किन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
1: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मा सुपर हिट।
2: खाद्य सामग्री की सही देख रेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
7: आओ ननकू भैया, कैसे हैं? होटल बढ़िया चला थे ना? ग्राहकी वगैरह ठीक है कि नहीं? रोको। अरे भैया, पहली जुन्ना तेल लत निकाल ले, तेकर बाद नवा तेल डाल बे।
8: का है शिव भैया, तेल में तेल नहीं डालू तो जुन्ना तेल ला का करूँ?
7: ताहूं यार।
9: रियूट कुकिंग ऑयल योजना ले बायो डीजल बनाए जाते, जेकर ले आप और आपके वातावरण सुरक्षित रहे।
2: खाद्य सामग्री की सही देख रेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
10: आइए अब सुनते हैं गालिब की ये गजल मेहंदी हसन की और तरन्नुम नाज की आवाज में।

0: उतर गए।
1: तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते। फिर खाए पिए के मामला में एक ठन फार्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते। ये आप मन ला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़किन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
2: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मा सुपर हिट।
3: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
4: मम्मी मम्मी पापा आगे।
5: दक्ष, विराट, कन्हैया, तुहर मन भर मैं गरम गरम समोसा भजिया जलेबी लेके आया हूँ।
4: मम्मी प्लेट लाना।
6: प्लेट के का जरूरत है? तुहर ड्राइंग के कागज में खाओ। कतेक प्लेट ला, मैं मांजा धोत रहा हूँ।
7: ये मस्याही लगे है, समोसा खराब हो जाए, ये मैं नहीं खाना चाहिए।
6: ऐसने में खात खात उम्र बीत गए, कैसे जी?
5: हाँ जी,
4: कागज न्यूज पेपर माँ तेल्हा फुल्हा खाए पिए के गरम जिनिस ला नहीं रखना चाहिए।
7: एमा केमिकल वाला स्याही लगे रही थे जिन गरम जिनिस संग रासायनिक क्रिया करके ओला जहरीला बना देते।
4: ये कर अलावा प्लास्टिक थर्माकोल या डिस्पोजल कप गिलास माँ चाय कॉफी पीना सेहत खराब करते।
3: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
1: तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते। फिर खाए पिए के मामला में एक ठन फार्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते। ये आप मन ला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़किन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
2: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मा सुपर हिट।
3: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
8: आओ ननकू भैया, कैसे हैं? होटल बढ़िया चला थे ना? ग्राहकी वगैरह ठीक है कि नहीं? रोको। अरे भैया, पहली जुन्ना तेल निकाल ले, तेकर बाद नवा तेल डालबे।
9: काहे सु भैया, तेल में तेल नहीं डालू तो जुन्ना तेल काय करू?
8: ताहू यार,
10: रियूट कुकिंग ऑयल योजना ले बायोडीजल बनाए जाते, जेकर ले आप और आपके वातावरण सुरक्षित रहे।
3: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
11: गैर फिल्मी गीतों और गजलों के इस कार्यक्रम मधुरिमा में अब सुनिए फैज अहमद फैज की ये गजल बेगम अख्तर की आवाज में।

0: तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते। फिर खाए पिए के मामला मा एक ठन फार्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते। ये आप मन ला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़कीन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
1: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मा सुपर हिट।
2: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
3: लीजिए अब सुनिए गुलजार की ये गजल गुलाम अली की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे हमारा गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम मधुरिमा। लीजिए अब सुनिए प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।

0: लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा।

और अब पेश आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल की बिक्री और वितरण पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को 1 जुलाई से हटाने का फैसला लिया। बिजली बिल भुगतान समाधान योजना की अवधि 3 माह के लिए बढ़ाई जाएगी और मुख्यमंत्री आज सरगुजा जिले में रामगढ़ महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होंगे। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री तथा वितरण पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध 1 जुलाई से हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के खुदरा पेट्रोल पंपों पर अब सामान्य व्यवस्था के तहत ईंधन की बिक्री होगी। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति सामान्य हो गई है और पेट्रोल डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिजली बिल भुगतान समाधान योजना की अवधि 3 माह के लिए बढ़ाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कल रायपुर के पास सोनपैरी में आयोजित कबीर जयंती महोत्सव को संबोधित करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे अधिक से अधिक उपभोक्ता सरचार्ज माफी और आकर्षक

पेट्रोल डीजल की बिक्री तथा वितरण पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध 1 जुलाई से हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के खुदरा पेट्रोल पंपों पर अब सामान्य व्यवस्था के तहत ईंधन की बिक्री होगी। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति सामान्य हो गई है और पेट्रोल डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिजली बिल भुगतान समाधान योजना की अवधि 3 माह के लिए बढ़ाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कल रायपुर के पास सोनपैरी में आयोजित कबीर जयंती महोत्सव को संबोधित करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे अधिक से अधिक उपभोक्ता सरचार्ज माफी और आकर्षक प्रावधानों का लाभ लेकर अपने लंबित बिजली बिलों का भुगतान कर सकेंगे। सरगुजा जिले के रामगढ़ में चल रहे 2 दिवसीय रामगढ़ महोत्सव का आज समापन होगा। समापन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इससे पहले पर्यटन और संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने कल इस महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर स्कूली बच्चों और स्थानीय कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री अग्रवाल ने रामगढ़ महोत्सव के 50 साल पूरे होने पर बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रामगढ़ केवल सरगुजा ही नहीं बल्कि पूरे देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण केंद्र है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सरगुजा और रायगढ़ जिले के दौरे पर रहेंगे। इससे पहले वे मुख्यमंत्री निवास में खेल और युवा कल्याण विभाग की बैठक लेंगे। इसके बाद वे हेलीकॉप्टर से सरगुजा जिले के उदयपुर स्थित झिरमिति स्टेडियम हेलीपैड पहुंचेंगे। दोपहर वे रामगढ़ महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद दोपहर लगभग 2:30 बजे खरसिया रायगढ़ के लिए रवाना होंगे। प्रदेश में कल से सहकारिता सप्ताह मनाया जा रहा है। कल रायपुर में इसका शुभारंभ सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत सहकारिता आंदोलन के जनक पंडित वामन राव बलिराम लाखे को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और इस अवसर पर श्री कश्यप ने कहा कि सहकारी संस्थाओं को गांव गांव तक सशक्त किया जा रहा है और किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। जांजगीर चांपा जिले के चांपा रेलवे स्टेशन के पास स्थित ओवरब्रिज पर 2 मोटरसाइकिल की हुई टक्कर में सड़क पर गिरा एक युवक तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद वाहन चालक वाहन समेत फरार हो गया। वहीं राजधानी रायपुर में ट्रैक्टरों से लदा ट्रेलर पलट गया, जिससे दुर्ग रायपुर मार्ग बाधित हो गया है। यातायात सुचारू बनाए रखने के लिए राहगीरों को एम्स महोबा बाजार मार्ग से वैकल्पिक रास्ते का उपयोग करने की सलाह दी गई है। बालोद जिले में पुलिस ने नौकरी लगाने के नाम पर ठगी के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया है, जो मुख्य सचिव से पहचान होने का झांसा देकर नौकरी लगाने का दावा करती थी। आरोपी महिला ने 7 लोगों से 25 लाख रुपए से अधिक की राशि की ठगी की है। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल की बिक्री और वितरण पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को 1 जुलाई से हटाने का फैसला लिया। बिजली बिल भुगतान समाधान योजना की अवधि 3 माह के लिए बढ़ाई जाएगी और मुख्यमंत्री आज सरगुजा जिले के रामगढ़ महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
1: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: श्री चौहान बाद में पूर्वोत्तर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। कल श्री चौहान अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। वे प्रभावित किसानों और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर राहत कार्यों का जायजा लेंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से इस्तीफा देते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि 4 दशकों से अधिक समय तक भारतीय सेना में सेवा करना उनके लिए सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है।
2: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में सीमा पार धन हस्तांतरण के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक स्तर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। विश्व के कई नेता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी पाकिस्तानी सैन्य हवाई हमलों की निंदा की है। तालिबान के उप प्रवक्ता हमदुल्ला फितरन ने बताया कि हवाई हमलों में 36 नागरिक मारे गए हैं और 163 अन्य घायल हो गए हैं, साथ ही 3 आवासीय मकान पूरी तरह से नष्ट हो गए। हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतेरेश ने शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया, सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया। भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भारत ने अपना मानवीय सहायता अभियान और तेज कर दिया है। इस अभियान के अंतर्गत प्रभावित लोगों को चिकित्सा सहायता, आपात राहत सामग्री और अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक फर्जी नोटिस का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि निजी पेट्रोलियम कंपनियां विभिन्न तेल विपणन कंपनियों के लोगों वाले इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेच रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में IOCL ने कहा कि यह दावा फर्जी है और निगम ने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है। घरेलू शेयर बाजार के आज के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 38 अंक गिरकर 76,690 और निफ्टी 13 अंक गिरकर 23,933 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। कुछ ही पलों में कार्यक्रम सुनेंगे यादों की महफिल।

FM बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 12 बजने को है, लीजिए सुनिए विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम जिन्हें हम मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।

कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान

यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं विधाता फिल्म का ये गाना, लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: प्रस्तुति पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

यादों की महफिल कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं अलका याग्निक और किशोर कुमार का गाया हुआ पिघलता आसमान फिल्म का गाना। इंदिवर के बोलों को संगीत से सवारा है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं।

0: वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम में अब जो गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं वो आशा भोसले और शब्बीर कुमार ने गाया है, वर्मा मलिक ने लिखा है और कल्याण जी आनंद जी ने धुन तैयार की है। फिल्म का नाम है राज तिलक।

0: उनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम में अब सुनते हैं एमजी हशमत का लिखा गीत, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, संकोच फिल्म का नाम है और आवाज है सुलक्षणा पंडित की।

गुलशन बाबरा का लिखा एक गीत आपने सुना रफू चक्कर फिल्म से, कंचन और शैलेंद्र सिंह की आवाजें थी। आइए अब आपको सुनवाते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में घुंगरू फिल्म का ये गाना।

लीजिए सुनिए इंदिवर का लिखा और कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया हुआ कलाकार फिल्म का गाना। आवाजें सुरेश वाडकर और साधना सरगम की है।

राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, प्रोफेसर प्यारे लाल फिल्म का ये गाना आपने सुना आशा भोसले की आवाज में। और अब आपको सुनवा रहे हैं इंदिवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी की धुन, मुकेश और कंचन की आवाजें। फिल्म का नाम है पाप और पुण्य।

राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, प्रोफेसर प्यारे लाल फिल्म का ये गाना आपने सुना आशा भोसले की आवाज में। और अब आपको सुनवा रहे हैं इंदिवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी की धुन, मुकेश और कंचन की आवाजें। फिल्म का नाम है पाप और पुण्य।

नमस्कार, शुभ दोपहर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम सुरीला सफर में। आप सभी को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। आज की इबारत पढ़कर बहुत सारे संदेश आए हैं। अगर आपने अभी ये इबारत नहीं पढ़ी है तो फेसबुक पेज पर हमने जो इबारत पोस्ट की है वो आपके लिए एक बार पढ़ लेते हैं। रिमझिम में भीगी समंदर की लहरें, उठे झूमके और घड़ी भर को ठहरे। बड़ी दूर से देख आवाज देती, कभी पांव में डोर बनकर लिपटती। किनारे पे आए, मिले, लौट जाए, कभी रेत पर लिखे नामों को छूकर उधर जा निकलती। जहां पत्थरों पर धड़कते हैं दो तिल एक ही ताल पर, गले उनसे मिलकर उन्हें प्यार देकर कोई गीत गाती और फिर लौट जाती। तो आपको बताना है कि कौन से शब्द हैं आज के और उन शब्दों पर कौन से गाने सुनाए जाएंगे। बहुत सारे संदेशों में इन शब्दों का भी जिक्र है और गीतों की भी बात हुई है। तो देखते हैं कि आज कौन कौन से गाने लिस्ट से मैच हो रहे हैं आपकी लिस्ट से। इस मैचिंग के लिए बहुत सारे संदेशों का से गुजरना होगा। और एक संदेश है, कहीं समंदर की लहरों की बातें हैं, कहीं समंदर के कुछ जो एक व्यंजनात्मक रूप से लिखी गई समंदर के बारे में कुछ पंक्तियां हैं। समंदर को जीवन से भी जोड़कर देखा गया है और समंदर के किनारे टहलने की भी कई अनुभव साझा किए गए हैं। बहरहाल ये जो संदेश है इसमें लहरों को सुरीला सफर से सजाया गया है। काव्यात्मक रूप से इस बारे में बात की गई है। समंदर की लहरें केवल पानी का उठना और गिरना नहीं बल्कि प्रकृति की सबसे उत्कृष्ट लय और ऊर्जा का नृत्य हैं। लहरों की अनवरत ध्वनि और निरंतरता किसी ध्यान जैसी अनुभूति देती है। लहरों में एक अद्भुत विरोधाभास होता है, जितनी प्रचंड और शक्तिशाली हो सकती है उतनी ही कोमल और शांत भी। जीवन में ठहराव नहीं निरंतरता का प्रतीक है ये लहरें। समुद्र का ये अनुशासन ही उसकी असली सुंदरता है। वह क्या बात है। और एक और संदेश में कहा गया है कि शाद और अवसाद में अवसर दर्शाती और साजे दिलों की हसरतों तरंगों भरी दास्ता बयान करती इश्किया इबारत निसंदेह प्रेमी युगल के प्रेम विवाह के लिए संजीवनी स्वरूप है। लहरों के राजहंस रूपी प्रेमी किनारे रेत पर इंतजार करती प्रेयसी को लुभाने में कामयाब होगी। इश्किया लबोलुआब से सराबोर संगीत में सुरीला सफर का इंतजार रहेगा। तो भाई इंतजार खत्म हो गया है और हमें उम्मीद है कि आप अपने रेडियो के करीब ही हैं, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो। एक और संदेश में कहा है कि समंदर की लहरों के माध्यम से प्रेमियों के दिलों के धड़कने और उनके आपसी जुड़ाव को दर्शाया गया है। समुंदर की लहरों को इस तरह पेश किया गया है जैसे वे इंसानों की तरह आवाज देती है, प्यार करती है और गीत गाती है। यादों की अमिटता, रेत पर लिखे नामों को लहरों का छूना उस प्रेम और यादों की पवित्रता को दर्शाता है जिन्हें समंदर रूपी प्रकृति सहेज कर रखती है। लहरों का किनारे पर आना, मिलना और फिर लौट जाना जीवन और प्रेम में आने वाले मिलन और वियोग के प्राकृतिक चक्र है, चक्र का प्रतीक है। वह क्या बात है। और एक और संदेश में शब्दों के का जिक्र किया गया है, उन शब्दों का। माई प्ले लिस्ट इज लॉन्गर टूडे, होपिंग टू हैव मोर चांसेस। छूकर मेरे मन को रुक जा रात, ठहर जा रे चंदा, इस तरह के कुछ गीत इन्होंने साझा किए हैं। एक और हमारे श्रोता है जिन्होंने कहीं से ये गजल हमें भेजी है, रेत पर लिख के मेरा नाम मिटाया ना करो। और बहुत खूबसूरत गजल है, हमें अच्छा लगेगा अगर आप अपनी बात लिखकर भेजें तो बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि आज आप अपने साथ लहरें लाई हैं या फिर लहरों के संग आने वाली हैं और हम सब लहरों के साथ कहीं बहुत दूर, हम सबको लहरों के साथ कहीं बहुत दूर ले जाने वाली हैं, जहां हो सुकून के कुछ पल और हम जी सकें अपने मन के हिसाब से, जहां कोई रोकने टोकने वाला भी ना हो, जो ना करना चाहे वो काम भी ना हो, बस साथ हो सिर्फ लहरें, फिर तो उनके साथ गुनगुनाना अपने आप ही हो जाएगा, नहीं भी आता होगा तो भी। क्या बात है भाई, ये बात तो

है ही कि गीत संगीत और जब मनचाह साथ हो या अपने मन की बात हो तो फिर कितना खूबसूरत वक्त गुजरता है, ये तो हम सभी जानते हैं। तो चलिए हम गीतों की शुरुआत करते हैं। रिमझिम शब्द को लेकर बहुत सारे गीतों के कयास आए हैं, तो चलिए एक झलक उन सभी की सुन लेते हैं।

तो भाई ये कुछ गीत हैं जो हमने आपकी पसंद से चुने और उनके थोड़े थोड़े अंश आपको सुनवा दिए। हमने ये गीत चुना है और इसे भी बहुत सारे श्रोताओं ने पसंद किया है। लेकिन पहले सवाल पूछ लेते हैं। एक तो आपको बताना है कि ये गीत किस फिल्म का है और किन कलाकारों पर फिल्माया गया है, और जो सबसे पहला रिमझिम का गीत था उसे एक फीमेल वॉइस में भी आपने सुना होगा, तो बताइए कि वो किसकी आवाज में आपने सुना है। गायिका का नाम आपको बताना है जो सबसे पहला गीत आपने रिमझिम का सुना था।

हमारे श्रोताओं का आया बहुत बहुत शुक्रिया। काला बाजार, देवानंद, वहीदा रहमान और रिमझिम गिरे सावन बरसात का जो गाना हमने आपको सुनाया था, सबसे पहला गाना मंजिल फिल्म का लता मंगेशकर की आवाज में। वाह क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह से प्रॉम्प्ट जो जवाब आते हैं ना, उनमें बहुत कार्यक्रम की को एक गति मिल जाती है और इस गति के साथ जो संदेश आते हैं वो तो बिल्कुल सोने में सुहागा हो जाते हैं। जैसे हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि आज की भारत में एक अजीब सी तड़प भी है और अपनापन भी। लहरों के माध्यम से प्रेम, मिलन, विरह और प्रकृति के अद्भुत तालमेल को बयां किया गया है। शब्दों का चयन इतना कोमल और संगीतमय है कि पढ़ते ही मन शांत और रूहानी एहसास से भर जाता है। आंखों के सामने बारिश की बूंदों के बीच नाचती झूमती लहरों का दृश्य सजीव हो उठता है। लहरों का उठना, ठहरना और फिर लौट जाना प्रकृति के शाश्वत नियम को दिखाता है। और एक और संदेश में कहा गया है कि कुछ लहरें समंदर से नहीं, यादों से उठती हैं। वे जब भी दिल के किनारे आती हैं, अपने दूर गए साथी से मिला जाती हैं, उनकी कई यादें याद दिला कर। एक और संदेश में तो रिमझिम के तराने से लेकर बहुत सारे गीतों का जिक्र हो गया है। पिछली रात से रिमझिम के तराने लेकर आई बरसात के आगमन से हमारे दिल के समंदर में भीगी भीगी ठंडी ठंडी लहर सी दौड़ रही है। घड़ी घड़ी मोरा दिल धड़के, हाय धड़के क्यों धड़के, आज सुरीले सफर के मिलन की बेला में। जैसे दो दिल धड़क रहे हैं और आवाज एक है, सांसों के तार पर देश की सुरीली धड़कन के ताल पर जब गीत गाया समंदर की लहरों ने, तब लहरों की तरह यादें टकराती हैं, तूफान उठाती हैं। रेत पर लिखे नाम भले ही मिट जाएं, दिल पर एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और एक और संदेश में कहा गया है कि विविध भारती के सुरीले सफर में आज समंदर की लहरों के साथ खेलते हैं, ऐसे गीतों का लुत्फ उठाते हैं जिसमें नायक नायिकाएं बेखौफ समंदर किनारे बेतहाशा दौड़ते लहरों के साथ मस्ती करते हैं। कभी रेत पर ताजमहल बनाते हैं तो कभी उसे मिटाकर फिर समंदर के उथले पानी में एक दूसरे को भिगोते लोटपोट हो जा रहे हैं। चलिए इसी से सवाल निकल आया, हमें बताइए कि क्या आपने कभी समंदर की सैर की है, किसी समंदर के किनारे घूमे हैं या वहां से सीपियां इकट्ठी की हैं। अगर ऐसा किया हो तो हमें जरूर बताएं और कहां गए हैं। अलग अलग तटों पर हमारे देश के अलग अलग समुद्री तट हैं जहाँ का पानी और जहाँ के समुद्री किनारे अलग अलग होते हैं, तो हमें ज़रूर बताएं कि आपका वो अनुभव कैसा रहा और कहाँ गए थे आप। और अब ये जो गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, बताइए पर्दे पर कौन गा रहा है और संगीत किनका है।

भाई कन्याकुमारी की बात की है जो कि तीन तरफ से समुद्र से घिरा है, बहुत रोमांच होता है, ऐसी अनोखी दुनिया होती है। ये हमारे एक श्रोता ने बताया है उस सवाल के जवाब में जो हमने पूछा था कि समुद्र के किनारे आप कहाँ गए हैं। और हमारी एक और श्रोता ने लिखा है कि मुंबई गए हैं। बाकी जवाबों का भी इंतजार हो रहा है, जरूर आप लोग कहीं घूमने गए हैं और जल्दी से बताइए। एक श्रोता कह रहे हैं कि आपने जैसे ही रिमझिम के तराने छेड़े वैसे ही हमारे यहाँ भी रिमझिम फुहारें पड़ने लगी हैं, मौसम बहुत ही सुहाना हो गया है। वाह क्या बात है। एक और श्रोता कह रहे हैं हम तो दीघा पश्चिम बंगाल गए थे। अब दूसरे सवाल की बारी, वैजयंती माला फिल्म मधुमति, घड़ी घड़ी मोरा दिल धड़के, ये जो गाना भी आपने सुना सलील चौधरी का संगीत निर्देशन था, ये जवाब भी आ गया है, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथियों ने बताया है कि ना बाबा मुझे तो पानी से बहुत डर लगता है, तो मैं जयपुर से ना अजमेर नाव में बैठी ना जल महल और पानी से दूर ही रहती हूँ। ओहो अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि पानी का डर जो है वो बहुत सी चीज़ों से दूर रहना के लिए मजबूर कर देता है। आप ये बताइए कि समुद्र के किनारे बहने वाली हवाओं का भी एक बड़ा ख़ास अहम भूमिका होती है, तो क्या कभी उन हवाओं के साथ आपकी कुछ मुलाकात हुई है जो तेज़ तेज़ हवाएं बहती हैं बारिश के समय में? अगर याद हो तो वो ज़रूर बताएं। और हाँ, अभी जिन श्रोताओं ने नहीं बताया है कि वो किस समुद्र के किनारे टहले हैं या क्या बनाया है उन्होंने, जो घरौने बनते हैं उन घरौनों को कई बार बच्चे भी बनाते हैं और आजकल तो बहुत सुंदर सा सेट भी मिलता है बच्चों के उन घरौनों को बनाने वाला, वो अगर सेट किसी बच्चे को गिफ्ट किया हो तो ये भी बताएं। अब अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। इस गीत को सुनने के लिए आपको बताना होगा कि ये गाना किस फिल्म का है। संदेशों की बात करें तो हमारे एक श्रोता ने बताया कि एक और रिमझिम का गाना याद दिला दिया, नैना बरसे रिमझिम रिमझिम, लता मंगेशकर की आवाज। वैसे तो रिमझिम शब्द वाला पहला सुना गीत मराठी है। रिमझिम पाउस पड़े सारखा, यमुनेला हुपूर चढ़े, पाणीच पाणी चहुड़ के चहुकड़े, वाह क्या बात है। और ये एक और श्रोता ने कहा है कि रिमझिम के तराने की गीत मालाएं बुन रहे हैं और सभी मुखड़े उम्मीद के अनुसार मंजिल ढूंढता गाना शुरू हुआ और काला बाजार पर रुक गया, क्या बात है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि सागर की अपनी शांत गुफाएं हैं, गहरी शांत और एकांत, यद्यपि लहरों में उग्रता हो लेकिन उसके नीचे कोई शांति नहीं है। शायद कोई टाइपो एरर हुई है, अशांति लिखते हुए इन्होंने अशांति लिखना चाहा होगा। एक और श्रोता ने कहा है कि वैसे हम अपनी कुछ दिन पहले की एक बात बताते हैं आपके साथ साथ सभी हंसेंगे सुनकर, तो हुआ यूं कि हमारी बेटी ने कुछ पंक्ति लिखकर अपनी एक पोस्ट डाली स्टेटस पर समुद्र के किनारे की पिक के साथ, तो हमने उसे लाइक किया और लिखा कि हम लिखते तो कुछ ऐसा लिखते, तो जवाब में उसने लिखा आप दिल से सोचती हैं और हम दिमाग से, फिर हमने लिखा अरे नहीं हम विविध भारती सुनते हैं ना, तो उसका रिप्लाई सारा क्रेडिट मम्मी ने विविध भारती को दे दिया। फिर उसने ये बात सब दोस्तों को बताई, सब इतना हंसे ऑफिस में, तो सोचो एक छोटी सी बात ने कितनों को हंसाया। बस यही तो हम चाहते हैं, सब खूब हंसे वरना परेशानियां तो सबके साथ हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। एक और श्रोता ने कहा है कि जीवन दर्शन समंदर की भांति ही गहरा ही नहीं अपितु रहस्यमय भी है, भले ही हम उसके अंदर अपने कौशल विकास से केबल बिछाकर पूरी दुनिया को ही मुट्ठी में भर लेने की होड़ में लगे हुए हैं, फिर भी ये समंदर अब भी रहस्यमय ही है, क्योंकि बहुतेरे तो किनारे के सीप घोंगों से ही खुश हो जा रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे कि एक कुशल गोताखोर ही समंदर में गोते लगाते हुए उसमें छुपे जीवन दर्शन स्वरूप हीरे मोतियों तक अपनी पहुंच बना पाते हैं। आगे भी लिखा है, लेकिन यहीं से एक सवाल का जन्म होता है और वो सवाल ये है कि

इस लाइन पर एक बड़ा प्रसिद्ध मुहावरा है कि गोताखोर लंबी जब अंदर तक जाते हैं समुद्र में, तभी वो हीरे मोतियों को पा लेते हैं। तो एक दोहा है, अगर वो दोहा याद आ रहा हो तो वो भी हमें बताएं, और इस फिल्म का नाम बताएं जो गीत आप सुन रहे हैं।

बहुत शुक्रिया सही जवाब के लिए। एक तोहफे की तरह आया ये जवाब। और मुकेश और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें, इंदिवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी की धुन, समंदर की भी बातें हमारे साथियों ने बताई हैं। वैसे एक सवाल आ रहा है मन में कि तोहफों को चुनते वक्त सबसे ज़्यादा किस बात का ध्यान रखा जाता है जेब के अलावा? ये जो हमारे साथियों ने बताया है समुद्र की यात्रा के बारे में, तो एक श्रोता कह रहे हैं कि हम तो समुद्र कनाडा में

इन्होंने देखा था कई बार, और बहुत देर तक वहां बैठकर आती जाती लहर को देखा, जो बस यही कह रही थी काश हमारे साथी को कुछ जीवन और मिल जाता तो आज वो भी हमारे साथ इस प्यारे से नजारे को देख पाते। पर बड़ी मस्ती की छोटी सी अपनी परी के साथ छोटे छोटे पत्थर, रंग बिरंगे पत्थर पानी में डाले और पानी में पैर डालकर बैठे रहे। कन्याकुमारी दीघा छूट गया लिखने में, ऐसा हमारे एक श्रोता कहते हैं। और मुंबई में तो अक्सर ही जाना होता है, वहां चौपाटी पर कई बार गए, चेन्नई में भी जाना हुआ, कन्याकुमारी भी गए हैं, ये हमारे एक और श्रोता ने बताया है। एक और श्रोता कह रही है कि वैसे तो हमारा शहर समुद्र के पास ही है, अक्सर हम वहां जाया करते हैं, दुमस बीच, सवाली बीच और गोवा दो बार गए, पर सबसे अलौकिक अनुभव हमें धनुषकोडी और कन्याकुमारी का रहा। दक्षिण भारत की यात्रा का अनुभव बेजोड़ था। क्या बात है, मुंबई के जुहू बीच दो तीन बार, अक्सा बीच और गोराई बीच का जिक्र किया है हमारे एक श्रोता ने। द्वारकाधीश और सोमनाथ गया हूं समुन्दर के पास, ये हमारे एक और श्रोता बता रहे हैं। एक श्रोता ने साझा किया है एक दुर्घटना होते होते बचने का जो अनुभव था इनका। हम लोग पूरा ग्रुप करीब 80 लोग उड़ीसा गए हुए थे, वहां पर समंदर की सैर करते हुए अचानक समंदर में तूफान आ गया और हमारी बोट गोते खाने लगी। तभी एक अन्य बोट वाले ने तूफान के सामने अपनी बोट लगाकर हमारी बोट को सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दिया। एक कौशोता कह रहे हैं कि जुहू चौपाटी मरीन ड्राइव दोनों जगह पर दो तीन बार गई हूं, पर वहां का पानी जो अजीब सा पानी की जो अजीब सी गंध होती है, मैं अपने को अच्छा महसूस नहीं कर पाती, इसलिए मैं पानी के किनारे पर जाना पसंद नहीं करती हूं। और एक और श्रोता बता रहे हैं कि पुरी के समुद्र में रस्सी पकड़कर लहरों का आनंद ले रहे थे, पर एक बहुत बड़ी लहर ने उठाकर पटक दिया और मोबाइल में पानी लग गया, थोड़ी सी लापरवाही की बड़ी सजा मिल गई। और समझौता फिल्म का ये गाना हमारे साथियों ने बताया, साथ ही अनिल धवन और शत्रुघ्न सिन्हा का भी नाम का जिक्र हो गया। अब संदेशों की बात करें तो और भी कई संदेश आए हैं। हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि मुंबई की कुछ बारिश आप ऑनलाइन ट्रांसफर करके हमारे शहर अजमेर में भेज दें प्लीज, क्योंकि यहाँ तो दूर दूर तक बारिश की कोई उम्मीद नहीं लग रही। अभी यहाँ तापमान 36 डिग्री सेंटीग्रेड है, ऑफिस के बाहर तेज धूप है। ओहो, ये तो बहुत खतरनाक है। चलिए जल्दी हम दुआ करते हैं बारिश आएगी। एक और श्रोता कह रहे हैं कि वीबीएस सर्विस मुंबई में मानसून के आगमन के साथ पानी बरसना शुरू हो गया, ऐसे में समंदर किनारे हवाओं के साथ लहरें अटखेलियां करती नजर आ रही हैं। पहली रिमझिम बारिश में धरती को छूती हुई पानी की बूंदें मिट्टी की सूंधी खुशबू बिखेरती हैं, तो वहीं समंदर किनारे किसी चट्टान पर बैठकर बीती यादें मस्तिष्क को दूसरी ही दुनिया में ले जाती हैं। और बताया है कि समुद्री लहरों के आसपास फिल्माए गए गाने बच सकते हैं। एक और संदेश में कहा गया, शांत लहर में कुछ खामोशियां भी गीत होती हैं, उन्हें सुनने के लिए कान नहीं बस समझने वाला दिल होना चाहिए। क्या बात है। चलिए अब इसी बात पर अगला गाना, इस गाने को सुनिए और हमें ये बताइए कि ये किस फिल्म का गाना है और गीतकार कौन है।

आवाज पर ये गाना तो हो गया और इसके साथ ही बहुत सारी आवाजें, भावनाएं आवाज बनकर हम तक पहुंच गई हैं। सच में ऐसा लग रहा है जैसे हम आमने सामने बैठकर बातें कर रहे हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुझे तो पानी से बड़ा डर लगता है, मैं तो तालाब में भी नहाता हूं तो साथ में बाल्टी या मग ले जाता हूं, समुद्र में जाना तो दूर की बात है। वैसे हमारे साथियों ने ये जरूर बता दिया जो हमने एक दोहे का जिक्र किया था कि जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न दरा रहा किनारे बैठ। कबीर दास की का ये दोहा हमारे साथियों ने बताया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता कह रही हैं कि समंदर से बड़ा गहरा नाता है मेरा, क्योंकि समंदर के काफ़ी नज़दीक रहती हूँ। अपनी हर खुशी के पल में समंदर के किनारे पहुँच जाते हैं, टहलना हो तो भी वहीं जाते हैं। लहरों से अपनी दोस्ती है, समंदर की हवाओं से यारी है अपनी। क्या बात है, वैसे बहुत बातें करती हैं हवाएँ जब आप समंदर के किनारे हों। एक और श्रोता कह रहे हैं कि गुजरात के दमन दीव बीच और सोमनाथ विजाग बीच, चेन्नई के मरीना बीच और रामेश्वरम के धनुषकोडी और कन्याकुमारी केरला के कोवलम बीच की सैर करके आई हूँ, पर जो चौपाटी की बात है वो सबसे निराली है क्योंकि उसमें बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। क्या बात है। एक और श्रोता ने बताया है कि रेत पर नाम लिखने का किस्सा, कि बचपन इनका मुंबई में ही गुजरा था, समुद्र से गहरा लगाव है। जब भी हम मुंबई आते हैं तो जुहू चौपाटी, गिरगांव चौपाटी या अन्य बीचेस में ज़रूर जाते हैं। धर्मपत्नी जब बच्चों के साथ होती हैं तो मैं चुपके से हर बार रेत पर दिल का शेप बनाता हूँ धर्मपत्नी का नाम लिखकर, आई लव यू भी लिखता हूँ और सबको बुलाता हूँ, तो धर्मपत्नी और बच्चों के चेहरे की मुस्कुराहट ही मेरा तोहफा होता है और वहाँ का वीडियो भी सेव करके रखता हूँ। हाँ, हम यही बात कहने वाले थे कि ऐसे नज़ारों की तो फ़ोटो तुरंत खींच लेनी चाहिए। क्या बात है। एक और श्रोता कह रही हैं कि मैं वो खुश नसीब हूँ जो समंदर के किनारे रहती हूँ, मेरा बेटा रोज शाम को खिलौने लेकर रेती में खेलते खेलते बड़ा हुआ है। मैं भी सीपियाँ इकट्ठा करके उनसे अलग अलग डेकोरेटिव चीज़ें बनाती थी, लेकिन अब समंदर किनारे बहुत गंदगी रहती है, सीपियाँ मिलना भी बंद हो गया है। सच में ये एक बहुत ही दुखद बात है और इसलिए समंदर को साफ रखें। अगर समंदर के किनारे आप जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि मुंबई चेन्नई जगन्नाथपुरी रामेश्वरम कन्याकुमारी जाना हुआ, हर बार का रोमांच अलग अलग रहा। मेरी बिटिया का बेटा पुरी में पिछले साल हमारे साथ था, उसके साथ समंदर के किनारे लहरों से खेलते खेलते वो अचानक किसी लहर के साथ बह निकला। बस थोड़ी दूर जाते ही हमने लपक कर उसे पकड़ लिया, वो तो मज़े लेता रहा पर हम सबके तो हाथ पैर जम से गए थे। कन्याकुमारी में सनराइज की वो झलक का अनुभव इतना सुंदर और आत्मिक अनुभव से भरा हुआ है, वो नज़ारा वीडियो में आज तक कैद है जिसे हम यदा कदा देखते रहते हैं। एक गीत सुलक्षणा पंडित का गाया हुआ, तू ही सागर है तू ही किनारा। और अब वो सवाल जो हमने पूछा था, प्रेम

गीत फिल्म का गाना अनीता रास का जिक्र किया, इंदीवर का लिखा हुआ ये गीत था, ये भी हमारे साथियों ने बता दिया। और अब हम अगले गाने की तरफ चलें, उसके पहले एक संदेश है। प्रकृति और मनुष्य आदिकाल से सहचर हैं, जब रिमझिम बारिश की बूंदें समंदर की लहरों पर पड़ती हैं तो मानो बिछड़े हुए प्रेमियों का मिलन हो रहा हो। यह दृश्य और अदृश्य का मिलना मानव मन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इस माहौल में मनुष्य के भीतर की तार्किकता मौन हो जाती है और संवेदनशीलता जागृत हो जाती है। क्या बात है। एक और संदेश में कहा है कि सुख का सुंदर चैतन्य आत्मा है, उसमें से आनंद की तरंगें उठती हैं, खुशी की लहरें उठती हैं और फिर उसी चैतन्य समुद्र में समाती भी हैं। एक और श्रोता ने कविता साझा की है, कहीं पढ़ी हुई ये कविता साझा की है इन्होंने। बादल बरसे धुल गई मन पर बैठी धूल, सब कुछ अपने हो गए समंदर नाव और मस्तूल, खिली जुलाई खुल गया बारिश का स्कूल, बस्ता लेकर सज रहे गुलमोहर के फूल। क्या बात है। तो चलिए अब अगले गीत की बारी है, बताइए कि गीत संगीत किनका है और फिल्म में कौन से कलाकार हैं।

भाई हमारे श्रोताओं ने शशि कपूर और मुमताज का तो जिक्र किया, चोर मचाए शोर का नाम भी बता दिया, लेकिन गीत संगीत नहीं बताया। चलिए हम बता देते हैं, गीत संगीत रविंद्र जैन का था। और एक श्रोता ने बताया है कि चेन्नई के मरीना बीच की वे यादें केवल एक सैर की याद नहीं बल्कि परिवार के साथ बिताए गए उन अनमोल पलों

की धरोहर हैं जिन्हें याद करके आज भी मन मुस्कुरा उठता है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि एक बार गोवा गए थे तो उनका फ़ोन जो था पानी में गिर गया और उसके बाद सैंड में दब गया, ढूंढने पर भी नहीं मिला, इनका ट्रिप ख़राब हो गया। वैसे बहुत एहतियात के साथ इस दौरान रहना पड़ता है, समुंदर कई बार आपके साथ अटखेलियाँ करते करते कुछ ऐसा कर जाता है कि आपने उम्मीद भी नहीं की होती है। एक और श्रोता ने बताया कि भोपाल में आज सुबह से ही बादल और हल्की बारिश का सिलसिला चल रहा है, मौसम बहुत सुहाना है, कभी बरसात के मौसम में आप यहाँ आएँ तो आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। क्या बात है, हम दुआ करेंगे कि हम ज़रूर आएँ। और एक और श्रोता बता रहे हैं कि सूरत में बारिश हो गई, कल रात 10:30 बजे के बाद शुरू हुई, सुबह 10 बजे तक जारी थी, लेकिन मैं राजस्थान में हूँ, अभी जमकर बारिश नहीं हुई। एक और श्रोता ने अंडमान निकोबार जाते हुए बे ऑफ बंगाल समंदर हवाई जहाज से 2.5 घंटे का सफर पूरा किया, ये बताया है, नीचे देखो तो नीला समंदर था, मन में डर लग रहा था लेकिन थ्रिल भी लग रहा था। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि आप लोग मुंबई में पानी की बारिश से भीग रहे हैं, सुनकर ही बहुत अच्छा लग रहा है। हम यहाँ बनारस में भी पानी से भीग रहे हैं लेकिन सेल्फ सर्विस पसीने से, दुआ कीजिए जी। बिल्कुल, हम तो हाथ जोड़कर दुआ कर रहे हैं कि जल्दी से ये बादल पहुँचे। मेघदूतों को के बारे में आपने सुना है ना, हमने मेघदूत कह दिया है कि जल्द से जल्द हमारे सभी साथियों तक पहुँचे। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गोवा के समुद्र तटों को छोड़कर शेष सभी समुद्र तटों पर हो आए हैं, यहाँ तक कि गंगा सागर भी हो आए हैं, क्या बात है। और एक और श्रोता बता रहे हैं कि अभी इन्होंने वृंदावन की यात्रा की और यमुना की सैर की, सागर के साथ पूरा भारत देखा, दादर की चौपाटी याद आती है। अच्छा, वैसे समुद्र जो है वो कई जगह बड़ा रिझाता है और कई जगह चेतावनी भी देता है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि रामेश्वरम के धनुषकोडी और कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद स्मारक पर तेज हवाओं का सामना करना पड़ा था। और एक और श्रोता ने बताया कि हमारे शहर कटक से पूरी नज़दीक होने के कारण अक्सर जब मूड किया चल दिए समंदर की सैर को, क्या बात है। और अब अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, इस गीत को सुनिए और हमें ये बताइए कि ये किस नायिका पर फिल्माया गया है।

हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हेर आई शब्द का मतलब बुंदेलखंडी में ढूंढ आई, वैसे हेराई यहाँ पर प्रयोग हुआ है खो आई। और हमारे श्रोताओं ने तुरंत जवाब दिया कि अभिमान फिल्म का गाना नायिका जया भादुड़ी, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया मजरू दादा की रचना, सचिन दा का संगीत, ऐसा हमारे एक और साथी बता रहे हैं। और मुंबई में अरब सागर पर बना हुआ सीलिंग देखने जाना है एक श्रोता की ये ख्वाहिश है, और इनकी ये ख्वाहिश जल्दी से जल्दी पूरी हो, हम तो यही दुआ करेंगे। एक श्रोता ने बताया है कि हम लोग समंदर के किनारे हमने काम भी किया है और अच्छा घूमे भी हैं। एक बार नीलोफर तूफान भी आया था, दो बार रहा, दोनों बार तूफान था, एक तीन चार लगातार लाइट भी नहीं थी, फिर भी आज भी किनारे रहने की बहुत इच्छुक हूँ। एक और श्रोता ने एक दोहा साझा किया है समुद्र तट के वर्णन के बारे में, रामचरितमानस का दोहा है, बांध्यो बन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारीस सत्य तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीस। समुद्र के ये 10 नाम हैं जो वाकई बड़ी खूबसूरती से तुलसीदास जी ने पिरोए हैं इस दोहे में। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि बदलते मौसम में जब रिमझिम की बूंदें बरसती हैं तो रेत पर लिखे वो अधूरे नाम भी भीग जाते हैं, लेकिन जहां समंदर की लहरें इन पथरीली चट्टानों से टकराती हैं वहां आज भी दो दिल एक ही ताल पर धड़कते हैं। मानो कह रही हूं कि कुछ सफर कभी खत्म नहीं होते। एक और श्रोता ने कहा है कि एक सुंदर स्वप्निल काव्य शिल्प यानी आज की भारत समुद्र की लहरों पर जो बिखरा रही है रिमझिम की दौलत, क्या बात है। कल कल फेनिल सागर लहरें किनारे को जो छुए, धड़कते प्रेमी दो दिलों पर प्रणय रस वो छिटकाएं, आते जाते मधुर सुरीले प्रेम गीत वो गुनगुनाएं, और कुछ गाने भी इन्होंने साझा किए हैं। और एक और श्रोता ने कहा है कि सागर के अनंत विस्तार में उठती गिरती ये लहरें कभी शांत कभी उग्र, जैसे जिंदगी की ही कोई अनकही दास्तान कहें, कुछ दूर क्षितिज में उठकर किनारों को छूकर ये बिखर जाती हैं, हार नहीं मानती, बस एक बार एक नया हौसला लेकर आती हैं, कभी थपेड़ों से चुभती हैं तो कभी मखमली स्पर्श सी हो जाती हैं। लहरें जिंदगी के सफर में बहुत कुछ सिखा जाती हैं, हर लहर हमें ये बताती है कि गिरना तो बस उठने की तैयारी है, ठहरना नहीं, निरंतर बहते जाना ही इस बहते हुए जीवन की बाजी है, क्या बात है। और अब ये गीत सुनिए और बताइए स्वर किनका है,

लता जी और भूपेंद्र सिंह, ये हमारे साथियों ने लिखकर भेजा है। फिल्म किनारा बहुत गंभीर फिल्म और बहुत सारे श्रोताओं ने जिक्र किया है। लता दीदी बिल्कुल सही, इनकी आवाज़ ही पहचान है। और अभिमान फिल्म के गाने के लिए भी जया भादुड़ी, अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर, एसडी बर्मन का जिक्र हुआ है। संदेश बहुत सारे हैं और मुझे लगता है कि मुझे सारे संदेश कैसे पढ़ने होंगे। सागर के अनंत विस्तार में उठती गिरती ये लहरें, कभी शांत कभी उग्र, जैसे जिंदगी की ही कोई अनकही दास्तान कहें, ये हमारे एक श्रोता लिखते हैं। और एक और श्रोता ने कहा है कि आज शायद दरिया समंदर नदियों की उनके अविरत बहती लहरों का जिक्र होगा। बिना भीगे मन को प्रसन्न करने वाली लहरों का वो अनहद संगीत शोरगुल में भी कर्णप्रिय लगता है। मैं घंटों तक समंदर के किनारों से चलता हुआ लहरों का आनंद लेता हूँ, थकान मिट जाती है। शाम को ढलते हुए सूरज की किरणों का दृश्य मनोहर होता है। और इन्होंने कुछ गीत भी लिखे हैं। एक और श्रोता कह रहे हैं कि सागर परम चेतना है, जिसमें बहुत गंभीर स्थायित्व और गहराई है और उसकी गहराई ज्ञान का प्रतीक है। लहरें चंचलता, भाव और उमंग को दर्शाती हैं, जो कुछ कुछ अहंकार का रूप लगती हैं। मानो ये कहना चाहती हैं कि उन्होंने ही सागर का निर्माण किया है, यथार्थ में तो वो सागर का अंश मात्र ही हैं। काफ़ी गहरा संदेश है ये। और अब ये गीत सुनिए और बताइए कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के मित्र की भूमिका किन्होंने निभाई है।

हमारे श्रोताओं ने कहा है, जवाब बिल्कुल सही दिया है। अमिताभ बच्चन के मित्र हैं अमजद खान, किशन और बिशन। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि कॉलेज काल की ये फिल्म है। एक और श्रोता ने कहा है कि किशन चाचा के अमजद खान ने ये गीत गाना, याराना के संगीत राजेश रोशन का संगीत, इन्होंने ये लिखा है। और एक और श्रोता ने अमजद खान उर्फ गब्बर सिंह को याद किया है। एक संदेश है कि आज सोशल मीडिया दिवस है। सोशल मीडिया ऐसा मंच जहाँ व्यक्ति अपने स्वतंत्र रूप से विचार रख सकता है और प्रतिक्रिया दे सकता है। हमें चलिए आपके विचारों के साथ हमने आज का ये कार्यक्रम का ये सफ़र तय किया, सुरीला सफ़र। और अब इस कार्यक्रम को यहीं पर दे रहे हैं विराम। तो दीजिए राजुल को इजाज़त, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

0: किताबें पढ़ते पढ़ते एक अलग ही दुनिया में चला जाता है। नृत्य करने वाला अपने जीवन की सारी परेशानियों से मुक्त हो जाता है और बागवानी करते करते तो कोई फूलों के साथ हंसना और बोलना शुरू कर देता है। शौक जीवन को आनंदमय उत्साहपूर्ण बनाते हैं। और आज का जीवन कितना व्यस्त है, कितने तनावपूर्ण जीवन में जी रहे हैं, तो ऐसे में जो शौक है ना, वो आपको ताजगी देते हैं और शांति प्रदान करते हैं। और इसी शौक के साथ में हम अपने जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हैं।
1: पान बीड़ी सिगरेट तंबाकू नशा,
2: तो फिर
1: हमको तो नशा है।

शौक, शौक बड़ी चीज होती है ना। जो मन करे वो कर लेना, क्या यही शौक है? नहीं, जो मन को अच्छा लगे वही कर लेना, ये शौक है? ये भी गलत है। सही तो तब है जब हम वो काम करें जिससे हमारे मन को खुशी मिले और करते करते मन में आह्लाद यानी बहुत सारी प्रसन्नता आ जाए, उसे ही कहेंगे शौक। अब शौक जो है उसका मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा स्थान है। शौक वो कार्य है जो अपनी खुशी, रुचि और मन की संतुष्टि के लिए करते हैं। अब कई लोग होते हैं जो चित्रकारी करते समय कहीं खो ही जाते हैं, कई बार आवाज देने के बाद ही वो उस ओर ध्यान देते हैं। कई बार कोई खेल खेल रहा होता है उसका ध्यान ही नहीं होता, कोई गाना गा रहा होता है उसमें ही खो जाता है, और कोई तो

0: शादी शेख चिल्ली का ये ख्वाब, अरे एक जर्रे की ये जुर्रत छूना चाहे आफताब।
1: किबला खादिम पे न कीजिए इस कदर गुस्सा फिजूल, मैं हूँ आशिक इश्क में मरना भी है मुझको कबूल।
0: तो मरेगा?
1: हाँ जी मरेगा।
0: ये जो कहेगी करेगा?
1: हाँ जी करेगा करेगा।

0: ये जो कहे मैं भी कहूँ कांटे को गुलाब। अरे हमको तो नशा है मोहब्बत का जनाब, ये हमको तो नशा है मोहब्बत का जनाब। आहे पान बीड़ी सिगरेट तंबाकू ना शराब, हमको तो नशा है मोहब्बत का जनाब।
1: शौक कब आता है, कहाँ से आता है और कैसे आता है, ये प्रश्न सबके मन में होते हैं। कभी कोई कहता है कि पिछले जन्म में यही काम करते रहे होगे, इसीलिए तो इस जन्म में उस चीज का शौक है। पर ऐसा नहीं है, शौक अलग ही चीज है। बस वो काम करते करते मन को सुकून मिल जाए और जिस काम को भी कर रहे हैं वो करते करते आत्मिक शांति मिल जाए, शायद इसे ही शौक कहेंगे। और ये जो शौक है इसके कई सारे फायदे हैं। मानसिक तनाव कम होता है। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई काम करने का मन नहीं है, परंतु जबरन या आवश्यकता अनुसार उसे करना पड़ता है। और करते करते लगातार उस कार्य को करते करते जब बोर हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं, तो थोड़ी देर किंचित समय के लिए ही अपने शौक को पूरा करना शायद मन को शांति ही दे दे, और फिर से नई ऊर्जा के साथ हम वो कार्य कर सकते हैं जो करने में हमें बहुत ज्यादा मन नहीं लग रहा है। या आज के जमाने में मोबाइल इंटरनेट पर रहने की जगह कोई व्यक्ति अपने शौक के काम करके अपना समय बचा सकता है और अच्छे कार्यों में लगा लेता है और व्यक्तित्व का विकास भी होता है।

अब एक और बात मन में आती है कि यदि किसी व्यक्ति ने शौक को ही पेशा बना लिया, जैसे बचपन से कोई गाना गाना चाहता था और वो गायक बन गया, जैसे किसी को बातें करने का शौक था और वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताने लगा, या कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे चित्रकारी का शौक था और उसने उसे ही अपना शौक, उस शौक को ही अपना पेशा बना लिया और निकल पड़ा इस दुनिया के उस युद्ध में जहां से उसे कमाना है पैसा भी और भोजन भी, तो इससे फायदा क्या होता है या नुकसान क्या होता है? तो हालांकि इस बात से तो फायदा ही फायदा है, क्योंकि आपने अपने शौक को ही पेशा बना लिया तो और अधिक मेहनत लगन से आप काम करेंगे, उसमें नई नई आवश्यकताएं खोजेंगे, नए नए अनुसंधान करेंगे, काम में खुशी और संतोष मिलेगा, व्यक्ति अपनी प्रतिभा का पूरा उपयोग कर पाएगा, तनाव तो बढ़ेगा ही नहीं, सफलता और प्रसिद्धि भी मिल जाएगी और आर्थिक लाभ तो होगा ही, साथ में होगी मानसिक संतुष्टि भी। तो कभी अगर मौका मिले अपने शौक को अपना व्यापार या अपना व्यवसाय बनाने का तो जरूर बना लीजिए।

अब एक और प्रश्न आता है कि बच्चों को किस चीज का शौक है ये कैसे पता करें। बहुत आसान है, माता पिता ही अपने बच्चे का मूल्यांकन करके उसकी गतिविधियों को ध्यान से देखकर उसके बारे में पता कर सकते हैं। बच्चों को बच्चों की गतिविधियों से कैसे पहचाने, तो सबसे पहली चीज यह देखें कि खाली समय में वह क्या करना पसंद करता है, किस विषय पर अधिक प्रश्न आते हैं। कभी उसे खेल खिलाएं, कभी संगीत की ओर ले जाएं, कभी चित्रकारी कराएं, कभी नृत्य कराएं, जिसमें वो अच्छा है वही उसका शौक है। आज की त्रिवेणी में बस इतना ही। आज्ञा दीजिए विधि जैन को। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के ग्रे सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्य बल के लिए अपना समर्थन दोहराया। ईरान के दोहा में बैठक से इंकार के बाद अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता पर अनिश्चितता बरकरार। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और जर्मनी पैराग्वे से पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हार कर फीफा विश्व कप से बाहर। मोरक्को ने नीदरलैंड को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। यूरो बैंक ने यूनान से भारत में सीमा पार धन भुगतान के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि यूनान में

0: यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं। इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है। श्री गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य शुरू किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी BLO अगले महीने की 29 तारीख तक हर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। कल मतदाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के सभी पात्र मतदाताओं से इस संशोधन प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है। कर्नाटक में ब्लॉक स्तर के अधिकारी BLO विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत घरों का दौरा कर रहे हैं। इस कार्य के लिए राज्य भर के सभी 31 जिला निर्वाचन कार्यालयों में 59,000 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं। 4 अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी, 224 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 336 सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी और 7,556 BLO पर्यवेक्षक भी पुनरीक्षण प्रक्रिया में शामिल हैं। झारखंड में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: बूथ लेवल अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे और सत्यापन करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाना है ताकि कोई भी पात्र भारतीय मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। श्री कुमार ने मतदाताओं से अपील की कि फॉर्म प्राप्त होने पर आवश्यक जानकारी भरकर हस्ताक्षर सहित शीघ्र BLO को वापस करें ताकि उनका नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। आज राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने खूंटी जिले के तोरपा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 84, 87 और 89 का निरीक्षण कर BLO और BLA2 के साथ बैठक की और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की तैयारियों और कार्य योजना की समीक्षा की। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 अभियान को गति देने के लिए #झारखंडSIR के साथ सोशल मीडिया जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से महवेश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
1: मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के उपायुक्त अभिलाष बरनवाल ने बताया कि 1,021 बूथ स्तरीय अधिकारी BLO जिले के सभी 1,021 मतदान केंद्रों पर 29 जुलाई तक घरों का दौरा करेंगे और उन मतदाताओं को पहले से भरे हुए स्वगणना प्रपत्र वितरित करेंगे जिनके नाम 2025 की मतदाता सूची में पहले से ही शामिल हैं। इस बीच केरलम में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना प्रक्रिया आज समाप्त हो रही है। राज्य में रहने वाले सभी लोग आधी रात तक पोर्टल पर अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं। आगे की जानकारी एकत्र करने के लिए जनगणना कर्मी कल से घरों का दौरा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए विशाखापट्टनम पहुंची। उनका स्वागत INS देगा में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल S. अब्दुल नजीर ने किया। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा, अवसंरचना और कुशल चिकित्सा, मानव संसाधन दोनों को मजबूत करने पर समान रूप से जोर दिया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेस के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ILBS जैसे संस्थान देश के स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
3: ILBS ने नहीं सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में अपना नाम स्थापित किया है। ऐसे समय में 10th कॉन्वोकेशन हो रहा है ये सेलिब्रेट करने के। स्टूडेंट्स जिनको आज डिग्री मिल रही है

0: उनके लिए भी ये सेलिब्रेशन का मौका है, पर उनके सेलिब्रेशन है उनकी सेक्रीफाइस, उनका डिसिप्लिन, उस सब के कारण आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि उनको ये डिग्रियां हासिल हो रही हैं। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
2: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है, जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
1: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन RGVVS 2026 का आयोजन किया है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ग्रामीण परिवर्तन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया, जिसका समापन हाल ही में हुआ है। इसके अंतर्गत केंद्र राज्य के मजबूत सहयोग, समुदाय आधारित विकास और प्रौद्योगिकी आधारित शासन के माध्यम से विकसित ग्राम विकसित भारत के दृष्टिकोण को गति देने की साझा प्रतिबद्धता को ध्यान में रखा गया। सरकार ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्ष में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
3: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
1: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ERNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल को आतंकवाद को धन मुहैया कराने और धन शोधन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का अविभाज्य अंग बताते हुए इसके लिए अपना पुरजोर समर्थन फिर से व्यक्त किया है। संगठन की ग्रे लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद पाकिस्तान ने FATF की आलोचना की थी, जिसके बाद भारत ने FATF के प्रति अपना समर्थन दोहराया। संयुक्त राष्ट्र में आतंकरोधी सप्ताह से अलग एक समारोह में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि FATF की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का प्रयास जायज चिंताओं के बजाय जांच के दायरे में आने का भय अधिक दर्शाता है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमेरिका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोहा में नई वार्ता आयोजित किए जाने के संकेत के बाद अमेरिका ईरान संबंधों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को दृढ़ता पूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा कि फिलहाल अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत की योजना नहीं है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि अभी उनका ध्यान 14 सूत्री समझौता ज्ञापन को लागू करने पर है, जिसके बाद वे किसी व्यापक या अंतिम समझौते पर चर्चा करने पर विचार करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने भी यह स्पष्ट किया है कि ईरान अपने वादों को तभी पूरा करेगा जब अमेरिका भी अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है।

0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय बचाव और चिकित्सा दल वेनेजुएला के अधिकारियों के साथ मिलकर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अगले दो से तीन दिन के दौरान कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कल तक छिटपुट स्थानों पर तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित अधिकारियों और विश्व के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि यह दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
1: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: जर्मनी फुटबॉल फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पैराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। मोरक्को और ब्राजील भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के गृह सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्य बल के लिए अपना समर्थन दोहराया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुनते हैं महल फिल्म का गाना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। आनंद बख्शी का लिखा गीत है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: फिल्म तपस्या का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आरती मुखर्जी का गाया हुआ। एमजी हशमत के बोल थे और रविंद्र जैन का संगीत था।
1: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में मेरा साया फिल्म का ये सदाबहार नगमा। राजा मेहंदी अली खान के बोलों को संगीत से सवारा है मदन मोहन ने।

0: इनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

वासना फिल्म का एक गाना आपने सुना, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया हुआ, साहिल लुधियानवी के बोल थे और चित्रगुप्त का संगीत था। और अब आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति जब जब फूल खिले फिल्म से। मोहम्मद रफी और नंदा की आवाज़ें हैं, आनंद बख्शी का लिखा गीत, कल्याण जी आनंद जी का

इस गीत के साथ ही अब आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए राजुल को इजाजत। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

ये आकाशवाणी रायपुर है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं देवदर्शन धूप अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कोन्स एवं हवन सामग्री।

0: नाली, आपको भी नमस्कार।
1: राजू जी, आपको और सभी सखियों सहेलियों को, श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। क्या हाल चाल है राजू जी?
0: बस बढ़िया है, आप सुनाइए कैसे हैं।
1: मैं भी बहुत मजे में हूँ। और ये जो बारिश है ना,
0: हाँ।
1: ये किसी छोटे नटखट बच्चे की तरह हो गई है कि बीच में से झमाझम बरस जाती है और फिर चुपचाप से छुप जाती है, तो इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो हम फिर परेशान हो जाते हैं, और जब हम परेशान होते हैं तो फिर से झमाझम बारिश हो जाती
0: तो
1: है।
0: ये कहो ना कि दरअसल ये जो बारिश है वो आपको परेशान नहीं देख सकती, बस जैसे ही परेशान देखती है कि अरे सोनाली परेशान हो रही है, तुरंत आ जाती है। वैसे एक बात बताएं कि हमारे वो मित्र जो कि हमसे दूर हैं, जहाँ पे अभी बारिश नहीं शुरू हुई है, उनके लिए ये चीज़ बड़ी ही सुन के उनको बहुत वो होता है कि यहाँ तो बहुत तेज गर्मी पड़ रही है और बारिश तो हो नहीं रही है, तो उनको ये बात सुन के बड़ा ही अजीब सा लगता है। लेकिन भाई, जहाँ बारिश हो रही है और जहाँ बारिश नहीं हो रही है, वहां पर भी बारिश शुरू हो जाए हम तो यही कहेंगे।
1: बस इंतजार करना जरूरी है, क्योंकि इंतजार का फल मीठा होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मीठा होता है। और इसके साथ ही साथ एक बात ये है कि आज जो हम लोग बातें करने वाले हैं ना, उसमें जो बातें हैं वो बिल्कुल रिमझिम की तरह बरसती हुई एकदम शांत कर देने वाली बातें हैं। जैसे कि हम आज बात करेंगे बुजुर्गों के अकेलेपन के बारे में।
1: अकेलापन जो है ना, ये एक ऐसी अवस्था है जो बहुत परेशान कर देती है, पर जो घर वाले हैं उनकी थोड़ी जिम्मेदारी है कि उनके जीवन में सुकून के पल आए, तो उनसे मिलजुल करना बहुत ज़रूरी है, उन्हें अपने अपने साथ शामिल करना बहुत ज़रूरी है। तो बुजुर्गों का अकेलापन ये एक विषय है। साथ ही जैसे मैंने बच्चों का जिक्र किया, तो बातें हल्की फुल्की, तो इसमें छोटे बच्चों की शरारतें, तो छोटे बच्चे जो इतने शरारती होते हैं, तो बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने इस विषय पर कमेंट्स लिखे भी हैं, पर उन्होंने आम तौर पर बच्चे शरारती होते हैं इस बारे में लिखा है। पर आपके घर में भी अगर शरारती बच्चे हैं तो उन्होंने क्या शरारती की है? कभी कभी ऐसा था ना राजुल जी कि उन्होंने किसी कुर्सी में है ना अपना सिर फंसा लिया है,
0: हाँ।
1: या फिर उन्होंने जो सीढ़ी के बगल में जो ग्रिल लगी होती है उसमें अपना पैर फंसा लिया है, या फिर बहुत सारी कोल्ड क्रीम है वो सर में लगा ली है, लिपस्टिक मम्मी
0: एक
1: के
0: एक संदेश मैंने ऐसा पढ़ा था कि उसने खूब सारी कोल्ड क्रीम पोत ली थी।
1: हाँ, तो ऐसी शरारतें होती है, कभी कभी हम परेशान भी हो जाते
0: अरे
1: हैं।
0: कुछ बच्चे तो वो जो रसोई के बर्तनों से खेलते हैं,
1: हाँ,
0: और उसके बाद पता चला कि बर्तन तो आप ढूंढ रहे हैं, उस समय चिमटा ढूंढ रहे हैं या कुछ ढूंढ रहे हैं, और वो
1: उनके
0: पता चला कि
1: खिलौने
0: लोने की बास्केट में पड़ा हुआ है।
1: में और कभी कभी बच्चे ऐसी शरारतें करते हैं जो हमें तकलीफ में ले जाते हैं, जैसे कि पैसा निगल लिया है, सिक्का
0: हाँ।
1: निगल लेते हैं। तो इस तरह की शरारतें आपके घर में क्या हुई है वो हमें लिखकर भेजिए। साथ ही उद्यमी महिला के बारे में हम जानकारी देते हैं हर मंगलवार को, तो आज हमने चुना है अदिति गुप्ता को। और साथ ही मुहावरों की दुनिया, इसमें पानी पानी होना
0: ऊपर से पानी पानी हो रहा है आसमान, और हम पानी पानी होने की बात करेंगे जब स्थितियां ऐसी हो जाती हैं। और आज हम छोटे बच्चों की शरारतों के बारे में भी बात कर रहे हैं, तो मतलब कई बार स्थितियां ऐसी भी हो जाती हैं कि उनकी शरारतों के सामने वो कुछ ऐसी बातें कह देते हैं कि हम पानी पानी हो जाते हैं,
1: माता पिता पानी पानी हो जाते हैं, यानी यूं कह लीजिए राजुल जी कि वो हमारी पोल खोल देते हैं,
0: पोल खोल देते हैं। सही बात है। वैसे ये सब जो बातें होती है ना, इनके बीच में अगर थोड़ा थोड़ा गीत भी चलता रहे
1: तो मजा आ जाता है,
0: मजा आ जाता है।
1: सुनते हैं गीत।
2: अरे अरे ए ए

0: भाई सोनाली अपनी सवारी तो चल दी है और चलते चलते पहुंच गई है वहां पर जहां पर हम उद्यमी महिला के बारे में बताते हैं।
1: झारखंड पहुंच गए आप।
0: हाँ।
1: तो झारखंड से है अदिति गुप्ता, जो भारत की उन प्रेरणादायक महिलाओं में से एक है जिन्होंने महामारी से जुड़ी हुई झिझक और गलत धारणाओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। इन्हें मेंस्ट्रुअल पीरियड्स कहते हैं, महामारी कहते हैं, मासिक धर्म कहते हैं। इस बारे में लोग खुलकर नहीं बात करते,
0: टैबू है ये एक, और इस बारे में ज्यादातर लोग खामोश रहना। एक जमाना था जब नहीं बताया जाता था, कहते भी नहीं थे। उन्होंने ही महिलाओं और किशोरियों के मासिक धर्म और स्वच्छता जागरूकता पर काम किया और इसे शिक्षा और संवाद का विषय बताया। मतलब ये शर्माने की, घबराने की, मुंह छिपाने की या सबसे कोने में बैठकर की बात नहीं है, बल्कि ये अपने शरीर के प्रति जागृत रहने की, सचेत रहने की और इससे जुड़ी जितनी सतर्कताएं हैं उन्हें इस्तेमाल में लाने की चीज है, ये बताने वाली है अदिति गुप्ता। बाकी बहुत बड़ा काम है
1: और ये तो बहुत नेचुरल प्रोसेस है ना। और महिलाओं को, यानी बच्चियों को, ये हम उस बारे में डरा देते हैं या कुछ बुरा बुरा कह देते हैं, बल्कि उन्हें इस बारे में बताना चाहिए कि जब पीरियड्स आते हैं तभी कोई महिला माँ बन सकती है। तो ये प्रकृति का दिया हुआ उपहार है, बल्कि हम उसे कहते हैं अभिशाप समझ बैठते हैं कि अरे ये क्या हमारे नसीब में है, पर उसे बहुत अच्छे से, बहुत प्यारे अंदाज के साथ अगर हम बच्चियों को समझाएं तो ये बहुत वरदान साबित तो हो ही चुका है, तो उसे हम बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं
0: और शरीर की एक आवश्यक क्रिया है
1: जी। तो अदिति गुप्ता का जन्म झारखंड में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने देखा कि कई लड़कियां मासिक धर्म को लेकर सही जानकारी के अभाव और सामाजिक संकोच का सामना करती है और इस विषय पर घर और समाज में खुलकर बात नहीं की जाती, जिसके कारण कई सारी लड़कियों में डर और भ्रम पैदा हो जाता था।
0: और अपने जीवन के इन्हीं अनुभवों से अदिति को ये समझ में आया कि केवल चुप रहने से समस्या खत्म नहीं होती, बल्कि सही जानकारी से और इस बारे में बात करके, इस बारे में जानकारी पहुंचा कर ही

0: बदलाव लाया जा सकता है। वैसे उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और बाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन से डिजाइन की शिक्षा प्राप्त की।
1: लेकिन उनकी रुचि केवल करियर बनाने तक सीमित नहीं रही राजुल जी, बल्कि वे समाज की वास्तविक समस्याओं को समझकर उनका समाधान खोजने में विश्वास रखती थी और इसी के मद्देनजर उन्होंने मेंस्ट्रुपीडिया नामक कॉमिक बुक की शुरुआत की।
0: अपने पति तुरहिन पाल के साथ मिलकर उन्होंने मेंस्ट्रुपीडिया की शुरुआत की थी और इसका उद्देश्य था कि लड़कियों को मासिक धर्म के बारे में सरल भाषा में वैज्ञानिक और सही जानकारी मिल सके।
1: अब सरल भाषा बच्चों के लिए यानी छोटी बच्चियों के लिए कॉमिक से बढ़कर क्या
0: क्या होगी, ये बहुत अच्छी पहल है।
1: जी, तो उन्होंने कॉमिक बुक, चित्रों और आसान तरीके से समझाने वाली सामग्री का उपयोग किया ताकि किशोरियां बिना डर बिना झिझक के इस विषय को समझ सके।
0: और इनके प्रयासों से कई परिवारों और स्कूलों में इस विषय पर बातचीत को बढ़ावा मिला। अदिति ने यह संदेश दिया कि स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर जानकारी छिपाने के बजाय जागरूकता फैलानी चाहिए।
1: जी, और उनका काम केवल महिलाओं तक सीमित नहीं रहा बल्कि उन्होंने समाज को ये सोचने के लिए प्रेरित किया कि किसी भी समस्या को समझने और हल करने के लिए संवाद का होना कितना जरूरी है।
0: बिल्कुल, और अदिति गुप्ता को उनके सामाजिक कार्यों के लिए कई मंचों पर सम्मान मिला। उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों में अंडर 30 की सूची में स्थान मिला और वो बीबीसी की प्रभावशाली महिलाओं की सूची में भी शामिल रही।
1: और अदिति गुप्ता का जीवन बताता है कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए किसी बड़े पद की आवश्यकता नहीं होती, एक छोटी सी समस्या को गंभीरता से समझकर सही दिशा में प्रयास करके बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। और अदिति गुप्ता ने एक ऐसे विषय पर आवाज उठाई है राजुल जी, जिस पर लोग चुप रहते थे, उनकी सोच ने चुप्पी को जागरूकता में बदल दिया।
0: और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जागरूकता आई तो कम से कम बच्चियों में ये एक विश्वास आया, क्योंकि बहुत सारे घरों में अभी भी ये होता है कि इन दिनों ये छूना नहीं है या दूर रहना है, या बहुत सारे घरों में अगर बेटे भी हैं तो ये बताया जाता है कि अभी ये गंदी हो गई है
1: या चिड़िया ने छू लिया।
0: हाँ, तो इस तरह की बातें सुन के बच्चों बेटों के मन में पहले से बात आती है कि ये गंदी होती है, ये गंदी, मैं गंदा नहीं होता हूँ,
1: ये गंदी।
0: तो एक चीज वो जो वैषम्य पैदा होता है वो भी एक उन्होंने दूर करने की कोशिश की है, तो ये बहुत बड़ी बात है और इस विषय पर बातचीत होने लगी है। अब देखो ना, हमारे कार्यक्रम में एक ब्रेक लेने का वक्त हो गया है,
1: तो लेते हैं ब्रेक।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी देव दर्शन धूप अगरबत्ती कॉर्न व हवन सामग्री।
1: तो सोनाली, पूरा हुआ अंतराल और हम लौट आए हैं। विषय हम लोग बहुत गंभीर था जिस पर बात कर रहे थे
2: जी।
1: मासिक धर्म की बात कर रहे थे, तो आप कुछ कह रही थी इसके बारे में
2: जी। राजुल जी, ऐसा है ना कि इसके पीछे भी, जैसे पुराने जमाने में आपने जैसे कहा कि महिलाओं को दूर बिठाया जाता था या फिर घर में छूना नहीं है, तो उस जमाने में काम भी महिलाएं बहुत भारी भरकम किया करती थी। जैसे कुएं से पानी निकाल कर लाना है, फिर चक्की से आटा पीसना है, फिर खेतों में काम करना है, तो उस वक्त महिलाओं को थोड़ा आराम की जरूरत होती थी, इसलिए उस जमाने में इस तरह से उन्हें अलग बिठाया जाता था। पर अब हम हल्का फुल्का काम करने लग गए, फिर भी हम उन्हीं बातों को, उन्हीं रूढ़ी वादी बातों को लेकर चले हैं। और तो और स्वच्छता के प्रति भी हम जागरूक नहीं है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि उन दिनों में नहाना नहीं है, पर कितनी गलत बात है। उस वक्त स्वच्छता का, हाइजीन का तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो हमें रोज नहाना चाहिए, स्वच्छता का कपड़े बदलना चाहिए और जो पैड्स वगैरह उसे भी समय समय पर बदलना।
1: और अब तो इसके विषय में सरकार की तरफ से भी, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी बहुत पहल हो रही है, मुफ्त में पैड्स गांव में दिए जाते हैं। और एक बात और है, ये भी कहा जाता है, जब कई बार कोसते भी देखा है, पढ़े लिखे बच्चियों को भी इस बात को कोसते हुए देखा है कि अरे ये क्या है।

0: ये वो समय होता है जब कहा जाता है कि स्त्री सबसे ज्यादा उसके अंदर जो शक्ति शक्ति कहा
1: जी
0: जाता है ना, तो
1: जी
0: शक्ति उसके अंदर सबसे ज्यादा इस समय होती है। और इस बारे में कई अगर हम गौर से देखें तो बहुत सारे हमें उदाहरण और कई सारी ऐसी रीतियां भी मिल जाएंगी
1: जी
0: जो इस बात को बिल्कुल प्रूव
1: प्रूव करती हैं
0: करती हैं, प्रमाणित करती हैं
1: जी।
0: कि भाई ये बहुत खास समय होता है। तो इस खास समय को खास तरीके से बिताने के लिए अलग बिठाया जाता था, ना कि इसलिए क्योंकि गंदे हो जाते हैं। तो गंदगी की यहाँ पर सिर्फ तभी तक रहती है जब तक हम नहाते नहीं हैं या कुछ भी दूसरी तरह की गंदगी
1: जी
0: से अपने आप को साफ करने की कोशिश करते हैं। तब गंदगी नहीं रहती जब हमें कहीं पर आराम करने के लिए छोड़ा जाता है या अच्छे से खाने के लिए कहा जाता है। बहुत जगह ये भी
1: उस
0: होता
1: वक्त
0: है।
1: हमें पौष्टिक आहार लेना चाहिए, बहुत आराम करना चाहिए। इस तरह से हम देखभाल कर सकते हैं अपने घर वाली, जो घर की जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उन्हें इस तरह से आराम दिया जा सकता है, ना कि उन्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाए और उन्हें इस तरह से व्यवहार किया जाए कि अरे दूर रहो, छुओ ना, बल्कि उन्हें बहुत आराम और बहुत प्यार से उस वक्त अगर संभाले तो ये दिन भी बहुत आसानी से निकल जाते हैं।
0: और साथ ही साथ अगर हम गीत सुनते हुए ऐसी गंभीर विषयों पर बातचीत करते हैं
1: तो कार्यक्रम में मजा आ जाएगा।

0: चांद कहाँ खोया है ये ढूंढने भी कुछ बच्चे बहुत जिद करते हैं जब अमावस्या होती है या जिन रातों में चांद नहीं निकलता। तो कई बार ऐसा भी होता था कि जैसे मेरे घर के पड़ोस में एक छोटा बच्चा था, तो वो ये बात कहता था कि आप तो कहते हो कि रोज चांद निकलता है, रोज सूरज और चांद तो रोज आते हैं। देखो तुम्हें भी जैसे हम लोग बच्चों को बताने के लिए कहते थे ना कि देखो भाई सूरज चांद रोज समय पे आ जाते हैं, तुम्हें
1: तुम
0: भी सब
1: समय से
0: काम।
1: जाया करो ट्यूशन
0: हाँ,
1: स्कूल।
0: तो उसने कहा कहाँ आते, देखिए चांद तो आ जाया ही नहीं है। तो भाई हमने कहा ये हाजिर जवाबी बच्चों की तो बिल्कुल पानी पानी कर देती है।

0: जो बच्चे होते हैं हमें बहुत बार शर्मसार कर जाते हैं। आज बच्चों की शरारतों के बारे में हम बातें कर रहे हैं, बातें हल्की फुल्की में। तो इसमें एक सखी ने हमारे लिखा है कि मेरे बेटे ने 4 साल का था तब एक कप में मिस्त्री लोग काम कर रहे थे, केरोसिन तेल रखा था, वहां पहुंच गया उसके पास और उसने केरोसिन तेल पी लिया पानी
1: अरे
0: समझ।
1: बाप रे।
0: फिर उसको हम लोग को अस्पताल लेकर भागना पड़ा, 2 दिन अस्पताल में भर्ती रहा, फिर ठीक हो गया। यानी देखिए कितने परेशान हो जाते हैं ना माता पिता दादा दादी जब इस तरह से बच्चे ये कर देते हैं। और एक लिखते हैं कि छोटे बच्चों की शरारतें, छोटे बच्चों की शरण हमारे जीवन में खुशियां भर देती है, उनकी शरारती जब याद आती है तो आप ही चेहरा खिल उठता है। मेरा नाती 2 साल का है, वो सारी छोटी छोटी चीज़ें छोटी जगह पर छिपा देता है, उसे याद भी रहता है कि कौन सी चीज़ उसने कहाँ रखी है। पूछो तो बताता है कि जब मैं गुस्सा करती हूँ तो मुझसे कहता है कि नानी मैं पुलिस बोल रहा हूँ, प्रिंस नाम है, और मुझे डांट लगाओगे तो आपको जेल में बंद कर दूंगा।
1: अरे
0: मैं कहती हूँ तुम नानी कहकर किसे बुलाओगे, तो कहता मैं पहले दरवाजा खोलूंगा फिर आपको नानी कहकर बुलाऊंगा फिर बंद कर दूंगा। बहुत ही लटके झटके से बोलता है, बच्चे तो बच्चे होते हैं, घर भरारा भरा रहता है। हमें सुन के ही इतनी हंसी आ रही है।
1: हाँ तो इनके मतलब इन्हें तो डांटना भी मुश्किल हो जाता होगा। एक संदेश में बताया है कि हमारे पड़ोस में रहने वाले दंपति का बेटा अंशु भी बहुत शरारती है। अभी 3 वर्ष का है, उसने अभी साइकिल चलाना सीखा है और उसके दादाजी ने छोटी सी सुंदर साइकिल खरीद कर दी है। कुछ दिन पूर्व वो अपने मम्मी पापा के साथ नाना नानी के घर गया था तो अपनी साइकिल की चाबी अपनी दादी के तकिए के नीचे छुपा कर गया था और दादी को पोल कर गया था कि दादी ध्यान रखिएगा कहीं दादाजी उसकी साइकिल लेकर ऑफिस ना चले जाए।
0: कितनी मासूमियत है कि उन्हें ऐसा लगा कि इतने लंबे चौड़े इतने ऊंचे दादाजी इतनी छोटी सी ट्राइसिकल कैसे चलाएंगे।
1: हाँ, हाँ, और कितना ये भाव भी होता है ना बच्चों में कि ये मेरी चीज है,
0: हाँ
1: ये पता नहीं अभी ये ले लेंगे
0: नहीं। और उन्हें ऐसा लगता ना कि पापा के पास में बाइक है या कार है या फिर मम्मी के पास तो पूरा किचन है, उनकी सारी चीजें मम्मी की, तो ये मेरी साइकिल है या मेरे खिलौने ये मेरे हैं।
1: बिल्कुल।
0: एक साथी ने लिखा है कि मेरा बेटा जब छोटा था तो पूरा दिन उधम मचा कर रखता था, छोटे बच्चों की शरारतें घर आंगन में हंसी खुशियां बिखेर देती है और उनकी मासूम हरकतें नटखट बातें और भोली मुस्कान सभी का मन मोह लेती है। कभी वो खिलौने बिखेर देते हैं तो कभी नई नई बातें सीख कर सबको चौंका देते हैं, उनकी शरारतों में मासूमियत छिपी होती है, इसलिए उन्हें प्यार और सही मार्गदर्शन के साथ समझना चाहिए।
1: और एक हमारे साथी ने एक बड़ी खतरनाक समस्या की तरफ इशारा किया है कि भाई आजकल तो छोटे बच्चों में भी इंटरनेट ने अपने गिरफ्त में ले लिया है और इसके चलते अपनों के आज्ञाओं का उल्लंघन सार्वजनिक रूप से ही देखा जा रहा है और उनके शैतानी भरी शरारत से ना ही उनकी आंखों पर ही चश्मे चढ़े हुए हैं और हम लोग अपने अपने आंखों पर चश्मे चढ़ाए हुए हैं। जाने कैसा ये आश्चर्य है जो उनके द्वारा किए जाने वाली शरारतें ही अब स्क्रीन पर ही देखा जा सकता है। मतलब वो वही शरारतें कर रहे हैं जो वो देख रहे हैं।
0: वही एक साथी लिखते हैं कि बच्चों की शरारत बेहद पसंद आती है तो कभी हंसी भी आ जाती है तो कभी कभी नाक में दम भी हो जाता है तो कभी माहौल एकदम खुशनुमा हो जाता है। हमारे घर में कई छोटे बच्चे थे, एक बार VCR के अंदर उन लोगों ने न्यूज़पेपर के छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें डाल दिए। अब VCR चलना बंद हो गया।
1: हाँ।
0: जब मैकेनिक को बुलाया तो उसने इतने सारे कागज निकाले, पूछने पर किसी ने भी नहीं बताया कि किसने काम किया था।
1: सच में ये शरारतें तो खत्म होने का मतलब
0: नाम नहीं लेती
1: और लगता है कि चलती भी रहे, बाद में याद करके कितनी हंसी आती है। अच्छा अब एक मुस्कुराहट और सज जाएगी अगर हम एक गीत सुन लें।
0: सुनते हैं गीत।
2: मेरी

0: सर्वोत्तम क्वालिटी देव दर्शन धूप अगरबत्ती कॉर्न व हवन सामग्री।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक्स कोन्स एवं हवन सामग्री। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

0: सोनाली, ब्रेक पूरा हुआ और हम लौट आए हैं ब्रेक के बाद।
1: कार्यक्रम है सखी
0: सहेली।
1: सहेली। और एक साथी ने लिखा है कि बचपन में मैंने भी एक शरारत की थी। 1960 के आसपास हमारे घर बिजली का कनेक्शन आया था और उन दिनों कुतूहलवश वायर से जुड़े होल्डर में लैंप लगाकर वायर को सीधा प्लग में डालकर स्विच ऑन करके जो स्पार्क हुआ उससे मेरी उंगली को झटका लगा।
0: ओह
1: पर चीखने के बाद मेरे बड़े भैया ने स्विच ऑफ कर मुझे छुड़ा तो लिया, लेकिन उंगली पर स्पार्क के निशान के साथ काली पड़ गई थी उंगली, और ऊपर से डांट के साथ मार भी पड़ी थी। वो भी झटका अलग से लगा था। साथ ही एक साथी ने लिखा है कि खुद को ट्रंक के अंदर, वुलन कपड़े का जो ट्रंक होता है, उस
0: हाँ,
1: सारे कपड़े निकाले और खुद को ट्रंक के अंदर बंद कर
0: ये
1: दिया
0: बहुत
1: था।
0: खतरनाक शरारत होती है जो बच्चे करते हैं, क्योंकि कई बार इससे उनकी जान को भी खतरा हो सकता है,
1: बहुत ज्यादा
0: चोट
1: खतरा।
0: भी बहुत गहरी लग सकती है। एक बड़ी मासूम सी शरारत हमारे एक और साथी ने साझा की है कि सर्दियों के दिन में हमारे घर में परिवार और बच्चे आए थे। वो देख रही थी कि सभी बॉडी लोशन और क्रीम का प्रयोग अपने शरीर पे करते हैं। उसने अपने टेडी

0: को पूरा कोल्ड क्रीम निकाल कर टेडी लगा दिया। हाँ, और बहुत बहुत ज्यादा लगा देने पर उसे संभाला नहीं तो उसने उसे बेड के नीचे छुपा दिया। घर में महक आ रही थी और जहाँ फर्श पर भी गिरा तो पैर में चिपक रहा था। तो बच्ची की बड़ी बहन ने बताया कि इसने कुछ किया है, तो पूरे बेड पर उसने फैला दिया था। जब उसकी माँ ने डांटा तो बोली कि टेडी को ठंड लग रही थी तो इसलिए उसे मालिश कर रही थी, जैसे नानी मुझे करती है तो मैं टेडी को कर रही थी। तो फिर उसे समझाया गया कि भाई तुम टैडी को मत करो, तुम बच्ची हो, तुम्हारी मालिश होगी, तुम नाना नानी की कर दिया।
1: कितना कितना मासूमियत भरा सवाल था और जवाब भी बड़ा ही मासूमियत भरा था। एक ने लिखा है कि एक बच्चा बहुत देर से एक घर की बेल बजाने की कोशिश कर रहा था लेकिन पहुंच नहीं पा रहा था, तो हमने सोचा कि उसकी मदद कर दे, हमने बेल बजा दिया। फिर बच्चों को वॉशरूम जाना था तो बोला अंकल अब भागो, वो घर का मालिक आ जाएगा तो हमें बहुत डांट देगा। यानी उन्हें ऐसा लगा कि किसी उसे जाना है अंदर, तो बच्चा तो शरारत कर रहा था। उसके बाद में एक ने लिखा है कि मेरे बहन के छोटे बेटे ने उनके घर के बोरिंग यानी बोरवेल में पाना पंचेश और ना जाने सारे औजार उसमें डाल दिए थे और सारे नए खरीदने पड़े।
0: क्या क्या तो गजब गजब शरारते हैं। और बच्चों की ये जो मासूम शरारते होती हैं इन पर बिगड़ते भी हैं हम कई बार, लेकिन अगर इन्हें अगर इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो उन्हें ये शरारत करने देनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं शरारतों से उनके दिमाग का भी विकास होता है, उनके व्यक्तित्व का भी विकास होता है और वो मिलजुल कर या किसी कठिन समय में अपने आप को कैसे निकालना है ये भी सीखते हैं। तो बस नज़र रखनी पड़ती है बच्चों पर कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि एक बच्चा था, नया खिलौना जैसे ही उसको मिला तो वो तुरंत उसका सब ऊर्जा बराबर कर देता था। उसको बहुत शौक था मोटर कार का, हेलीकॉप्टर का, तो बस वो देखते ही तुरंत उसको उसको चाहिए पेचकस, पेचकस से उसने तुरंत खोला वोला और सब अलग। तो भाई लोग कहते थे कि क्या करना है तुम्हें, तो कहता था मैं कोशिश कर रहा हूँ मैकेनिक बनने की, और बाद में आगे चल के वो वास्तव में
1: बहुत बड़ा
0: इंजीनियर बना
1: जी।
0: तो भाई ये कुछ
1: यानी उन्हें रोकी टोकी मत कि आपको लगता है कि इतना महंगा खिलौना खरीदा और इसने तो दूसरे दिन तोड़ दिया, पर क्या पता उसकी जो क्रिएटिविटी है उससे उसे एक दिन बहुत बड़ा इंसान बना दे। साथ ही जो बच्चे ना क्रेयॉन होते हैं ना उससे दीवारें गंदी करते हैं, तो बहुत सारे लोग डांटते हैं पर उन्हें डांटे ना एक छोटा सा कोना उन्हें दे दे, क्योंकि क्या होता है ना जो क्रेयॉन उंगलियों में पकड़ते तो उनकी उंगलियों के मसल मजबूत होते हैं, तो उन्हें गोदने दीजिए। ऐसा नहीं है कि पूरा ही घर गंदा मत करने दीजिए, पर उन्हें कह दीजिए कि ये जो है ना ये कोना तुम्हारा है, जहाँ जो या फिर व्हाइट बोर्ड आते हैं, ब्लैक बोर्ड आते हैं
0: वो लगा सकते हैं,
1: वो लगा सकते हैं, या फिर ऐसे
0: कागज लगा दे। हाँ, एक जो बड़े बड़े चार्ट पेपर्स आते हैं वो लगा दे और कहें कभी कभी कोई कोई आए तो दिखाए भी कि देखिए भाई ये इसने बनाया है, देखिए कितना सुंदर बनाया। बच्चों की अगर इस तरह से तारीफ भी करते रहे कि गोदने वाले बच्चे, ये गोदने वाली शरारतें बहुत होती है,
1: बहुत होती,
0: तो बस ये कह दिया जाए कि भाई देखो तो कितने सुंदर सुंदर इसने कलर्स देखा आपने कैसा इस्तेमाल किया, तो बच्चे को लगता है कि हाँ कुछ बड़ा काम किया, और अगली बार जब वो गोदना शुरू करता है तो उसका ध्यान उन रंगों पर भी जाता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर की वो रचनात्मकता विकसित हो रही है।
1: पर एक बात और है कि अगर उसने कुछ गलत शरारत की है, जैसे कि कैंची से काट दिया है, खुद के बाल ही काट देते हैं, कभी कभी कभी तो पलकों के बाल भी काटने से नहीं चुभते हैं बच्चे,
0: या छोटे भाई बहनों के काट देते हैं,
1: तो उसकी ना बहुत बार बार लोगों को बता बता के तारीफ ना करे। उन्हें लगता है मैंने तो बहुत बड़ा तीर मार दिया, तब उन्हें समझाए कि भाई अगर ये आंख में लग जाती तो आंख हमेशा के लिए चली जाती। तो ये इन बातों का हमें बस ध्यान रखना चाहिए।
0: मतलब ऐसे चुभने वाली चीजें बच्चों की पहुंच से दूर ही रहे तो अच्छा है, नरम नरम से खेल, अच्छे अच्छे खिलौने, ये सब देकर बच्चों का बचपन ऐसा ही बना रहे जैसे कि
1: गाने में है।
0: हाँ। लकड़ी।

0: सोनाली, देखिए शरारतों की बात चल रही है तो कैसे कैसे कच्चे चिट्ठे खुल रहे हैं। हमारी एक सखी बता रही है कि मेरा बेटा जब 6 साल का था तो एक दिन अकेले खेलते हुए किचन के स्लैब के नीचे छुप गया और सो गया। कुछ देर बाद जब उसके दादा दादी उसको ढूंढने लगे तो वो सोने के कारण रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। वो घबरा गए। मैं दूसरे शहर में थी, मुझे पता चला तो मैंने सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग में चेक किया तो पता लगा जनाब कहाँ छुपे थे। मैंने तुरंत उसके दादाजी को कॉल किया। जब वो वहां गए तो पता चला कि सो रहा है आराम से। खैर, जान में जान आई।
1: यानी दादाजी नाना जी रहे तो
0: ना,
1: उसका भी कितना फायदा है ना।
0: बिल्कुल। मतलब बच्चों की शरारतों के बीच में एक अंकुश भी रहता है, वैसे दादा दादी को भी अच्छा लगता है, अकेलापन नहीं लगता।
1: यानी परिवार में पुल का काम करते हैं ना, ब्रिज का काम करते हैं
0: बिल्कुल,
1: कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो दादा दादी ब्रिज का काम करते हैं कि उनकी बदौलत पूरा परिवार जुड़ा रहता है।
0: मूल से सूद ज्यादा प्यारा होता है कहा भी जाता है, तो भाई वो अपने बच्चों को प्यार भी देते हैं, भरपूर प्यार भी देते हैं, और जो अनुभव होता है ना उनका अपने बच्चों को पालकर, वो भी काम आता है,
1: बहुत काम आता है। पर अभी परिस्थितियां थोड़ी
0: अलग
1: होने
0: हो
1: लगती है। एक साथी लिखते हैं कि बुजुर्ग दादा दादी नाना नानी के साथ हम बहुत समय बिताते थे, अभी बच्चों में शायद वैसा समय नहीं है और न ही उतने शौक है उनसे कहानी सुनने के, किस्से सुनने के। सब कुछ तो उनको फोन में और टीवी में मिल जाता है, दादा दादी के साथ समय बिताना पसंद भी नहीं आता उन्हें। इसका नतीजा ये होता है कि अधिकतर बुजुर्ग अकेलेपन में ही समय बिताते हैं, जबकि बुजुर्गों के पास तो सजीव अनुभव और ज्ञान होता है, संस्कार देने की काबिलियत होती है और सोशल मीडिया अब टीवी से जुड़ गए हैं। उस जमाने में कहाँ था सोशल मीडिया और टीवी।
0: बिल्कुल,
1: तो ये एक थोड़ी सी समस्या है, परेशानी है, ये
0: परेशानी है। और इस बारे में हमारी एक सखी लिख रही हैं कि आजकल के समय में ये बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि परिवार बहुत छोटे हो गए हैं। हमारे घर में ये समस्या नहीं है, हमारा संयुक्त परिवार है, 13-14 लोग अभी साथ में हैं, तो बड़े बुजुर्गों को अकेलेपन की भावना नहीं आती है, चहल पहल हमेशा रहती है। मुझे

0: लगता है कि एकल परिवार भी एक कारण है अकेलेपन का।
1: बहुत ही बड़ा कारण है अकेलेपन का, एकल परिवार। और सच मुझे ना पुराने ज़माने की बात की जाए ना राजुल जी, तो उस वक्त प्राइवेसी नाम की ऐसी चीज़ ही नहीं हुआ करती थी जो आजकल लोगों को चाहिए। लोगों को बस लगता है कि हमें बस हमारा स्पेशल यानी बेडरूम, उसमें अटैच टॉयलेट बाथरूम उनका हो, उसमें किसी को डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। बच्चों को भी सब प्राइवेसी की ज़रूरत है। पर पुराने ज़माने में सब एक दूसरे की चीज़ें इस्तेमाल करते थे, एक घर में रहते थे, लड़ते झगड़ते भी थे पर फिर एक हो जाते थे, तो एक बहुत सुंदर दिखता था ऐसा घर। पर अभी ये थोड़ा सा इसकी कमी नज़र आ रही है। एक साथ लिखते हैं कि बुज़ुर्ग अगर घर में है तो ये बात का सबसे हमें ध्यान रखना चाहिए कि उनके पास थोड़ी थोड़ी देर जाकर समय देना चाहिए, बैठना चाहिए, उनकी ज़रूरत का ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ हमारी सेवा और समय ही नहीं, उन्हें हमारा थोड़ा सा प्यार भी दे देना चाहिए तो वे बड़े खुश हो जाते हैं।
0: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि जब रेडियो पर आपके कार्यक्रम सुनते हैं तो अकेलापन नहीं लगता। हार्ड कॉपी में किताब पढ़ते हैं जिससे मन के तूफान शांत होते हैं। सोशल मीडिया कम वापरता हूँ, कसरत करके तंदुरुस्त जीवन जीने का प्रयास है। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखकर कहा खाओ पियो और मौज करो, सादा जीवन, किसी को मदद करने से भी अकेलापन महसूस नहीं होता।
1: क्या बात है। एक साथ ही लिखते हैं एकल परिवारों में बुजुर्गों का अकेलेपन की समस्या बहुत ज्यादा है। बुजुर्गों का अकेलापन केवल एक भावनात्मक समस्या नहीं है बल्कि उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है। इसके कारण उनमें डिप्रेशन और याददाश्त कमजोर होने की जैसी समस्याएं बढ़ सकती है। इसके उनके इस खालीपन को दूर करने के लिए बातचीत, जुड़ाव और नियमित दिनचर्या बहुत ज़रूरी है। दो प्यार के बोल, सुविधापूर्ण उनकी दिनचर्या, इस उम्र में उनके अकेलापन दूर करने के लिए मेल मिलाप बहुत ज़रूरी है जो आजकल बेहद कम हो गया है।
0: और ये एक हमारे श्रोता ने अंग्रेजी में संदेश भेजा है। आई एम अ सीनियर सिटीजन रिटायर्ड फ्रॉम बैंक एंड स्टार्टेड अ न्यू जर्नी इन रेडियो एज आरजे ऑन कम्युनिटी रेडियो, इंजॉइंग अ लॉट। आई लव रेडियो सिंस माई चाइल्ड हुड। विविध भारती साथ हो तो बोर होने का सवाल ही नहीं है।
1: क्या बात है
0: भाई, इस तारीफ के लिए शुक्रिया। विविध भारती के साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। और एक बात और इनके संदेश से पता लगती है कि अगर बुजुर्ग कोई अपना शौक डेवलप कर लेते हैं उस समय भी, ये सोचकर नहीं कि ये जिंदगी का अवसान है, बल्कि ये एक नया पड़ाव है, एक नई यात्रा है
1: जी।
0: और अगर वो एक कोई शौक अपना शुरू कर लेते हैं तो उससे निश्चित रूप से उन्हें अकेलापन कम महसूस होगा। ये तो सही बात है। एक हमारे पढ़ रही थी तो भी एक संदेश में शायद ये भी कहा गया है कि आजकल बच्चों के पास समय नहीं होता। सही बात है, समय नहीं होता। बड़े जब होने लगते हैं तो कम समय रहता है।
1: पर अगर ऐसा है ना कि बच्चे नहीं बात कर रहे हैं तो बुजुर्ग खुद भी जाके बोल सकते हैं कि कैसे हो बेटा, क्या हाल चाल है, पढ़ाई में ध्यान लगाओ। नहीं तो ऐसा लगता ना कि अरे वो बात नहीं कर रहे, वो नहीं जा रहे। तो पहल दोनों तरफ से होनी
0: दोनों
1: चाहिए,
0: दोनों तरफ से होनी चाहिए।
1: हाँ।
0: और अगर मान लीजिए कि बच्चे बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, तो अगर बच्चे को उस समय उसको जो चाहिए, मान लीजिए कि बहुत व्यस्त है, पढ़ाई कर रहा है या किसी प्रोजेक्ट में अपने बिजी है, और आप सिर्फ इतनी सहायता कर रहे हैं कि मान लीजिए प्रोजेक्ट बनाने में उसको कुछ काटने की जरूरत है, आप काट कर उसे वो पकड़ा देते हैं, वही बहुत बड़ी बात हो जाती है।
1: उन्हें भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगता है।
0: और हमें गीत सुनना भी बहुत अच्छा लगता है।
1: सुनते हैं गीत।

0: भाई देखो, हमारे एक श्रोता ने अपनी दिनचर्या साझा करके बताया है कि सुबह पूजा पाठ, फिर शिवालय, फिर भोजन, फिर 1 बजे सुरीला सफर सफर, फिर सखी सहेली, फिर 5 बजे फिर आराम, और फिर 5 बजे 5 किलोमीटर वॉकिंग, फिर भोजन, फिर टीवी प्रोग्राम, फिर 5 या 6 घंटे नींद। यही है 70 साल के बुजुर्ग की
1: क्या
0: दिनचर्या।
1: बात है, ये तो किसी 17 साल के जो है ना युवा को भी शर्म आएगी, इतनी परफेक्ट दिनचर्या है
0: हाँ सही बात है।
1: आपकी। वैसे पानी पानी मुहावरे का मतलब है शर्म से पानी पानी होना। तो हमारे एक साथी ने लिखा है कि पानी पानी होना, इस मुहावरे से एक बात याद आ गई। तब मेरा बेटा बहुत छोटा था और उसे लेकर मैं एक परिचित के घर गई। बातचीत के बाद मेरी परिचित चाय बनाने के लिए उठी तो मैंने बोल दिया मैं चाय नहीं पीती, और मेरे बेटे से पूछा दूध पियोगे, तब भी मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरा बेटा भी दूध नहीं पीता था। लेकिन जैसे ही मैंने मना किया, मेरा बेटा तुरंत बोल पड़ा कि मुझे खूब गर्म दूध दीजिएगा। और आंटी सुनिए ना, मेरी मम्मा चाय नहीं कॉफी पीती
0: हाँ
1: है। इसलिए मम्मा के लिए कॉफी बना दीजिए। मुझे उस समय बहुत शर्म आई और शर्म से पानी पानी हो गई। ये
0: सही
1: सचमुच
0: बात है, बच्चे
1: बच्चे
0: पोल खोल देते
1: बहुत
0: हैं।
1: पोल खोलते हैं।
0: एक बच्चे ने कहा कि जब उसके पिताजी ने कहा कि भाई हम घर पर नहीं हैं, जाओ क्या दो अंकल आए क्या दो, घर पे नहीं है, तो उसने जाके कहा, पिताजी ने कहा है कि वो घर पर नहीं है। अब मतलब
1: उसने
0: पिताजी
1: बता
0: बिल्कुल, हाँ बिल्कुल पानी पानी, वो झक मार के फिर बाहर निकले और
1: दिया।
0: मिले अपने मित्र से, क्योंकि बच्चे ने बता दिया था कि पिताजी ने कहा है कि हम घर पे नहीं है।
1: एक बार एक व्यक्ति थे, उनके मित्र आए थे, तो उन्हें अंदर से आने में थोड़ा टाइम लग रहा था, उनकी छोटी सी बेटी थी। तो अब क्या बात करें बच्चे से, तो उन्हें पूछा कि बेटा तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं, पहले नाम पूछा क्या नाम है आपका, फिर आपके पापा क्या काम करते हैं। तो उन्होंने बताया कि मेरे पापा तो घर में झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, कपड़े धोते
0: सब पोल
1: हैं,
0: खोल दी।
1: सब पोल खोल दिया। अंदर से पापा ने सुना, अरे मैं तो वो पानी पानी हो गए शर्म से।
0: अच्छा, वो बच्चा भी बेचारा क्या करे, उसने
1: हाँ
0: काम का मतलब यही
1: ये
0: समझा
1: समझा
0: कि
1: कि
0: हम, माँ कहती होगी कि हम काम कर रहे हैं, तो
1: कुछ
0: काम का मतलब झाड़ू लगाना। तो कभी कभी अगर पिताजी ने झाड़ू लगा भी दी तो उसने कह दिया कि वो ये भी काम करते हैं, ये भी काम करते हैं, मतलब वो तो बड़ा ही कर रहा था।
1: और एक बार ऐसे हुआ कि बैठे हुए थे लोग, तो छोटी बच्ची भी थी साथ में, तो उसकी मम्मी बोले कि चलो टाइम हो रहा है हम घर जा रहे हैं। तो बोले नहीं नहीं मम्मी रुको रुको, अंदर से कप प्लेट की आवाजें आ रही है, शायद चाय बनने
0: हाँ सच
1: वाली।
0: में ये स्थिति जो है बड़ी खतरनाक होती है। उस समय माँ बाप को समझ में नहीं आता कि देखें रुकें क्या करें, और कभी कभी ये भी कहना पड़ता है भाई बड़ा शरारती है। जैसे कह दे कि कई बार ऐसा होता है कि माएँ कहती हैं बच्चा खाता ही नहीं, कुछ नहीं खाता, और इधर बच्चे ने जैसे ही नाश्ते की प्लेट आई और उसने खाना शुरू किया,
1: सब खा
0: सब
1: लिया।
0: खा लिया। तो ऐसे में एक बात बस यही कहेंगे कि अगर बच्चे हैं, ये तो बच्चे हैं, और हो सकता है कि सामने प्लेट में जो हो वो उन्हें पसंद आ रहा हो इसलिए वो खा रहे हो।

0: तो घर में ऐसा रूल बनाए ना कि बहुत सी बार ऐसा होता ना कि बच्चे हम बाहर जाके नहीं खाने देते बच्चों को, तो ऐसा रूल अगर आपने बनाया है कि बाहर जाके किसी के यहाँ खाना मत, तो बच्चे का मन फिर मचलेगा।
1: जिसके लिए हम खूब मना करते हैं।
0: हाँ, खूब मना करते हैं, बल्कि इसके बजाय ये कर दें कि भाई अगर बच्चे को कोई चीज़ पसंद आ रही है, जैसे अगर बच्चे ने, छोटे बच्चे ने, मान लीजिए एक मैंने देखा था कि एक बच्चे घर गए, बच्चे, छोटी बच्ची थी उनके साथ, और उन्होंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लाकर उसमें रखे और उन्होंने कहा कि खाओ। अब जगह ऐसी थी कि जो माँ गई थी तो उसको लगा कि नहीं खाना चाहिए, तो वो उसने एक ले लिया और कुतरना शुरू कर दिया। बच्ची ने एक किशमिश उठाई, माँ ने देखा, फिर दूसरी किशमिश उठाई, माँ ने देखा, फिर तीसरी किशमिश उठाने वाली थी तो उसे लगा कि टोकना चाहिए, फिर उसे लगा कि अगर हम टोकेंगे तो बच्ची को गलत मैसेज जाएगा, तो उसने क्या किया कि कहा कि अच्छा तुम्हें किशमिश अच्छी लग रही है, और दो चार किशमिश बीन कर उसको अलग से दे दी। बच्ची अपना वो खाती रही, और इस तरह से उसको भी पानी पानी नहीं होना पड़ा और बच्ची की भी शरारत या जो बाल स्वभाव है
1: जी।
0: वो पूरा हो गया।
1: और जैसे पानी पानी होने की बात है, इसके तो कई उदाहरण हैं कि कई बार ऐसा होता है ना कि किसी को कुछ चीज़ खाने की मनाही होती है, और भाई इच्छा तो होती है। अब मिठाई खाने की मनाही है, घर वाले कह रहे हैं कि भाई डायबिटीज़ है, खाओ मत मीठा खाओ, अब बहुत ललचाया, हलवाई के यहाँ जाके खा ले, और घर वालों ने किसी ने
0: देखे
1: देख
0: तो पानी पानी हो गए।
1: ली तो ऐसे लज्जित होना स्वाभाविक सी बात है, पर लज्जित हो गए हैं ना तो उसके बाद में अपराध बोध से ग्रसित नहीं होना है, उसे
0: बिल्कुल
1: वही छोड़ देना है कि ठीक
0: हाँ
1: है ना, गलती हो जाती है, बड़े हैं, बूढ़े हैं, कोई भी उम्र के लोग हैं, अगर गलती हो गई है तो उसको हंस के स्वीकार कर ले, उसका दिल पर बोझ ना रखे, अपनी जिंदगी को हल्के में लेना चाहिए।
0: और देखो हमारे एक श्रोता ने बड़ा प्यारा सा संदेश हमारे साथ साझा किया है कि वो जो विविध भारती के कार्यक्रम होते हैं जिनमें वो अपने संदेश साझा करते हैं, जैसे सखी सहेली या सुरीला सफर, तो उसमें वो अपनी और अपनी धर्म पत्नी के प्रेम के बारे में अगर कभी कुछ संदेश देते हैं तो वो पढ़कर पत्नी पानी पानी हो जाती है शर्म से, वो तो ऑफिस में देते हैं, पत्नी वहाँ घर में पानी पानी हो जाती है। तो भाई लेकिन ये कितनी सुंदर यादें, स्मृतियाँ आप लोग साथ साथ संजो रहे हैं।
1: सचमुच। और ये यादें हैं ना, ये बहुत सुंदर यादों को हमें संजो कर भी रखना चाहिए कि ये पल, ये क्षण जो है फिर से नहीं
0: फिर
1: आते।
0: से नहीं आएंगे, जो बीत गया वो बीत गया, लेकिन हम ये समय नहीं बीतने देंगे, हम गाना सुनेंगे।
1: बिल्कुल सुनते हैं गीत।

0: तो भाई बड़ी रोचक रोचक बातें हो गई। हम लोगों ने काफ़ी किस्से सुन लिए और उन पानी पानी होने वाली स्थितियों के बारे में भी जान लिया, जो कई बार एकदम ऐसा कर देती हैं कि समझ में नहीं आता इधर जाएं कि उधर जाएं, क्या करें कैसे करें।
1: तो बहुत मज़ा आया, सारे श्रोताओं को दिल से धन्यवाद, इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स लिख कर भेजे। तो विविध भारती से जुड़े रहिए और हमें दीजिए इजाज़त। तो आप सभी को सोनाली पाठक
0: और राजुल का
1: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: एक जानी मानी शायर, एक जानी मानी गीतकार, वो कहते हैं खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिश हो तो भीग जाया कर, दर्द हीरा है दर्द मोती है, दर्द आंखों से न बहाया कर। शकील आजमी जो कहते हैं परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। कई मशहूर फिल्मों के गाने उन्होंने लिखे। आर्टिकल 15
1: आना अभी जाना इंतजारी है तेरी।
0: फिल्म मुल्क
2: सब सखियों का पिया प्यारा सब में है और सब सुनारा।
0: और फिल्म थप्पड़
1: एक टुकड़ा धूप का अंदर अंदर नमसा है।
0: जाने माने शायर शकील आजमी से बातें की हैं ममता सिंह ने। ये है इस कार्यक्रम का दूसरा भाग।
1: ए बेखबर।
3: दोस्तों नमस्कार, रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आज शायरी की दुनिया, गीतकारी की दुनिया और अदब की दुनिया की खास शख्सियत की आमद है विविध भारती के स्टूडियो में, जिन्हें हमने बड़े एहतराम से विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है, उनका हम इस्तकबाल कर रहे हैं। वो शायर हैं, गीतकार हैं, शकील आजमी साहब। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी बैठ के क्या आसमान देखता है। घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है, जब आंख भर के फलक को किसान

0: देखता है। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरी ज़बां देखता है। शकील आज़मी साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत शुक्रिया ममता जी, और बहुत शुक्रिया विविध भारती।
0: इन आपके ही चंद अल्फाज के साथ हमने आपका स्वागत किया, तो हमें बताइए कि ये जो अनुभव सिन्हा जी देर से मिले, लेकिन मिले तो दुरुस्त मिले, और बहुत सारी फिल्मों की आमद हुई आपकी फिल्में दुनिया में, आर्टिकल 15, भीड़ और इन सब में गाने लिखे, थप्पड़ के सारे गाने आपने
1: हाँ,
0: लिखे,
1: मुल्क के सारे गाने।
0: तो
1: हाँ
0: मुल्क के, तो मैं चाहती हूँ कि मुल्क फिल्म का गाना, फिर आर्टिकल 15 का क्रमवारा आप बताएं और रचना प्रक्रिया बताएं।
1: मुल्क का गाना आप वो सुनाए, पिया समाए,
0: जी,
1: बहुत अच्छा गाना है।
0: बहुत पसंदीदा कव्वाली,
1: हाँ,
0: कव्वाली है,
1: यस यस,
0: कव्वाली की शक्ल में है ये गाना, और हम आपको बताएं कि विविध भारती
1: उसमें
0: से।
1: हमारा पूरा हिंदुस्तान है उस गाने
0: जी
1: में।
0: बिल्कुल,
1: हाँ
0: पूरी फिल्म बड़ी बेहतरीन है,
1: हाँ
0: इसमें अनुभव सिन्हा जी को बधाई जाती है
1: जी
0: हम सब
1: हाँ,
0: की ओर से, विविध भारती परिवार की ओर
1: मैं
0: से।
1: समझता हूँ कि जो मुल्क फिल्म है
0: जी
1: या आर्टिकल 15
0: फिफ्टीन
1: है, ये ऐसी फिल्में हैं जो हमारे हिंदी सिनेमा में जो ऐसी फिल्में बनी हैं जो याद की जाएंगी,
0: बिल्कुल, जिनका जिक्र किया जाए,
1: जिक्र
0: ये
1: किया
0: दर्ज
1: जाएगा।
0: होती है आज के समय में।
1: हाँ, वो ऐसी फिल्मों में ये फिल्में हमेशा जिंदा रहेंगी, जैसे थप्पड़ है, मुल्क है, आर्टिकल 15 है,
0: बिल्कुल
1: और मेरी खुशनसीबी है कि मैं इन फिल्मों का हिस्सा हूँ।
0: शकील साहब, ये मुल्क फिल्म की बेहद मकबूल कव्वाली, और विविध भारती से एक प्रोग्राम होता है सुबह चित्रलोक, पहले ये भारत की गूंज के नाम से प्रसारित होता था, इसमें अक्सर हम विविध भारती से प्रसारित किया करते थे, और उसमें आपका नाम लेते हुए बड़ा फक्र महसूस होता था कि शकील आजमी ऐसे शायर गीतकार हैं जिन्हें हम निजी तौर पर भी जानते हैं।
1: बहुत शुक्रिया।
0: तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि बात अनुभव सिन्हा जी की चली है, तो आर्टिकल 15, भीड़, कई फिल्में हैं आपके खाते में, तो क्रमवार इनका जिक्र करें, रचना प्रक्रिया बताएं इन गानों का। आर्टिकल 15, इंतजारी, जिसे आयुष्मान खुराना
1: हाँ,
0: ने गाया भी
1: जी
0: है
1: हाँ, जी हाँ,
0: और वो
1: हाँ, इंतजारी सुनवा
0: एक्टिंग
1: सकते हैं आप,
0: जी,
1: बिल्कुल।
0: तो
1: आर्टिकल 15
0: हाँ,
1: से
0: तो कैसे वो गाना बना, वो बनने की क्या कहानी,
1: उस गाने की कहानी ये है कि
0: कोई दिलचस्प बात हो तो
1: हाँ,
0: जरूर
1: दिलचस्प, जी दिलचस्प
0: बताइएगा।
1: बात है। अनुभव सिन्हा साहब ने मुझे ये कहा, कहने लगे यार सिचुएशन मैं वो नहीं बता रहा हूँ, आप यूँ समझ लीजिए कि वो गुलजार साहब का वो एक गीत था, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास
0: पड़ा है,
1: पड़ा है,
0: इजाजत फिल्म का
1: लौटा
0: गाना
1: दो।
0: है।
1: हाँ, तो इसका उल्टा गाना चाहिए मुझे।
0: अरे क्या बात
1: हाँ,
0: है,
1: उल्टा मतलब कि तो
0: सामान देना है,
1: हाँ,
0: मेरा
1: वो
0: सामान,
1: कह रहे लौटा दो,
0: हाँ
1: और मुझे ऐसा चाहिए कि ले जाओ,
0: हाँ
1: ठीक है।
0: संचय करना है यहाँ
1: हाँ
0: पर।
1: हाँ तो उसमें जो गाना है वो मैंने लिखा है कि मोहब्बत में जो दो लोगों के आपसी जो मोमेंट्स होते हैं, है ना, हंसी है, गम है, रोना
0: जी
1: है,
0: जी जी
1: मुस्कुराना है ना, साथ में कुछ कहीं खा रहे हैं, कहीं चाय पी रहे हैं, कहीं आइसक्रीम खा रहे हैं, और कहीं किचन में थोड़ा झगड़ लिए हैं, तो ये सारे जितने भी मोमेंट्स हो सकते हैं, तो अब हम बिछड़ गए हैं और मैं इसको अकेला जी रहा
0: अच्छा,
1: हूं,
0: क्या बात है, ये सारा कुछ एक गाने में
1: ठीक है। हाँ,
0: आना।
1: तुम तो बिछड़ गए हो और खुश हो, लेकिन मैं वहां से निकल नहीं पा रहा हूं, वो साझा जो चीजें हैं हमारी, मैं उसको अकेला जी रहा हूं और मैं दुखी हो रहा हूं, तो तुम एक काम करो, ये आओ और इसको ले जाओ। तो ये मैंने एक मतलब स्टोरी बोर्ड बनाया और इसको मैंने शायरी में लिखा और वो इस तरह से गाना बना, इंतजारी।
0: जी,
1: हाँ
0: तो वो शायरी कैसे बनी वो बताइए, मतलब वो शेर अगर याद है
1: हाँ
0: तो।
1: इसी इसी तरह से बनी वो, कि आना आ भी जाना इंतजारी है तेरी,
0: क्या बात है, वाह
1: ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी,
0: वाह
1: है
0: वाह, बहुत सुंदर।
1: ना, है ना।
0: तो
1: अच्छा, पहले इसमें ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी, ये लाइन पहले नहीं थी, उसमें कुछ खुमारी
0: हाँ,
1: राइमिंग की
0: जी,
1: लाइन थी। तो अनुभव सिन्हा साहब ने कहा कि शकील भाई, ये इंतजारी लफ्ज बड़ा यूनिक है, इंतजार होता है, इंतजारी लोग नहीं लिखते हैं। तो हमारे बचपन में हम गांव में सुनते थे, अरे हम तुम्हारी इंतजारी देखत रहे हैं, है ना, इंतजारी कर नहीं रहे थे, इंतजारी देखत रहे हैं, पुराने लोग बोलते थे। तो अब हमारा जो मुल्क है ना, वो बहुत विशाल

0: बहुत बड़ा मुल्क है और बहुत मतलब भाषाएं बहुत हैं, तो कोई भी शब्द कुछ अलग से आता है तो वो कानों को भला लगता है,
1: बिल्कुल
0: है ना, कुछ नया लगता है। तो मैंने इंतजारी जानबूझ के, और बोले ये इंतजारी और रेजगारी बड़े कमाल, अरे इंतजारी बड़ा कमाल लग रहा है, ये खुमारी जो है इसको चेंज करो यार, कुछ नया लफ्ज ले आओ। तब उसकी जगह पे ये आया, आना आ भी जाना, ये ट्यून पे लिखा हुआ गाना है और अनुराग साइकिया ने म्यूजिक किया है इसका। आना आ भी जाना इंतजारी है तेरी, ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी, वो जो हम रोए साथ थे वो सब आके लेके जा। तो वो उसका उल्टा गाना था जो गुलजार साहब का था, ये उसके बरक्स था। तो ये सारा मैंने एक स्टोरी बोर्ड बना लिया कि इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और फिर मैंने इसको लिखा और गाना इस तरह से बना।

जो गाना हम सुनते हैं बहुत एंजॉय करते हैं हम स्टूडियो में बैठकर और हमारे श्रोता स्टूडियो के बाहर, लेकिन उस गाने के बनने के पीछे कहानियां होती हैं और कई बार मुश्किलात भी होती हैं कि आप जैसे बता रहे हैं कि अनुभव सिन्हा जी आपको दृश्य बता रहे हैं और आप लिख रहे हैं फिर चेंजेस, तो एक कितना आसान नहीं होता है सफर। तो फिल्म मुल्क में जो कव्वाली

0: है, बड़ी हिट पिया समय है, हम सबका पसंदीदा कव्वाली हम सबकी। इस गाने की बनने की क्या कहानी थी?
1: ये तो बहुत ही मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने, और वो तो चले गए शूटिंग करने। मेरे साथ अक्सर होता है यही, उनकी फिर उनके गानों को लेके कि हाँ हाँ कर लेंगे, और ऐसा फिर वो शूटिंग पे चले जाते हैं, और फिर जब जरूरत होती है तब कहते जल्दी करो गाना चाहिए। तो अब वो शूटिंग कर रहे हैं उधर लखनऊ के पास मलियाबाद वगैरह में, और
0: ये भी गाना लिख दो जल्दी।
1: और हम जो हैं, मैं और अनुराग साइकिया ने ये इसका किया था म्यूजिक वो, और
0: थप्पड़ में भी अनुराग साइकिया का संगीत था। हाँ, आर्टिकल 15 में भी
1: थप्पड़ सोलो था,
0: और मुल्क में
1: एक ही गाना था उनका ये, बाकी प्रसाद साष्ठे ने दो गाने किए थे।
0: जी जी।
1: तो हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं, और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है, वो रूट पता नहीं चल रहा है कि जाना किधर है।
0: यहाँ पर अनुभव सिन्हा जी का भरोसा भी आप पर अटूट है।
1: हाँ,
0: कि वो गाना देकर चले गए हैं।
1: हाँ, अब मैं फोन कर रहा हूँ कि इसमें लिखना क्या है। अब वो क्योंकि उधर बिजी है शूटिंग में, ध्यान उधर लगा हुआ है, कह रहे मैं बताता हूँ। अब हम इंतजार कर रहे हैं, फिर उनका फोन आया, कह रहे हैं मैंने आपको एक वीडियो भेजा है, वो देख लीजिए आप, सुन लीजिए। मैंने कहा सर आप बताइए ना कि उसमें क्या है और आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि साइंस ये कहती है कि जब सारे रंगों को हम मिलाते हैं तो सफ़ेद रंग बनता है, सारे रंगों को मिलाने से सफ़ेद रंग
0: जी,
1: बनता है
0: जी।
1: मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है सर?
0: बिल्कुल सही बात है, सफेद रंग तो अपने आप में सफेद रंग है, उसको कोई भी रंग मिलाएंगे तो वो तो दूसरा हो जाएगा।
1: तो हाँ, तो बोले नहीं ऐसे ही होता है, यही थॉट है। और ये गाना मुझे देशभक्ति इसमें होनी चाहिए और कौमी एकजहती होनी
0: जी,
1: चाहिए।
0: जी,
1: ठीक है, पूरा देश एक साथ चलना चाहिए इस गाने में। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उसको लिखा। मुश्किल गाना था बहुत
0: जी।
1: मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी,
0: बेहतरीन फिल्म थी,
1: डिफिकल्ट सिचुएशन थी
0: जी।
1: तो मैंने लिखा उसमें के पिया समाए पिया समाए, जिया में मोरे पिया समाए, ये हुक है, उससे पहले लाइन आती है सात रंग हैं सातों पिया के,
0: सात रंग हैं सातों पिया के।
1: हाँ, सात रंग होते हैं
0: जी।
1: अब मुझे सफेद पर खेलना है और उसको ऐसा बनाना है उसमें पूरा देश एक साथ जुड़ना चाहिए।
0: जी जी।
1: ठीक है, सारे समुदाय जो हैं वो एक साथ जुड़ने चाहिए, तो वो सारे जो हैं एक साथ जुड़ने चाहिए। तो अच्छा, अभी इसमें जो पिया है ये वो भी पिया है जो मतलब जो जमीन पे है ना, और वो भी पिया है जो खुदा है, ईश्वर है, भगवान है,
0: खुदा है।
1: हाँ, और महबूब भी है हमारा। ठीक है, डबल मीनिंग है। इस तरह के बहुत सारे लागा चुनरी में दाग और फलाना, वो
0: छुपाऊं कैसे,
1: है ना, घर जाऊं, घर जाने का मतलब वो मरने के बाद की जिंदगी।
0: बिल्कुल,
1: है ना,
0: बिल्कुल, दो अर्थी।
1: तो हाँ, तो ये दो अर्थी ये भी मैंने इसको करके आगे बढ़ाया। सात रंग हैं सातों पिया के, देख सखी कभी तू भी लगा के।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
1: तो ये दूसरे वाले को वो कटाक्ष कर रही है कि तू भी कभी लगा के देख, तुझे भी वो सब पिया के ही लगे
0: रंग दिखाई।
1: हाँ, अलग अलग मत देख, हम सब एक हैं। सात रंग हैं सातों पिया के, देख सखी कभी तू भी लगा के, सातों से मिलके भई मैं उजली।
0: वाह, क्या बात है,
1: सातों से मिलके
0: भाई
1: में उजली,
0: वा, वा।
1: कोई हरा कोई गेरुआ बताए।
0: क्या बात,
1: पिया समाए पिया समाए, जिया में मोरे पिया समाए। अब ये देखने वालों की नजर है कि कोई मुझे हरा बता रहा है कोई गेरुआ बता रहा है, लेकिन मैं तो सातों से मिलके उजली हो गई हूँ।
0: जी जी।
1: और तू भी लगा के देख कभी। तो ये बड़ा ही मतलब टेढ़ा गाना था, और ऐसा वो सटीक आया है ऐसा कि एक लाइन भी चेंज नहीं हुई। बड़े खुश हुए, बोले आगे बढ़ो।
0: तो ये जो फिल्म है वो एक संदेश देती है, ये गाना भी संदेश देता है, एक सब एकजुटता का संदेश है। और बेहतरीन फिल्म का बेहतरीन गाना ये सुनवाते हैं हम।

0: शकील साहब, अभी आपकी जर्नी के बारे में बहुत सारी बातें करनी हैं। अब यहाँ हम आते हैं आपकी फिल्म धोखा में। फिल्म धोखा,
1: हाँ,
0: MM करीम साहब ने गाया है और कंपोज भी किया है गाना।
1: जी,
0: इसके बारे में एकदम संक्षेप में बताएं, क्योंकि
1: मतलब आप भट्ट साहब के दरवाजे पर पहुंची हैं।
0: पहुंच गए, दस्तक दे रहे हैं। और महेश भट्ट साहब के साथ आपने बहुत सारा काम किया है और आपकी फिल्मी दुनिया में उनका बहुत बड़ा योगदान, कह ले योगदान भी है, और काफी दोस्ती मित्रता है।
1: हाँ, प्यार रहा बहुत उनका भट्ट साहब का उस जमाने में। तो ये फिल्म उनकी जो बेटी
0: पूजा भट्ट
1: उन्होंने डायरेक्ट की थी, और ये गाना जो है MM करीम साहब के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। मेरे पसंदीदा कंपोज़र हैं वो, और उनको हिंदी नहीं आती ठीक से, है ना। तो भट्ट साहब के ऑफिस में उन्होंने मुझे धुन दी, ट्यून बताई हारमोनियम प्ले करके। मैंने उसको, तब वो छोटे वाले जो टेप चलते थे, मैंने रिकॉर्ड किया उसमें।
0: हाँ।
1: और वहीं बैठ के मैंने गाना लिखा वो, और गाना लिखा जब उन्होंने उसको गाना शुरू किया, कहीं कहीं अटके लेकिन फिर वो रवां हो गया।
0: हाँ।
1: जब उनके मीटर में पूरी तरह से रवां हो गया वो गाना
0: जी।
1: तो मुस्कुराहट उनके चेहरे की बढ़ती गई,
0: क्या बात है।
1: हाँ, वो जो वो ट्यून में पूरी तरह से वो गाना, तो वो गाना जो है वो पूजा को भी बहुत पसंद था, बहुत खुश थी उन गाने से वो। लेकिन इससे पहले भट्ट साहब के यहाँ मेरी पहली जो फिल्म थी वो थी जहर। हाँ,
0: जिसका गाना बहुत मशहूर हुआ था, फिल्म का गाना, इनकी आवाज, श्रेया घोषाल की आवाज में जो गाना था, अगर तुम मिल जाओ, बहुत बहुत मशहूर हुआ था।
1: जी जी। तो ये गाना दरअसल पाकिस्तानी गाना था, ये उसको यहाँ पर अनु मलिक साहब ने रिक्रिएट किया था। रेशमा की आवाज में भी आपको मिल जाएगा वो गाना, कई लोगों ने गाया हुआ है, पुराना गाना है। और ये फिल्म मोहित सूरी की भी पहली फिल्म थी, मोहित सूरी थे इसके डायरेक्टर, वो भी मतलब उनके भट्ट साहब के भांजे होते हैं
0: जी।
1: और ये फिल्म बड़ी कामयाब रही, इसके सारे गाने सुपरहिट हुए और सारे गामा म्यूजिक कंपनी ने इसके गाने रिलीज किए थे। और हमें जो है वो पहली बार आउटस्टैंडिंग म्यूजिक सेल नाम से हमें ट्रॉफी बांटी गई, उसका एक फंक्शन हुआ, एक तकरीब हुई उसकी, और बड़े खुश थे वो लोग, क्योंकि म्यूजिक बहुत बड़ा हिट था और फिल्म भी हिट हो गई थी, सिल्वर जुबली का भी उसका ट्रॉफी मिला था हम लोगों को
0: जी।
1: तो उसमें गाना था वो, KK ने गाया था वो, ऐ बेखबर ऐ बेखबर
0: जी जी, हाँ।
1: तो वो भी बहुत बेहतरीन गाना था। और एक गाना वो था जाने जा
0: जी,
1: तुझसे बिछड़ के मैं जाऊं कहां, वो भी बहुत, सारे गाने ही बहुत हिट हुए थे उसके, और बड़ी कामयाब फिल्म रही वो। तो वो पहली फिल्म थी मेरी भट्ट साहब के यहाँ
0: जी। जी, तो यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाया श्रोताओं को?
1: आई बेखबर
0: सुनते हैं। हाँ। ये गाना

0: रूप कुमार राठौड़ के साथ आपने और भी काम किया है, और भी गाने उन्होंने गाए हैं, वो उनके बारे में।
1: हमारी शुरुआत ही साथ में हुई थी
0: जी।
1: रूप कुमार राठौड़ साहब के बारे में मैं बताऊं, जब मैं यहाँ नया नया आया था तो जो कामयाब म्यूजिक डायरेक्टर थे, बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो पकड़ में नहीं आ रहे थे। रूप कुमार राठौड़ साहब से मेरी मुलाकात हुई
0: जी,
1: तो वो गजल सिंगर होते थे
0: जी जी,
1: और प्लेबैक सिंगर भी होते थे
0: जी, बिल्कुल
1: है ना। फिल्मों में उन्होंने कम गाया, लेकिन एज ए गजल सिंगर उनको ज्यादा
0: नाम शोहरत
1: और इज्जत है उनकी। लेकिन कुछ गाने भी उन्होंने गाए हैं और उसमें से कई गाने बड़े हिट हैं, जैसे ऐ जाते हुए लम्हों
0: जी, जी, जी,
1: संदेशे आते हैं, या वीर जारा का गाना है, है ना। इस तरह के कई गाने हैं जो उनके बड़े हिट हैं। तो जब मैं आया तो मेरी मुलाकात हुई तो वो मेरी गजलें सुनते थे और उसमें से चूज करते थे और गजलों को कंपोज करते थे। लेकिन वो गजल का टाइम भी जा रहा था। जब मैं आया हूँ उससे पहले गजल का एक बड़ा दौर आया था, जिसमें जगजीत जी की गजलें और पंकज उदास साहब की गजलें, हरी हरन साहब, रूप कुमार राठौड़ साहब, मतलब नए गजल सिंगर भी आते थे, उनके एल्बम भी खूब चल रहे थे
0: जी जी।
1: लेकिन जब मैं आया हूँ तो ये दौर खत्म हो रहा था।

0: था
1: जी जी,
0: गजल का मार्केट डाउन हो रहा था जब मैं आया था, तो मेरे सामने ही वो रूप भाई ने कैफी आजमी साहब का एल्बम किया मेरे सामने, मीर तकी मीर का एल्बम किया मेरे सामने, तो मेरी वो गजलें कंपोज करते थे। अच्छा, मेरे पास कोई बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर नामी नहीं था, तो मैंने सोचा कि रूप भाई इतने अच्छे कंपोजर हैं, तो ये अगर फिल्म के गाने कंपोज करें और मैं लिखूं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, और उनका नाम भी है। तो मैंने उनसे कहा कि आप फिल्म के गाने क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा भाई मैं इसलिए नहीं करता कि लोगों को पता चलेगा दूसरे म्यूजिक डायरेक्टरों को, तो जो गाने गवा रहे हैं वो भी बंद कर देंगे। ठीक है, ऐसा होता है हर प्रोफेशन में। तो थोड़े दिन तक तो वो इस बात पर टिके रहे, और मैं उनके अंदर वो म्यूजिक कंपोजर को, जो फिल्म का म्यूजिक कंपोजर होता है, उसको मैं जगा चुका था, मगर
1: जी जी,
0: है ना, कहीं ना कहीं उनके भीतर भी था वो, क्योंकि हर म्यूजिशियन का वो सपना होता है
1: जी जी,
0: वो म्यूजिक डायरेक्टर बनने का। तो एक दिन उन्होंने कहा चलो ठीक है यार, लाओ मुखड़े कंपोज करता हूँ। तो मैंने लिखने शुरू किए, उन्होंने कंपोज करने शुरू किए, और हमारा आज भी 500 गानों का बैंक है, जो हमारे गाने रूप कुमार राठौड़ साहब के बैंक में मेरे लिखे हुए
1: दर्ज है।
0: हाँ, और 400-500 गाने होंगे।
1: बहुत सारे नॉन फिल्म एल्बम भी हैं आपके नाम, एक जोगिया हमें याद आ रहा है।
0: हाँ, हाँ, हाँ,
1: जोगिया मन, तो वो कैसे बना वो गाना?
0: जोगिया मन तो अभी बात का है, वो एक नया कंपोजर है और बहुत अच्छा सुरीला है, हरीश सगा ने
1: जी
0: उनके साथ किया था मैंने, बहुत अच्छा लड़का है। और हरीश सगने के साथ हमने एक फिल्म की थी, विक्रम भट्ट साहब की एक फिल्म थी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि शकील भाई मैं फिल्म शुरू कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ आप गाने लिखें। तो मैं गया उनके यहाँ, तो उन्होंने मुझे हरीश सगने से मिलवाया
1: जी जी,
0: और उनकी एक फिल्म आई थी 1921 जिसमें जरीन खान थी हीरोइन, और वो फिल्म भी बहुत अच्छी चली, हिट हुई पिक्चर, और उसके सारे गाने आप सुनेंगे बहुत अच्छे गाने।
1: थोड़ा सा हम पीछे क्यों चलते हैं, 2004 में जब आपकी पहली फिल्म आई थी, तो वो फिल्म कैसे मिली आपको, पहली फिल्म तक आप कैसे गए? वो तेरा नाम था,
0: वो तेरा नाम था बिल्कुल।
1: तो यहाँ मतलब फिल्मी दुनिया में आपका प्रवेश कैसे हुआ? हम तो एंटर कर चुके हैं लेकिन आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि शायरी की दुनिया से फिल्मी दुनिया में एंट्री कैसे हुई आपकी?
0: ये बात तब की है, 2000 का जो सन है उससे पहले की बात।
1: अच्छा,
0: तब मैं सूरत में रहता था
1: जी जी,
0: और सूरत से मैं बॉम्बे आता जाता था, पैसे जब तक होते थे यहाँ रहता था, पैसे खत्म होते थे फिर सूरत चला जाता था।
1: अच्छा।
0: फिर पैसे इकट्ठा करता था फिर आता था। तो इस आने जाने में मेरी मुलाकात दिलीप सेन समीर सेन से हुई। हाँ, दिलीप सेन से हुई, और दिलीप सेन के साथ मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ। तो दिलीप सेन एक फिल्म कर रहे थे, उसके गाने रिकॉर्ड कर रहे थे सहारा स्टूडियो में, जुल्मी फिल्म थी, अक्षय कुमार
1: जी जी जी।
0: तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई यहाँ सहारा में आ जाओ और अपनी किताब लेके आना,
1: वहाँ तनवीर खान भी के
0: हाँ। तो मैं वहीं आ रहा हूँ, तनवीर खान साहब तक आ रहा हूँ मैं। तो मैं सूरत से अपनी एक किताब, मेरी पहली किताब छप चुकी थी धूप दरिया, तो वो 96 में छपी थी वो किताब। तो ये 96 से 2000 के बीच की बात है। तो मैं वो किताब लेके आया
1: जी।
0: और सहारा स्टूडियो में मैं बैठा था मिलने के लिए। तो तनवीर खान साहब की नजर उस किताब पर पड़ी
1: जी।
0: और उन्होंने कहा मैं देख सकता हूँ? मैंने कहा बिल्कुल देखिए। तो उन्होंने दो चार पेज इधर उधर पलटे, और वो किताब जो थी उसका इंतसाब माँ के नाम था।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो एक शेर जो है वो कैप्शन के तौर पर नीचे था कि अब भी सोते में ऐसा लगता है,
1: अब भी सोते में ऐसा लगता है, क्या बात है,
0: सर के नीचे तेरी हथेली है।
1: ओ, क्या बात है।
0: ठीक है, तो ये शेर और कुछ शेर उनको बड़े पसंद आए। उन्होंने कहा यार ये किताब मुझे चाहिए। मैंने कहा ये तो मैं दिलीप सेन जी के लिए लाया हूँ, आप मुझे एड्रेस दे दें तो मैं सूरत जाऊंगा, आपको भेज दूंगा। अच्छा, मैं उनको नहीं पहचानता था, वो मुझे नहीं पहचानते, जबकि तनवीर भाई ने बहुत सारे फिल्मों के डायलॉग, बड़ी कामयाब फिल्मों के डायलॉग लिख चुके थे, इस फिल्म के डायलॉग राइटर भी वही थे। तो मैंने वो किताब उनको सूरत जाके भेजी, और वो किताब पढ़ के इतने इम्प्रेस हुए, वो किताब वो मेरी शायरी दोस्ती का जरिया बनी।

0: क्या बात है।
1: तो हमारी दोस्ती हो गई। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको फिल्मों में काम करना है तो आपको बॉम्बे आना पड़ेगा, मुंबई में रहना पड़ेगा आपको। अब मैं डरता था कि मैं कहाँ रहूँगा, क्या करूँगा, कैसे सरवाइव करूँगा, इसलिए मैं लेट हो रहा था मुंबई आने में। लेकिन फिर मैंने सोचा यार एक ना एक दिन तो ये कदम उठाना ही पड़ेगा, तो आज ही क्यों ना उठाया जाए। और इनसे मुझे बड़ी उम्मीदें थी तनवीर साहब से, क्योंकि ये बड़ी फिल्मों के डायलॉग राइटर होते थे
0: जी जी,
1: तो एक जरिया था। तो मैं सूरत से मुंबई आ गया 2001 फरवरी में
0: जी।
1: और फिर तनवीर भाई के साथ घूमना फिरना, उनके सेट पे जाना, शूटिंग में जाना, ये सब मीटिंग में उनके साथ जाना, ये सब हो रहा था। उसी जमाने में रूप भाई से मुलाकात मेरी थी
0: जी।
1: तो ये दो लोग थे जिनसे मेरी उम्मीदें जुड़ी थी। तो रूप भाई मेरे गाने कंपोज कर रहे थे। अच्छा, दोनों से एक दूसरे के बारे में मैं बात करता था। मैं इनसे कहता भाई रूप भाई को सुन लीजिए, मेरे गाने उन्होंने कंपोज किए हैं। अरे मैं सुन के क्या करूंगा, मैं ना डायरेक्टर हूँ ना प्रोड्यूसर हूँ। तब वो डायरेक्टर नहीं बने थे, बाद में डायरेक्टर भी बने। तो ये जो फिल्म थी वो तेरा नाम था, इसके वो डायलॉग लिख रहे थे, और इस फिल्म के डायरेक्टर थे कुकू कोहली जी, और इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे बहुत बड़े आदमी, अलग बिजनेस से रेमंड के मालिक विजयपत सिंघानिया साहब, उन्होंने ये फिल्म प्रोड्यूस की थी। तो बड़े लोग बना रहे थे पिक्चर। अमरीश पुरी साहब का इसमें बहुत बड़ा किरदार था, फिल्म उन्हीं की थी सच पूछो तो, बाकी दो लड़के और दो लड़कियां थी उसमें। तो उन्होंने कहा कि भाई रूप भाई को फोन करो, उनको बुलाओ, मैं सेटिंग कराता हूँ कुकू जी के साथ, फिल्म कर रहा हूँ मैं। तो मैंने फोन किया रूप भाई को, तो उन्होंने कहा कि मैं तो स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रेलिया में कहीं थे वो, मैं तो यहाँ हूँ। अरे मैंने कहा कि भाई ये सेटिंग करनी थी तो कब आएंगे, तो कुछ 15-15 दिन बताया कि बाद आऊँगा। तो खैर जब तक वो आते तब तक उस फिल्म के कई गाने दिलीप सेन, समीर सेन जी ने रिकॉर्ड कर लिए थे, और वो गाने लिखे थे निदा फाजली साहब ने। अब जब रूप भाई आए तो हमारी सेटिंग शुरू हुई, तो उनके पास एक गज़ल थी कतील शिफाई साहब की, जिसकी झनकार में दिल का आराम था वो तेरा नाम था।
0: क्या बात है।
1: तो वो तेरा नाम था इसी गज़ल से लिया गया था।
0: ओ अच्छा, क्या बात है भाई, अच्छी दिलचस्प कहानी।
1: हाँ मतलब पहले से कुछ नाम भरे रहा हो पिक्चर का, लेकिन जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ ये गजल, तो वो तेरा नाम था कतील शिफाई साहब की गजल से लिया गया। ये नहीं कि गजल बाद में, गाना बाद में बना
0: जी,
1: पहले जो है गाना आया उसी में से नाम निकाला गया। जैसे मदहोशी थी उसका नाम मुमकिन था।
0: अच्छा।
1: हाँ, मदहोशी के डायरेक्टर तनवीर खान साहब थे, राइटर डायरेक्टर, उसका नाम मुमकिन था। जब हमने ये गाना रिकॉर्ड किया मदहोशी, तो इंदर कुमार साहब थे उसके प्रोड्यूसर, उनकी वाइफ थी और उनके साले, तो इंदर कुमार साहब ने कहा कि यार इसका नाम बदल दो, मदहोशी कर दो, ये जो गाना रिकॉर्ड किए हो ये टाइटल सॉन्ग बन जाएगा। तो इस तरह से मुमकिन हटा के मुमकिन नाम से उसका प्रचार भी शुरू हो गया था। बाद में वो मुमकिन हटा के मदहोशी किया गया। तो इस तरह से वो टाइटल आया वो तेरा नाम था। फिर उसमें मेरे दो गाने लिए गए, और उसमें कतील शिफाई साहब का भी गाना है, निदा फाजली साहब का है, मतलब दो बड़े शायर और गीतकारों के साथ मेरी शुरुआत हुई फिल्म में। उसमें एक गाना था जो मेरी जिंदगी का पहला गाना, वो ये था कि सुबह हो रही है, भोपाल का माहौल है, 1947 मुल्क आज़ाद हुआ है, और भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया जा रहा है। ये उस टाइम की कहानी थी, और समद खान कोई वहाँ के बड़े क्लासिकल सिंगर थे। तो सुबह हो रही है और पूरा उस जमाने की एक्टिविटी थी वो सब हो रहा है, और समद खान वो छत पे रियाज कर रहे हैं अपने महल के, और उनकी बेटी जो फिल्म की हीरोइन है वो कहीं वादियों में गा रही है। तो ये सिचुएशन थी
0: जी,
1: और फिल्म इसी गाने से शुरू होती है। तो वो मैंने लिखा था, मुझे पसंद है वो जो राइटिंग है, और वो गाना इतना, मतलब अलका जी ने गाया उसको और उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने अपनी माता जी को फ़ोन करके बुलाया और उनको सुनाया कि देखो आज भी ऐसे गाने लिखे जाते हैं। फिर वो गाना रिकॉर्डेड रूप भाई ने ले जाके लता जी को सुनाया, है ना दीदी, मैंने ये मेरी पहली फिल्म शुरू हुई है ये गाना रिकॉर्ड किया मैंने। तो उन्होंने गाना सुना लता जी ने, तो डांटा उन्होंने प्यार से
0: कि मुझे,
1: अरे ये गाना तो मेरा था, तूने मुझसे क्यों नहीं गवाया।
0: क्या बड़ा कॉम्प्लीमेंट था।
1: हाँ तो ये

0: गाने में जो एक तो कंपोजिशन और दूसरे जो इसके लिरिक्स हैं के पूरे साहित्यिक, उसका मैं मुखड़ा सुनाता हूँ आपको। सुबह हुई दिन निकल रहा है, सुबह हुई दिन निकल रहा है, नदी के तट पर नहा के सूरज सुनहरे कपड़े बदल रहा है।
1: क्या बात,
0: सुबह हुई दिन निकल रहा है।
1: वाह, बहुत
0: cool। आपके उदयपुर के रेडियो स्टेशन पर ये सुबह इसी गाने से होती है, डेली ये गाना बजता है।
1: हम यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाए?
0: मधोशी का टाइटल सॉन्ग सुना दे। मधोशी है, मधोशी है।

0: शकील साहब, एक बहुत ज़रूरी सी बात है और आपके करियर में भी बहुत ये उम्दा बात है, ख़ास बात है, अपने श्रोताओं को बता दें कि आपने कहीं बहुत सारी जगहों पर आपके बारे में पता है कि बहुत ऊंचे दर्जे की तालीम नहीं ली, स्कूल में जाने का मौका नहीं मिला आपको, लेकिन एक ऐसी तालीम है जो आपके भीतर आपने खुद से ली होगी। राम के वनवास पर आपकी बहुत सारी नज़्में हैं जिस पर किताब भी आई है और जिसका आप अक्सर जिक्र करते हैं, तो ये कहाँ से आइडिया आया, कहाँ से खोज की आपने, इतने बड़े फलक पर आपने कैसे कुछ कोशिश की, बताइए।
1: मेरी उर्दू में 8 किताबें हैं
0: जी।
1: मैं साहित्य से, उर्दू साहित्य से ही फिल्मों में और मंचों पर आया। 20 साल तक मैंने सिर्फ साहित्य लिखा, साहित्य के मैगजीन में छपता रहा, मैं बाद में इधर आया फिल्मों की तरफ और मंचों की तरफ। तो ये जो काम है मेरा, ये मैं जंगल पर लिख रहा था, जंगल पर लिख रहा था, और लिखते लिखते उसी दरमियान उर्मिला का जो किरदार है वो कहीं से मेरी जिंदगी में आया। उर्मिला जो लक्ष्मण की बीवी है, लक्ष्मण की जो पत्नी
0: जी,
1: है
0: जी।
1: उस किरदार ने मुझको झकझोर के रख दिया, मुझे हिला दिया उस किरदार ने, उसके बलिदान ने, उसके कुर्बानी ने,
0: कि वनवास होता है लक्ष्मण को 14।
1: हाँ, और अहिल्या, ये दो ऐसे किरदार हैं जिन्होंने मुझे बहुत परेशान किया, बहुत बेचैन किया मुझे। और उसी जमाने में जब मैं अहिल्या के दर्द से दो चार था, उसको जी रहा था, और जब ये नज्म हुई उर्मिला, जब ये नज्म मैं लिख चुका, तो मुझे लगा कि यार जो रामायण है
0: जी,
1: वो पूरी घटना जो है वो जंगल में है, वनवास जो राम जी का है 14 बरस का, तो क्यों ना रामायण के किरदारों पर नज़में लिखी जाएं। तो मेरी जो रामायण है वो वाल्मीकि जी से लेके अब तक जितनी भी रामायणें लिखी गई हैं,
0: तुलसीदास
1: की जी, हाँ, तो और भी हमारे दूसरे लोगों ने लिखी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी का काम है इस उर्मिला पे,
0: उर्मिला सखी वे मुझसे
1: हाँ,
0: कर जाते
1: हाँ, हाँ,
0: बहुत बढ़िया।
1: तो सभी ने मतलब कहानी के माध्यम से कहानी कही है, मैंने एक नया रास्ता निकाला पात्रों के जरिए से, किरदारों के जरिए से मैंने रामायण कही है मैंने कहानी। तो मैंने तकरीबन सभी किरदारों पर नज़में लिखी, एक के बाद एक जीता गया और लिखता गया, इस तरह से वो पूरी एक अलग सी रामायण हुई। और पहले मैंने उसका नाम सोचा था जंगल यात्रा, उस किताब का, क्योंकि जंगल पे काम कर रहा था मैं, तो उस किताब का एक बड़ा हिस्सा जंगल भी है, रामायण और जंगल दोनों हैं उसमें, तो वो मेरे लेखन क्षेत्र में आता था, मेरा जो टॉपिक था जंगल उसमें वो वनवास आता था वो। तो जब ये रामायण उसमें शामिल हो गया, तब मुझे मैंने सोचा कि यार क्यों ना इसका नाम वनवास रख दिया जाए, उससे बेहतर क्या नाम हो सकता है, अगर जंगल पर किताब है, रामायण पर किताब है, तो वो जो है इस तरह से उसका नाम वनवास रखा गया। और वो किताब इतनी सराही गई है, उर्दू में उसको कई अवार्ड मिले, और उर्दू के जितने भी बड़े क्रिटिक्स और पोएट हैं उर्दू साहित्य में, तकरीबन सभी ने उस किताब पर आर्टिकल्स लिखे हैं, लेख लिखे हैं, मजामीन लिखे हैं। तो किताब पर किताब का आ जाना बहुत बड़ी बात होती है, मतलब उस किताब पर इतने आर्टिकल लिखे गए कि वो अलग से एक किताब आई है, उसको प्रोफेसर कौसर मजहरी साहब हैं जो जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं उर्दू के, उन्होंने वो किताब कंपाइल की है।
0: क्या बात है।
1: हाँ, तो इस तरह से उस किताब पर किताब आई, और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पाकिस्तान के राइटरों को भी उस किताब ने बहुत इम्प्रेस किया।
0: जी, जी।
1: वहाँ पर एक बड़े राइटर थे, अभी उनकी डेथ हुई है, जो फिल्म के भी राइटर थे, साहित्य के भी थे और मंचों के भी थे, जिस तरह हमारे यहाँ जावेद साहब हैं, गुलजार साहब हैं, इस तरह का वो नाम थे, अमजद इस्लाम अमजद साहब, अभी इंतकाल हुआ उनका, उन्होंने इस पर आर्टिकल लिखा है। और किस तरह से मतलब हिंदू माइथोलॉजी और रामायण को लेके जो उनकी मालूमात थी वो भी कमाल है, वो जो लिखा है उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। ये किताब हिंदी में जब आई तो पिछले 3 सालों से बेस्ट सेलर,

0: कविता की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में एक है ये।
1: क्या बात है।
0: पिछले 3 साल से लगातार, और अभी को दैनिक जागरण ने बेस्ट सेलर अवार्ड दिया गृह मंत्री अमित शाह जी के हाथ से मुझे।
1: क्या बात है।
0: तो हाँ, बहुत शुक्रिया
1: और बहुत बढ़िया बात कही है। और आपके मुशायरों का जिक्र तो हुआ, शुरुआती मुशायरों का, लेकिन बाद के मुशायरों में हमने खुद देखा है, मेरी खुशनसीबी है कि हमने आपको खुद देखा है और कलिंगा फेस्टिवल में देखा, प्रयागराज में हमने आंखों से देखा था जहां अनुभव सिन्हा जी भी उपस्थित थे, और आपकी जो शायरी थी वो आपके खजाने से निकल रही थी और पूरा हॉल खचाखच भरा था। ऐसे तमाम अनुभव हैं, तमाम वाक्यात हैं जिनकी बातें हम आपसे और फिर कभी करेंगे। आज तो बस इतना हम कहना चाहते हैं, धुआं धुआं है फजा, रोशनी बहुत कम है, सभी से प्यार करो, जिंदगी बहुत कम है। आपके ही अल्फाज हैं, आप क्या कहेंगे, आप विविध भारती के श्रोताओं को क्या पैगाम देंगे, क्या कहेंगे चलते चलते?
0: मैं यही कहूँगा कि अभी आपने जो सुनाया है, सभी से प्यार करो, जिंदगी बहुत कम है, तो प्यार बहुत ज़रूरी है। और दुनिया में कुछ भी हो जाए, ये जो मोहब्बत का जज्बा है ये हमेशा बड़ा रहेगा, बड़ा था, बड़ा है, बड़ा रहेगा। तो मोहब्बत कीजिए, सबसे पहले तो खुद से मोहब्बत कीजिए।
1: कुछ शायर में एक शायर से हम उम्मीद करते हैं, शायरी में ही कुछ बोले शेर के साथ
0: जी,
1: कोई अशार।
0: मैं अभी इधर एक नई गजल कही है मैंने, उसके 2-3 शेर सुना देता हूँ, और उसमें एक शेर है खास तौर से उसके लिए मैं ये शेर सुना रहा हूँ कि उसमें ये भी एक शेर है, सीख है कि भाई ठीक है, ऊंच नीच होती है, कुछ हमारे अलग अलग सोच होती है, लेकिन उस सब को हटा के आगे की तरफ बढ़ते रहो।
1: क्या बात है।
0: मोहब्बत करते रहो कि आबाद मेरी बाहों का घेरा नहीं हुआ, आबाद मेरी बाहों का घेरा नहीं हुआ।
1: क्या बात है।
0: मैं हो गया हूँ उसका, वो मेरा नहीं हुआ।
1: वाह वाह वाह।
0: मैं हो गया हूँ उसका, वो मेरा नहीं हुआ। वो शेर ये है जो मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, वो आप आगे बढ़ें। सांपों को मैंने रहने दिया उनके हाल पर।
1: क्या बात है।
0: सांपों को मैंने रहने दिया
1: उनके हाल,
0: उनके
1: पर।
0: हाल पर मंत्र भी सीख कर मैं सपेरा नहीं हुआ।
1: वाह वाह वाह।
0: ठीक है, मैंने उसे बदला नहीं लिया, मैंने मंत्र आता था मुझे, लेकिन ठीक है यार, तुम तुम्हारे रास्ते, मैं अपने रास्ते। इसका एक शेर आखिरी खास तौर से कि देखिए, ज्ञान जो है ना
1: जी,
0: शायरी में ज्ञान की बहुत जरूरत नहीं होती, लेकिन जब आपके पास ज्ञान भी होता है अलग अलग, तो वो शेर में आता है रचना के तौर पर, रचनात्मक तौर पर आता है, तख्लीकी तौर पर, तो बहुत असर करता है। तो एक महाभारत का एक इल्म है, एक ज्ञान है जो इस शेर में आता है, मैं सुनाता हूँ। ये जिंदगी भी एक महाभारत का युद्ध है।
1: क्या बात है। ये जिंदगी भी एक महाभारत का युद्ध है। वाह।
0: ये सीख है हम सबके लिए। ये जिंदगी भी एक महाभारत का युद्ध है
1: जी।
0: लड़ते रहो शकील, अंधेरा नहीं हुआ।
1: क्या बात है। वाह वाह। तो अब अपने श्रोताओं से, हमारा तो दिल नहीं कर रहा है कि हम इजाजत लें, और लग रहा है कि आपसे गुफ्तगू जारी रहे, और बहुत सारी अभी बातें हैं जो बाकी हैं आपसे पड़ताल करनी। आजमगढ़ जैसे छोटे से शहर से आप मुंबई जैसे महानगर में आकर और इतना नाम रोशन किया है, शायरी की दुनिया में, फिल्मों की दुनिया में आपने नाम रोशन किया है, इसके लिए आपको पूरे विविध भारती परिवार की ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद हम दे रहे हैं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब।
0: आप नमस्कार। ममता जी,
2: जानी मानी शायर और गीतकार शकील आजमी से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और आखिरी भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी, और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: के बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: जिधर देखें उधर मस्तियां हैं, शोखियां हैं, तेरी निगाहों के ऐ सनम, जरा घबरा के जरा शर्मा के लूटते जाना, जलवे हैं तेरी निगाहों के ऐ सनम।
1: हाँ

धक रहा है सीने में मोहब्बत का अंगारा, कोई क्या जाने कैसे बनेगा सहारा, ये बादल आवारा इसे कौन पहचाने।

0: कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा।
1: ये रुत, ये नजारे, ये मस्त निगाहें भूलना नहीं है, ये पहली मुलाकात, ये प्यार भरी बातें जीने के सहारे, इन्हें भूलना नहीं है।

0: भरी बातें, ये पहली मुलाकातें, ये प्यार भरी बातें।
1: मिल गए दुनिया में दिन के सहारे सहारे।
2: छाया गीत के बाकी गीत इस अंतराल के बाद।

0: तूफान उठाएगा ये जमाना, उठाने दो, दिल तो दौड़ता ही जाएगा अपनी मंजिल की ओर। नजरें मिली हैं तो सपनों की महफिल में शमा जलती ही रहेगी, दो दिल बढ़ते ही जाएंगे अपनी मंजिल की ओर।
1: तस्वीर तेरी दिल में जिस दिल

सितारों का झिलमिलाना, चिरागों का जलना दे रहा है इशारा, तुझे रोके तो कैसे। दिल पहले भी कब भरा था, आज भी प्यासा है, ये आजमाइश होती ही रहेगी, ऐ सनम तुझे रोके तो कैसे।

ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम तराने नए पुराने आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने नए पुराने।
1: तराने नए पुराने।
0: कार्यक्रम तराने नए पुराने सुनने वाले सभी नए पुराने दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। शुभ संध्या साथियों। कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। गीतकार हैं समीर, संगीतकार हैं जतिन ललित और फिल्म का नाम है गुलाम।

लीजिए सुनिए अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। नगमा निगार है मजरू सुल्तानपुरी, संगीत है राजेश रोशन का, फिल्म का नाम है दूसरा आदमी।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक दिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: समीर का लिखा गीत सुनिए कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। संगीत है नदीम श्रावण का, फिल्म का नाम है दिल तेरा आशिक।

0: विविध भारती।
1: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
0: विचारा
2: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
1: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक,
2: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
1: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
3: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर, सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
2: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ।
1: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
2: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।
4: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने करते।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है किशोर कुमार, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में। कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में इस गीत के बोल लिखे हैं इंदिवर ने। फिल्म का नाम है हेरा फेरी।

0: नहीं
1: हम हैं तेरे साथ।
0: बिल्कुल।
1: अरे पहुंचा देंगे उसके कानों तक हम ये तेरे।

0: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। शाम के 6 बजने वाले हैं, कुछ ही लम्हों बाद आप सुनेंगे हिंदी समाचार।
1: विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। FM बैंड 101.6 MHz पर आकाशवाणी का ही रायपुर केंद्र है। 6 बज रहे हैं, समाचार रिले किए जाएंगे।

0: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। शाम के 6 बजने वाले हैं, कुछ ही लम्हों बाद आप सुनेंगे हिंदी समाचार।
1: विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। FM बैंड 101.6 MHz पर आकाशवाणी का ही रायपुर केंद्र है। 6 बज रहे हैं, समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है। उन्होंने बताया कि इस मंच के शुरू होने के बाद से अब तक 50 लाख से अधिक आव्रजन मंजूरियां जारी की जा चुकी हैं। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में धन भेजने के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल यूरो बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि रसायन, इलेक्ट्रॉनिकी, जहाज निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में मजबूत आधार के कारण गुजरात जल्द ही रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनेगा। वे आज वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। करीब 4 दशक की सैन्य सेवा के दौरान जनरल द्विवेदी ने परिचालन, रणनीति, क्षमता विकास और संस्थागत कार्यों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
1: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: भारतीय तटरक्षक बल के जहाज सचेत ने कर्नाटक के मंगलुरु तट के पास समुद्र में खोज और बचाव अभियान चलाकर मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका मंजू माता के 6 मछुआरों को बचाया है। तटरक्षक बल ने सोशल मीडिया पर बताया कि कल खराब मौसम के कारण नौका क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें पानी भरने लगा। इसके बाद रिमोट से संचालित लाइफ बॉय की मदद से सभी 6 मछुआरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों से शिक्षा को न्याय संगत और समावेशी समाज के निर्माण के साधन के रूप में उपयोग करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षित युवाओं को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पख्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने

0: पाकिस्तान से अफगान क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के कथित उल्लंघन के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है। तालिबान के उपप्रवक्ता हमदुल्ला फितरत के अनुसार 28 जून की रात को हुए इन हवाई हमलों में 36 लोगों की मौत हुई और 163 अन्य घायल हुए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 6:05 हुए हैं।

0: एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 6:10 हो रहे हैं। अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। अब आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग संध्या तिवारी के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। वीबी जी राम जी योजना छत्तीसगढ़ समेत देश भर में काली ले हो ही लागू। राज्य सरकार ह सहकारी समिति मन के माध्यम ले किसान मन ला देवैया यूरिया ऊपर लागू 80% के सीमा ला खत्म कर दे हे। और सरगुजा जिला में राखे गए 2 दिन के रामगढ़ महोत्सव आज सिरागे। समापन समारोह में मुख्यमंत्री होइन शामिल। अब समाचार विस्तार ले। विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण योजना देश भर में काली 1 जुलाई ने लागू हो जाही। ये योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के जगह लिही। एकर तहत हर एक ग्रामीण परिवार मल्ला हर वित्तीय बछर में 125 दिन के रोजगार देवाए के गारंटी दे जाही। ये योजना के तहत कोनो भी मनखेला बेरा मा काम नहीं मिली त ओला बेरोजगारी भत्ता दे के प्रावधान घलो है। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र मन मा सड़क तरिया जल संरक्षण सिंचाई वृक्षारोपण सार्वजनिक परिसंपत्ति के निर्माण और आने आने विकास काम मन ला प्राथमिकता दे जाही। छत्तीसगढ़ में ये योजना के प्रचार प्रसार पर ग्राम सभा चौपाल पोस्टर बैनर मुनादी रथ प्रचार और डिजिटल माध्यम के उपयोग करेगी। उन्हें सरपंच सचिव रोजगार सहायक स्व सहायता समूह के माइलोगिन जनप्रतिनिधि और स्थानीय सामाजिक संगठन रहा ले लोगन मल्ला योजना के जानकारी देगी। एकर अलावा ग्राम और जनपद पंचायत के संगे संग जिला स्तर में प्रशिक्षण बैठक और ग्राम सभा के आयोजन करेगी। केंद्र सरकार ह पेट्रोल और डीजल के बेचे और खरीदी में लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध ला 1 जुलाई ले हटाए के फैसला करे है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय है कहे है कि सार्वजनिक क्षेत्र के तेल विपणन कंपनी के खुदरा पेट्रोल पंप में अब सामान्य व्यवस्था के तहत ईंधन की बिक्री होगी। मंत्रालय डाले कहे गए है कि अब देश में पेट्रोलियम उत्पाद के आपूर्ति सामान्य हो गए है और पेट्रोल डीजल पूरा मात्रा में हवे। एकर सेती जनहित में ये अस्थायी रोक ला वापिस लेके फैसला ले गए है। नई दिल्ली में राखे गए 2 दिन के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के मटेरियल बैंक ला राष्ट्रीय स्तर में सराहना मिले है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान हा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत विकसित ये मॉडल की सराहना करत ग्रामीण आवास निर्माण लग गति देने वाला बतायन। सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधित्व तो उप मुख्यमंत्री और पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा करें। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहने कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत के सपना पूरा नहीं हो सका है। हरियाणा के हिसार में खेत बचाव अभियान के समापन समारोह ला संबोधित करत श्री चौहान कहने कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करे में काम करत है जौन माटी और ओमा जरूरी उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी दी ही ओमन किसान मला जैविक खेती अपनाए के सलाह दी। राज्य सरकार ह सहकारी समिति मन के माध्यम ले किसान मन ला देवैया यूरिया ऊपर लागू 80% के सीमा ला खत्म कर दे है। अब किसान मन ला पाछू खरीफ बछर जैसन उखर पात्रता के मुताबिक एक मुश्त यूरिया देवाए जाही। प्रदेश में यूरिया के पर्याप्त मात्रा देखत पहली लागू कुछ एक रोक मल्ला खत्म कर दे गए है। जांजगीर चांपा जिला के कृषि विभाग के उप संचालक राकेश शर्मा बतायन है कि संबंधित सहकारी समिति में पर्याप्त मात्रा में स्टॉक होय के सेती किसान मन ला एक मुश्त यूरिया दे जाही। उन्हें कोनो समिति में स्टॉक के कमी हुए मा बाचे मात्रा ला यूरिया पहुंचते किसान मल्ला बांटे जाही। उन्हें वैश्विक परिस्थिति के सेती रासायनिक उर्वरक की उपलब्धता में पड़त प्रभाव ला देखत कृषि विभाग डाले राज्य में नैनो डीएपी और नैनो यूरिया के उपयोग ला बढ़ावा दे जावत है। राज्य सरकार हा किसान मल्ला नैनो उर्वरक के प्रति जागरूक करे बर अभियान चलावत है। कृषि विभाग हा किसान मल्ला अपील करे है कि अपन तीर ले सहकारी समिति और कृषि

0: के अधिकारी मन ले संपर्क करके नैनो डीएसपी और नैनो यूरिया के वैज्ञानिक उपयोग के जानकारी लेवे। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगु बढ़वो बाचे समाचार कोती। सरगुजा जिला के रामगढ़ में राखे गए 2 दिन के रामगढ़ महोत्सव आसिर आगे समापन समारोह में मुख्यमंत्री सुदेश साय शामिल हुईन। ये मौका में श्री साय कहने कि रामगढ़ सरगुजा के हजारों बच्छर जुड़ना सांस्कृतिक चेतना कला आस्था और गौरवशाली इतिहास के जीवंत प्रतीक हरय। ओमन कहने कि विश्व के प्राचीनतम नाट्यशाला के रूप में विख्यात ये स्थल संस्कृति इतिहास साहित्य और पर्यटन के संगम हरय। ओमन कहने कि छत्तीसगढ़ के धरती प्राकृतिक संपदा के संगे संग सांस्कृतिक और पुरातात्विक रूप में घलो विश्व स्तर में बड़का चिन्हारी राखथे। ये मौका में मुख्यमंत्री रामगढ़ के विकास पर 1 करोड़ रूपया और उदयपुर डूमर डीहला मिला के नगर पंचायत बनाए के घोषणा करी। ये दौरान मुख्यमंत्री विश्व के प्राचीनतम नाट्यशाला के रूप में विख्यात सीता बेंगरा गुफा जोगीमारा गुफा और क्षेत्र के अनूठा प्राकृतिक धरोहर हाथी पोल के अवलोकन करी। ये मौका में कृषि मंत्री रामविचार नेताम पर्यटन और संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल समेत आने आने जनप्रतिनिधि मौजूद रही। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा में संभाग प्रभारी और सह प्रभारी मन के नियुक्त करे है। ये सूची भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के सहमति ले प्रदेश महामंत्री और मुख्यालय प्रभारी नवीन मार्कंडेय जारी करीन है। हेमलता चंद्राकर ला रायपुर संभाग के प्रभारी और सुषमा खलकोला सह प्रभारी नियुक्त करे गए है। ऐसने है शीतल नायक ला दुर्ग संभाग के प्रभारी और वर्षा सिंह ला सह प्रभारी बनाए गए है। रंजीता रंधावाला बस्तर संभाग के प्रभारी और जानकी कोरसाला सह प्रभारी फुलेश्वरी पैगराला बिलासपुर संभाग के प्रभारी और किरण साहूला सह प्रभारी के संग किरण मरकामला सरगुजा संभाग के प्रभारी और रंजनी तिवारीला सह प्रभारी बनाए गए हैं। रथ यात्रा के मौका में यात्री मन के सुविधा बर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे गोंदिया पुरी गोंदिया के बीच रथ यात्रा स्पेशल ट्रेन चलाए के फैसला ले है। ये विशेष ट्रेन 2, 9, 16 और 29 जुलाई के गोंदिया ले पुरी पर चलही। वापसी में ये ट्रेन 3, 10, 17 और 30 जुलाई के पुरी ले गोंदिया बर रवाना होही। ट्रेन के स्टॉपेज डोंगरगढ़ राजनांदगांव दुर्ग रायपुर समेत कई ठीन प्रमुख स्टेशन मन में रही। उन्हें हटिया LTT हटिया समर स्पेशल ट्रेन के अवई जवई 15 जुलाई तक बढ़ाए गए हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF मां आरक्षक के पद में भर्ती पर कथित रूप से फर्जी जातीय निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे के मामला में आरक्षक की सेवा खत्म कर दी गई है। उन्हें उतई पुलिस आरक्षक के पद में चयनित आरोपी मोहित के खिलाफ अपराध दर्ज करके मामला ला कार्यवाही के बर मध्य प्रदेश पुलिस ला भेज दे है। मिले खबर के मुताबिक SSC GD भर्ती परीक्षा 2025 के तहत भर्ती प्रक्रिया के दौरान आरोपी मन फर्जी जातीय और निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे रहीन। दस्तावेज के सत्यापन के बाद जातीय और निवास प्रमाण पत्र फर्जी पाएगीस जेखर बाद आरक्षक के सेवा समाप्ति के कार्यवाही करेगीस। अब मौसम के हाल। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून आज पूरा छत्तीसगढ़ में सक्रिय हो गए है। एकर असर ले पूरा प्रदेश में हल्का ले मध्यम वर्षा के दौर शुरू हो गए है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी आकाशवाणी समाचार ले गोट बात करत बताई है कि जुलाई महीना में मानसून की गतिविधि में बढ़ोतरी होए के संभावना है। यही बीच सरगुजा जिला में काली हवा गरेर और तेज वर्षा के दौरान गाज गिरे ले 5 साल के लड़का समेत 3 जिन लोगों की मौत हो गई। उन्हें 1 जिन नोनी गंभीर रूप से घायल हो गए है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। VBG रामजी योजना छत्तीसगढ़ समेत देशभर में काली ले हो ही लागू। राज्य सरकार सहकारी समिति मन के माध्यम ले किसान मन ला देवैया यूरिया ऊपर लागू 80% के सीमा ला खत्म कर दे है। और सरगुजा जिला में राखे गए 2 दिन के रामगढ़ महोत्सव आसिर आगे समापन समारोह में मुख्यमंत्री होइन शामिल।

0: के संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यह सिरावत है। जय जोहार।
1: एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 6:20 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक सुर।
2: तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते, फिर खाए पिए के मामला में एक ठन फॉर्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो, आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते। ये आप मन ला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़किन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
3: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मा सुपर हिट।
4: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
5: मम्मी मम्मी पापा आगे।
6: दक्ष, विराट, कन्हैया, तुहर मन भर मैं गरम गरम समोसा भजिया जलेबी लेके आया हूँ।
5: मम्मी प्लेट लाना।
7: प्लेट के का जरूरत है? तुहर ड्राइंग के कागज में खाओ। कतेक प्लेट ला, मैं मांजा धोत रहा हूँ।
8: ये मस्याही लगे है, समोसा खराब हो जाए, ये मैं नहीं खाना चाहिए।
7: ऐसने में खात खात उम्र बीत गए, कैसे जी?
6: हाँ जी,
5: कागज न्यूज पेपर मा तेल्हा फुल्हा खाए पिए के गरम जिनिस ला नहीं रखना चाहिए।
8: एमा केमिकल वाला स्याही लगे रही थे, जिन हा गरम जिनिस संग रासायनिक क्रिया करके ओला जहरीला बना देते।
5: ये कर अलावा प्लास्टिक थर्माकोल या डिस्पोजल कप गिलास मा चाय कॉफी पीना सेहत खराब करते।
4: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, मैं हूँ रेणुका काले, हाजिर हूँ लेकर छत्तीसगढ़ी आंचलिक गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम लोक सुर। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए कृष्ण कुमार पाटिल और साथियों के स्वरों में ये लोकगीत। सुनना चाहते हैं शंकरनगर दुर्ग से मानिक सिंह बैस, कावेरी विनीता बैस, लल्ली लेखमणि बैस, रुआ बांधा शनिचरी बाजार भिलाई से सुशील जैन, कल्पना जैन, सेया जैन, सौरभ जैन, शौर्य जैन, शुभम जैन, कोटा रायपुर से योगिता वर्मा, रुचि वर्मा, खुशी वर्मा, ओजल वर्मा, अटल रेडियो श्रोता संघ सांकरा सोमनी राजनांदगांव से नारायण लाल साहू, कुलवंतिन साहू, देवेंद्र कुमार, नेहा देवी, मिलिंद कुमार, यहीं से रजनी देवी, मास्टर प्रणय कुमार साहू, रुद्रांश प्रताप साहू, छत्तीसगढ़ बाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा।
9: मेहनत के रोटी खवैया अन जी,

FM बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं छत्तीसगढ़ी आंचलिक गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम लोक सुर। झुमुकलाल देवांगन और मंजू चतुर्वेदी के स्वरों में सुनिए ये लोकगीत। सुना चाहते हैं धरसींवा से छेदूलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना अरुणा यादव, अनुराधा अल्पना यादव। दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाऊ यादव, रानू, खुशी, प्रवीण साहू, सीएल यादव। कोटा रायपुर से अरुण वर्मा, अनिल वर्मा, ईश्वर वर्मा, दिनेश सेन। देवरी भाटापारा से कन्नूलाल रजक, केआर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री। शीतलानगर दुर्ग से शिव चंद्राकर, भगवान चंद्राकर।

तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते। फिर खाए पिए के मामला मा एक ठन फार्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते। ये आप मन ला संपूर्ण पोषण देते और अपन

0: पान मा तेल, नमक और शक्कर ला थोड़कीन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
1: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मा सुपर हिट।
2: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
3: आओ ननकू भैया, कैसे हैं? होटल बढ़िया चला थे ना? ग्राहकी वगैरह ठीक है कि नहीं? रोको। अरे भैया, पहली जुन्ना तेल लत निकाल ले, तेकर बाद नवा तेल डालबे।
4: का है शिव भैया, तेल में तेल नहीं डालू तो जुन्ना तेल ला काय करू?
3: तहू यार,
5: रियूट कुकिंग ऑयल योजना ले बायोडीजल बनाए जाते, जेकर ले आप और आपके वातावरण सुरक्षित रहे।
2: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
6: लोक सुर कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए कविता हिरकने के स्वर में ये लोकगीत। पसंदगी हमारे इन श्रोताओं की है। रोहांसी से डगेसर राम साहू, अलका जानवी साहू, नूतन साहू, गौरव साहू। छत्तीसगढ़ बेमेतरा से श्रीमती पूर्णिमा सारथी, पूजा आरती भाव्या सारथी, श्रीमती सुषमा सारथी। रामनगर रायपुर से राजेश अम्बादे, शशिकला अम्बादे, पूजा अम्बादे। पाहरा अहिवारा से पोषण बंछोड़, चंद्र किरण, प्रीति और छाया बंछोड़।

0: तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते। फिर खाए पिए के मामला मा एक ठन फार्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते। ये आप मन ला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़किन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
1: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मां सुपर हिट।
2: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
3: आओ ननकू भैया, कैसे हैं? होटल बढ़िया चला थे ना? ग्राहकी वगैरह ठीक है कि नहीं? रोको। अरे भैया पहली जुन्ना तेल लत निकाल ले, तेकर बाद नवा तेल डालबे।
4: काहे शिव भैया, तेल में तेल नहीं डालूं तो जुन्ना तेल ला काय करूं?
3: तहु यार।
5: रियूट कुकिंग ऑयल योजना ले बायो डीजल बनाए जाते, जेकर ले आप और आपके वातावरण सुरक्षित रहे।
2: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
6: कल्याण सिंह गायकवाड़ और साथियों के स्वरों में सुनिए लोकसुर कार्यक्रम का ये अगला लोकगीत। सुनना चाहते हैं श्री श्रृंगी ऋषि महानदी सिहावा पर्वत अंचल बेलर गांव से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु अंकित देवांगन। डोंगर गांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, रजनीश, मनीष, नीतीश, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। ग्राम पंचायत बठेना से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा धनेश्वरी वर्मा। चटौदा सारा गांव से सुजान वर्मा, सुहत्रा वर्मा, आयुषी और कृत वर्मा। बाजार पारा बेमित्रा से भाई भरतलाल सिन्हा, लव कुमार, लक्की सिन्हा, मुरली मनोहर पटेल।

लोक सुर कार्यक्रम के आखिर में सुनिए झालाराम साहू और साथियों के स्वरों में ये लोकगीत। सुनना चाहते हैं कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालो से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, राधिका तुषार तामुरिया, यहीं से डॉली बाबू अलकबीर, पूजा और प्रभा देवी तामुरिया, किकिर मेटा बेलहारी पाटन से संतोष शर्मा, रुक्मणी शर्मा, गुरामी डोंडी लोहारा बालो से पीयूष नेताम, कोमल नेताम, जोहत्रीबाई नेताम, जुनवानी दुर्ग से सुरीत राम साहू, ग्राम बनबघेरा जिला राजनांदगांव से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज नीलेश, कुमारी अंजलि सारवा, बेमित्रा से सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा हेमलता सारथी, भाई कमलकांत सारथी, वीरेंद्र ब्रिजकांत सारथी, पावर हाउस भिलाई जामुल से विकास वर्मा, खुशी वर्मा, ग्रंथ वर्मा, संजय प्रधान और पूजा प्रधान।

इस लोकगीत के साथ ही लोक सुर कार्यक्रम समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 6:48 होने को हैं। प्रादेशिक समाचारों के लिए प्रतीक्षा कीजिए।

ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना देशभर में कल से लागू होगी। राज्य सरकार ने सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को दिए जाने वाले यूरिया पर लागू 80% की सीमा समाप्त की। राज्य सरकार ने प्रदेश के 156 उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सूची को दिया अंतिम रूप। अब इन्हें शासकीय सेवा में लेने की कार्यवाही शुरू की जाएगी। और मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून आज से पूरे छत्तीसगढ़ में सक्रिय हो गया है। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना देशभर में कल 1 जुलाई से लागू हो जाएगी। ये योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का स्थान लेगी। इसके तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को हर वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत यदि किसी व्यक्ति को

0: समय पर काम नहीं दिया जाता है तो बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान भी है। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, तालाब, जल संरक्षण, सिंचाई, वृक्षारोपण, सार्वजनिक परिसंपत्तियों का निर्माण और अन्य विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री तथा वितरण पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध 1 जुलाई से हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के खुदरा पेट्रोल पंपों पर अब सामान्य व्यवस्था के तहत ईंधन की बिक्री होगी। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति सामान्य हो गई है और पेट्रोल डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी है।
1: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है, जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल, सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहाँ भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: इस बीच भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत राष्ट्रीय जैविक तनाव प्रबंधन संस्थान द्वारा आज रायपुर जिले के तिल्दा विकासखंड के अंतर्गत मढ़ी ग्राम पंचायत में खेत बचाओ अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों को वैज्ञानिक कृषि पद्धतियां अपनाने और प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में जागरूक किया गया। राज्य सरकार ने सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को दिए जाने वाले यूरिया पर लागू 80% की सीमा समाप्त कर दी है। अब किसानों को पिछले खरीफ वर्ष की भांति उनकी पात्रता के अनुसार एकमुश्त यूरिया उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश में यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता को देखते हुए पहले लागू कुछ प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया है। जांजगीर चांपा जिले में कृषि विभाग के उपसंचालक राकेश शर्मा ने बताया कि संबंधित सहकारी समिति में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध होने पर किसानों को एकमुश्त यूरिया प्रदान किया जाएगा। वहीं किसी समिति में यदि स्टॉक की कमी है तो किसानों को किस्तों में यूरिया उपलब्ध कराया जाएगा। इस बीच वैश्विक परिस्थितियों के कारण रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता पर पड़ रहे प्रभाव को देखते हुए कृषि विभाग द्वारा राज्य में नैनो डीएपी और नैनो यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज रायपुर में हुई उच्च स्तरीय बैठक में राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सूची को अंतिम स्वरूप प्रदान किया गया। इस सूची में 156 खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं। ये खिलाड़ी 20 अलग अलग खेलों से संबंध रखते हैं। अनुमोदित खिलाड़ियों की सूची को सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा जाएगा। विभाग द्वारा इसे अधिसूचित करने के बाद इन खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में लेने के लिए कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। बैठक में बताया गया कि राज्य में अब तक 182 उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किए जा चुके हैं। भारतमाला परियोजना के तहत विकसित किए जा रहे इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत बिलासपुर उर्गा खंड पर आम नागरिकों और सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इस निर्माणाधीन सड़क पर आवागमन रोकने के लिए सभी एंट्री और एग्जिट प्वाइंट बंद कर दिए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। सरगुजा जिले के रामगढ़ में आयोजित 2 दिवसीय रामगढ़ महोत्सव का आज समापन हो गया। समापन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। श्री साय ने कहा कि विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला के रूप में विख्यात ये स्थल संस्कृति, इतिहास, साहित्य तथा पर्यटन का अद्भुत संगम है।
2: सरगुजा का ये क्षेत्र बहुत ही पवित्र है, सांस्कृतिक रूप में बहुत ही सुंदर है और हम लोगों की आस्था और समृद्ध सांस्कृतिक का एक साक्षात उदाहरण है ये रामगढ़। और इस रामगढ़ का उल्लेख हमारे देश के वेद, पुराण, उपनिषद सब में मिलता है। विख्यात कवि कालिदास मेघदूतम की रचना यहीं पर किए हैं।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने रामगढ़ के विकास के लिए 1 करोड़ रुपए और उदयपुर डुमरडीह को मिलाकर नगर पंचायत बनाने की घोषणा की।

0: छत्तीसगढ़ से इस वर्ष हज यात्रा पर गए सभी 813 हज यात्रियों की सकुशल स्वदेश वापसी हो गई है। राज्य हज कमेटी के अनुसार हाजियों का अंतिम जत्था कल मुंबई पहुंचा, जहां उनका स्वागत किया गया। हज कमेटी के अध्यक्ष मिर्जा एजाज बेग ने बताया कि इस वर्ष राज्य से 813 श्रद्धालु हज यात्रा पर गए थे। इनमें 417 पुरुष और 396 महिलाएं शामिल हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच छत्तीसगढ़ के तत्वावधान में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विषय पर राजधानी रायपुर में एक दिवसीय परिचर्चा आयोजित की गई। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संस्थापक इंद्रेश कुमार शामिल हुए। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता से धार्मिक आस्था, पूजा पद्धति और धार्मिक परंपराएं प्रभावित नहीं होंगी। उन्होंने यूसीसी के संबंध में लोगों से जागरूक होने और भ्रांतियों से बचने का आग्रह किया। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून आज पूरे छत्तीसगढ़ में सक्रिय हो गया है। इसके असर से पूरे प्रदेश में हल्की से लेकर मध्यम बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बताया कि जुलाई में मानसून की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है।
1: आज दिनांक 30 जून तक साउथवेस्ट मानसून जो है पूरा प्रदेश कवर कर चुकी है। पूरा प्रदेश में वर्षा का गतिविधि जो है 1 जुलाई से लेके आगामी 4-5 दिन तक वृद्धि होने की संभावना है। मानसून सक्रिय होने की संभावना है, जिसकी वजह से हर रोज 1-2 स्थानों पर मध्यम से लेके भारी वर्षा होने की संभावना है। आज का स्थिति में देखा है तो पूरा प्रदेश में डेफिशिएंट रेनफॉल लगभग -64% जो है वो डेफिशिएंट में है, और आगामी 3-4 दिन में मानसून सक्रिय होने के वजह से ये थोड़ा कम होने की संभावना है।
0: इस बीच सरगुजा जिले में कल आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 5 साल के बालक समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है। रथ यात्रा के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने गोंदिया पुरी गोंदिया के बीच रथ यात्रा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ये विशेष ट्रेन 2, 9, 16 और 29 जुलाई को गोंदिया से पुरी के लिए चलेगी। वापसी में ये ट्रेन 3, 10, 17 और 30 जुलाई को पुरी से गोंदिया के लिए रवाना होगी। ट्रेन का ठहराव डोंगरगढ़, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर सहित कई प्रमुख स्टेशनों पर रहेगा। वहीं हटिया एलटीटी हटिया समर स्पेशल ट्रेन का परिचालन 15 जुलाई तक बढ़ाया गया है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। भारतीय जनता पार्टी ने महिला मोर्चा में संभाग प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्तियां की हैं। ये सूची भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव की सहमति से प्रदेश महामंत्री और मुख्यालय प्रभारी नवीन मार्कंडे ने जारी की है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF में आरक्षक पद पर भर्ती के दौरान कथित रूप से फर्जी जाति और निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के मामले में उतई पुलिस ने संबंधित आरक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस आरक्षक की सेवा को समाप्त कर दिया गया है। बलरामपुर में आग बुझाने में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी ने फायर इंचार्ज समेत 5 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। बालोद जिले में पुलिस ने नौकरी लगाने के नाम पर ठगी के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला ने 7 लोगों से लगभग 25 लाख रुपए से अधिक की ठगी की है। और सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के डोंगरीपाला थाना क्षेत्र में पुलिस ने गांजा तस्करी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 94 किलो गांजा बरामद किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 9,40,000 रुपए आंकी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना देश भर में कल से लागू होगी। राज्य सरकार ने सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को दिए जाने वाले यूरिया पर लागू 80% की सीमा समाप्त की। राज्य सरकार ने प्रदेश के 156 उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सूची को दिया अंतिम रूप। अब इन्हें शासकीय सेवा में लेने की कार्यवाही शुरू की जाएगी। और मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून आज से पूरे छत्तीसगढ़ में सक्रिय हो गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
2: FM बैंड पर आकाशवाणी का ही रायपुर केंद्र है।

0: एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 7 बज रहे हैं। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम जयमाला आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

जय माला कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पहला गीत मोहम्मद अजीज, कविता कृष्णामूर्ति और साथियों की आवाज़ों में है। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है कर्मा।

0: लीजिए सुनिए भारतीय सेना गीत, गीतकार संगीतकार और गायक कलाकार हैं कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है ये।

0: अभी आप सुन रहे थे भारतीय सेना गीत। गीतकार, संगीतकार और गायक कलाकार थे कैलाश खेर।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

इल्जाम इस फिल्म का गीत सुनिए आशा भोसले और अमित कुमार की आवाजों में। गीतकार हैं अनजान, संगीत है बप्पी लहरी का।

जवानी इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और अमित कुमार की आवाज़ों में। गीतकार हैं गुलशन बावरा, संगीतकार हैं राहुल देवबर्मन।

साथियों, जयमाला कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल पर जाने का। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती।

अंतराल के बाद एक बार फिर से जयमाला कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम का अगला गीत है किशोर कुमार की आवाज में, नगमा निगार है मजरू सुल्तानपुरी, संगीत है राहुल देव बर्मन का, फिल्म का नाम है बुढ़ा मिल गया।

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: हर जाई इस फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में। नगमा निगार है निदा फाजली, धुन है राहुल देव बर्मन की।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जयमाला।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम इंद्रधनुष के अंतर्गत आज पॉप एक्सप्रेस में सुनिए कुछ पॉप गीत। आइए सुनते हैं के और महालक्ष्मी की आवाजों में विशाल ददलानी का लिखा गीत। संगीत है विशाल शेखर का। फिल्म का नाम है पॉपकॉर्न खाओ।

अभी आपने सुना पॉप गीत गुल सक्सेना की आवाज में। गीतकार संगीतकार थे किरण, प्रगति और सौरभ ठाकुर।

0: विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 8 बजे हैं, प्रस्तुत है सबरंग।
1: तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते, फिर खाए पिए के मामला मा एक ठन फार्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो, आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते। ये आप मन ला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़कीन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
2: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मा सुपर हिट।

0: आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने। ये फोर्टिफाइड फूड होते, ये आप मनला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़किन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
1: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मा सुपर हिट।
2: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश, इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
3: मम्मी मम्मी पापा आगे।
4: दक्ष, विराट, कन्हैया, तुहर मन भर मैं गरम गरम समोसा भजिया जलेबी लेके आया हूँ।
3: मम्मी प्लेट लाना।
5: प्लेट के का जरूरत है? तुहर ड्राइंग के कागज में खाओ। कतेक प्लेट ला, मैं मांजा धोत रहा हूँ।
6: ये मस्याही लगे है, समोसा खराब हो जाही, ये मैं नहीं खाना चाहिए।
5: ऐसने में खात खात उम्र बीत गए, कैसे जी?
4: हाँ जी,
3: कागज न्यूज़पेपर मा तेलहा फुलहा खाए पिए के गरम जिनिस ला नहीं रखना चाहिए।
6: एमा केमिकल वाला स्याही लगे रही थे जिन गरम जिनिस संग रासायनिक क्रिया करके ओला जहरीला बना देते।
3: ये कर अलावा प्लास्टिक थर्माकोल या डिस्पोजल कप गिलास मा चाय कॉफी पीना सेहत खराब करते।
2: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
7: आओ ननकू भैया, कैसे हैं? होटल बढ़िया चलत है ना? ग्राहकी वगैरह ठीक है कि नहीं? रोको। अरे भैया, पहली जुन्ना तेल निकाल ले, तेकर बाद नवा तेल डालबे।
8: का है शिव भैया, तेल में तेल नहीं डालू तो जुन्ना तेल ला काय करू?
7: तहू यार,
9: रियूट कुकिंग ऑयल योजना ले बायो डीजल बनाए जाते, जेखर ले आप और आपके वातावरण सुरक्षित रहे।
2: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश, इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।

कुछ बात लिए, जज्बात लिए, खुशनुमा लम्हे साथ लिए, चले आए हैं आपके पास सबरंग की सौगात दिए। नमस्कार, मैं हूँ रेणुका काले, हाजिर हूँ लेकर सबरंग।

खूब पर्दा है, चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं।

चिलमन, पर्दा, नकाब, आवरण, ये सभी शब्द कभी शर्मो हया के चलते, कभी सुरक्षा के लिए, कभी परंपरा के लिए, तो कभी निजता बनाए रखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चीज की ओर इशारा करते हैं। पर्दा करना बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, शायद तब से जब दरवाजे नहीं थे, ताले नहीं थे, तब एक आड़, एक पर्दा घर की निजता की रक्षा करता था। दीवारें छोटी होती थीं, लेकिन पर्दा होता था। तालों की ईजाद से पहले सिर्फ भरोसा होता था।

तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते। फिर खाए पिए के मामला मा एक ठन फार्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते। ये आप मनला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़कीन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती।

0: सुपर हिट।
1: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
2: मम्मी मम्मी पापा आगे।
3: दक्ष, विराट, कन्हैया, तुहर मन भर मैं गरम गरम समोसा भजिया जलेबी लेके आया हूँ।
4: मम्मी प्लेट लाना।
5: प्लेट के का जरूरत है? तुहर ड्राइंग के कागज में खाओ। कतेक प्लेट ला, मैं मांजा धोत रहा हूँ।
6: ये मस्याही लगे है, समोसा खराब हो जाए, ये मन नहीं खाना चाहिए।
5: ऐसने में खात खात उम्र बीत गए, कैसे जी?
3: हाँ जी,
2: कागज न्यूज़पेपर मा तेलहा फुलहा खाए पिए के गरम जिनिस ला नहीं रखना चाहिए।
6: एमा केमिकल वाला स्याही लगे रही थे, जेन हा गरम जिनिस संग रासायनिक क्रिया करके ओला जहरीला बना देते।
2: ये कर अलावा प्लास्टिक, थर्माकोल या डिस्पोजल कप गिलास मा चाय कॉफी पीना सेहत खराब करते।
1: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
7: आओ ननकू भैया, कैसे हैं? होटल बढ़िया चला थे ना? ग्राहकी वगैरह ठीक है कि नहीं? रोको। अरे भैया, पहली जुन्ना तेल निकाल ले, तेकर बाद नवा तेल डालबे।
8: का है शिव भैया, तेल में तेल नहीं डालू तो जुन्ना तेल ला काय करू?
7: तहू यार,
9: रियूट कुकिंग ऑयल योजना ले बायोडीजल बनाए जाते, जेकर ले आप और आपके वातावरण सुरक्षित रहे।
1: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
10: पर्दे कपड़े के मोतियों की लड़ी के रूप में, खस की चटाई के रूप में और फैंसी डिजाइनर रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। आजकल विविध रंगों और डिजाइनों के पर्दे चलन में हैं, जो घर की सजावट में चार चांद लगा देते हैं। कई बार घर के बड़े हिस्से में से कई छोटे हिस्से बनाने हों तो बाहरी पर्दों से उसे अलग किया जाता है, यानी कि पार्टीशन किया जाता है। खस के पर्दे गर्मियों में घर को ठंडा रखने का काम करते हैं। गीली खस से होकर जब हवा आती है तो शीतल सुगंध भी साथ लाती है, जो तन मन को भी शीतल कर देती है। तेरा जलवा है यार पर्दे में, मुझको पर्दे पे प्यार आता है।

0: तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते। फिर खाए पिए के मामला मा एक ठन फार्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते। ये आप मन ला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़कीन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
1: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मा सुपर हिट।
2: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
3: मम्मी मम्मी पापा आगे।
4: दक्ष, विराट, कन्हैया, तुहर मन भर मैं गरम गरम समोसा भजिया जलेबी लेके आया हूँ।
3: मम्मी प्लेट लाना।
5: प्लेट के का जरूरत है? तुहर ड्राइंग के कागज में खाओ। कतेक प्लेट ला, मैं मांजा धोत रहा हूँ।
6: ये मस्याही लगे है, समोसा खराब हो जाही, ये मन नहीं खाना चाहिए।
5: ऐसने में खात खात उम्र बीत गए, कैसे जी?
4: हाँ जी,
3: कागज न्यूज पेपर मा तेल्हा फुल्हा खाए पिए के गरम जिनिस ला नहीं रखना चाहिए।
6: एमा केमिकल वाला स्याही लगे रही थे जिन हा गरम जिनिस संग रासायनिक क्रिया करके ओला जहरीला बना देते।
3: ये कर अलावा प्लास्टिक थर्माकोल या डिस्पोजल कप गिलास मा चाय कॉफी पीना सेहत खराब करते।
2: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
7: आओ ननको भैया, कैसे हैं? होटल बढ़िया चलत है ना? ग्राहकी वगैरह ठीक है कि नहीं? रोको। अरे भैया, पहली जुन्ना तेल निकाल ले, तेकर बाद नवा तेल डालबे।
8: का है शिव भैया, तेल में तेल नहीं डालूं तो जुन्ना तेल लगाए करूं?
7: ताहू यार।
0: रियूट कुकिंग ऑयल योजना ले बायो डीजल बनाए जाते, जेकर ले आप और आपके वातावरण सुरक्षित रहे।
2: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
9: मैंने दरिया से सीखी है पानी की ये पर्दादारी, ऊपर ऊपर हंसते रहना, गहराई में रो लेना। पर्दा कभी गम छुपाने, कभी खुशियों को बुरी नज़र से बचाने, कभी राज की बात को छुपाने के लिए प्रयोग होने वाला शब्द है।

जैसे पर्दा करना शर्म और सम्मान के लिए, पर्दा डालना गलतियों पर पर्दा डालना के अर्थ में प्रयोग होता है। अब पर्दा तो पर्दा है, पर्दे के पीछे कुछ भी हो सकता है।

जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आइए सुने शान और श्रेया घोषाल की आवाजों में स्वानंद किरकिरे का लिखा गीत। संगीत है शांतनु मोइत्रा का, फिल्म का नाम है पीके।

साथियों, चित्रलोक कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं सिद्धार्थ महादेवन और शिल्पा राव की आवाजों में। गीत को लिखा है समीर अंजान ने और फिल्म का नाम है धूम 3।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, इसके साथ ही कार्यक्रम चित्रलोक अब समाप्त होता है।

0: मुख्य समाचार। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। मॉनसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात टेक्सास में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। उन्होंने
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातियों भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। रेलवे ने दक्षिण पूर्वी रेलवे में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की मंजूरी दी है। इससे देश में रेलवे नेटवर्क की डिजिटल संचार व्यवस्था मजबूत होगी। ये परियोजना दक्षिण पूर्वी रेलवे के 4 प्रमुख डिवीजनों में 1600 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के हाई डेंसिटी नेटवर्क और हाईली यूटिलाइज्ड नेटवर्क मार्गों पर स्थित 27 स्टेशनों या डिब्बों में रिले आधारित इंटरलॉकिंग को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से बदलने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। स्वीकृत कार्य में 28 रिले आधारित इंटरलॉकिंग को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणालियों से बदला जाएगा। परियोजना की लागत 400 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक यानी EOCI कार्ड सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन दोनों पहलों से नागरिक सेवाएं बेहतर होंगी और FCRA पोर्टल के माध्यम से विदेशी चंदा प्राप्त करने वाली संस्थाओं को होने वाली कठिनाइयां दूर होंगी। उन्होंने कहा कि सख्त निगरानी व्यवस्था से देश की सुरक्षा और मजबूत होती है। गृह मंत्री ने बताया कि नई EOCI व्यवस्था में पहले की कई समस्याओं का समाधान किया गया है। इससे 50 लाख से अधिक OCI कार्ड धारकों को सुविधा मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि

0: प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। वे आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है।
1: One key pillar which has brought about a transformation.
2: प्रवासन से जुड़े प्रबंधन में बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल व्यवस्था और प्रणालियों से आया है। सुरक्षित और कानूनी आवाजाही के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म में दिखती है। इसकी शुरुआत के बाद से ही 50 लाख से ज्यादा लोगों को विदेश जाने की मंजूरी दी जा चुकी है। यह डिजिटल तंत्र लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के साथ साथ प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का एक वैश्विक उदाहरण बन गया है।
0: विदेश मंत्री ने आज आयरलैंड की विदेश मंत्री हेलेन मैकेंटे को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालने पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि उन्होंने व्यापार और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। वे आज गुजरात के वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था, लेकिन आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 39,000 करोड़ का कर लिया है और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में गुजरात अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है।
0: रक्षा मंत्री ने कहा कि वडोदरा अब देश की निजी क्षेत्र की पहली सैन्य विमान निर्माण इकाई का केंद्र बन गया है। ये टाटा समूह और एयरबस मिलकर C-295 परिवहन विमान बना रहे हैं। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। जनरल धीरज सेठ पुणे स्थित खड़कवासला की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था। इससे पहले जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
4: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत दिल्ली में 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पहले दिन 1,68,200 से अधिक गणना प्रपत्र मतदाताओं को वितरित किए गए। वहीं 7,600 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया गया। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दाखिल की जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी voters.eci.gov.in पर भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपना गणना प्रपत्र जमा किया और राष्ट्रीय राजधानी के सभी पात्र मतदाताओं से मतदाता सूची के चल रहे इस अभियान में भाग लेने की अपील की। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उधर महाराष्ट्र में भी बूथ स्तरीय अधिकारियों ने घर घर जाकर मतदाता रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए सत्यापन अभियान शुरू किया है।
6: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त को जारी की जाएगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। जिन वोटरों का नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में शामिल था, उन्हें आमतौर पर कोई नया दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। बाकी वोटरों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना पड़ सकता है। आयोग का कहना है कि इस अभियान का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए उसका नाम जरूर शामिल हो और जो इसके लिए योग्य नहीं है उसका नाम सूची में ना हो। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में कल से बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को

0: समाप्त कर दिया जाएगा। अब राज्य के सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के तहत संचालित होंगे। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने, उनकी कार्य प्रणाली की निगरानी करने और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का काम करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील और अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से जारी किए गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है और इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका में जन्म लेने वाले लगभग हर व्यक्ति को स्वतः ही अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से कार्यकारी आदेश को गैर कानूनी घोषित किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा है कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई अफगान नागरिक मारे गए और घायल हुए। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और 55,000 तीर्थ यात्रियों के ठहरने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा की 57 दिनों की तीर्थ यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हूल दिवस पर सिधो कान्हू, चंद भैरव, फूलो झानो सहित विदेशी शासन के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाले सभी वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। हूल दिवस के अवसर पर झारखंड में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमनदीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। बृहस्पतिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, ओडिशा में मूसलाधार बारिश की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से अमेरिका के टेक्सास में खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 2 दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन पर सचिवों से बातचीत की। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम आपके लिए मैं सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए मोहम्मद

आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में अगला गीत। गीत है नीरज का, संगीत सचिन देव बर्मन का, फिल्म का नाम है गैम्बलर।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर की आवाज में। गीत के बोल हैं आनंद बख्शी के, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम है आन मिलो सजना।

आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में वो नगमा जिसे लिखा है शिवांत रिजवी ने। तर्ज है ओपी नैयर की, फिल्म का नाम है हम साया।

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीत है सचिन देव बर्मन का, फिल्म का नाम है तेरे घर के सामने।

अगला गीत है लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में, नगमा निगार हैं राजा मेहंदी अली खां, संगीत है मदन मोहन का, फिल्म का नाम है वो कौन थी।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। नगमा निगार हैं साहिर लुधियानवी, संगीत है रोशन का और फिल्म का नाम है बहू बेगम।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। FM बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 9:30 हुए हैं। हम हाजिर हैं लेकर चित्रपट संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में गौहर कानपुरी का लिखा गीत, संगीत है पप्पी लहरी का और फिल्म है जख्मी।

लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में आनंद बख्शी का लिखा गीत। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और फिल्म है दो रास्ते।

लीजिए, अब सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में आनंद बख्शी का लिखा गीत। संगीत है राहुल देव बर्मन का और फिल्म है अजनबी।

चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे। एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 10 बज रहे हैं। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले करते हैं।

छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। कभी कभी जिंदगी में कोई चेहरा यूं ही सामने आ जाता है और फिर वो चेहरा एक आदत, एक दुआ, एक धड़कन बन जाता है। उसे देखते ही मन अनायास कह उठता है, तुझे देखा, लगता है तुझे चाहा। और शायद यही तो प्रेम की सच्ची और मासूम परिभाषा होती है। प्रेम को हमेशा शब्दों की जरूरत नहीं होती, कई बार एक नजर, एक मुस्कान और एक अनकही सी चाहत ही दिल की पूरी कहानी कह देती है। किसी को चाहना उसके साथ होने का नाम नहीं, बल्कि उसके ख्याल से ही मन का महक उठना है।

चलो एक ऐसा संसार बुने जहां सिर्फ प्यार की बारिश होती हो, झीलों पर एक हाउस बोट हो जहां गुजर जाए पूरी जिंदगी, जहां सुबह सुबह हाउस बोट की खिड़की पर कोई धर जाए फूलों की टोकरी, एक ऐसा जहां हो जहां सुबह खिले मुस्कानों के साथ, जहां प्यार भरी गुफ्तगू से नरम धूप खिल जाए, जहां सपनीली आंखों से आसमान की ओर देखें तो शाम खुशगवार हो जाए, मुस्कुराएं तो चांद खिल उठे।

जरा सी बात कहनी थी कि प्यार है तुमसे, पर सदी बीत गई, जुबान से शब्द नहीं फूटे, नहीं कह पाए प्यार है तुम्ही से। पलकों की पंखड़ी में ही बंद रही प्यार की पोटली, शायद सच्चे प्यार की यही है परिभाषा। वो प्यार ही क्या जिसका बार बार बखान किया जाए, वो याद ही क्या जिससे प्यार ना हो, वो याद ही क्या जो हर वक्त दिल के करीब ना हो।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। बंद लिफाफे की तरह है सच्चा प्यार, लिफाफा खुलते ही आंखों को दिख जाती है कागज पर लिखी इबारत। मन की किवाड़ का सांकल खटखटाते ही खुद को खबर हो जाती है कि मन प्यार की गिरफ्त में है। प्यार का वही जमाना भला था जब चुपके से होता था प्यार, पलकों के भीतर रेशमी ख्वाब की तरह बंद, छुई मुई की तरह नाजुक होता था प्यार का वो जमाना। जमाना कोई भी हो, प्यार में इंतजार, समर्पण, किसी के लिए मर मिटने की तड़प हमेशा बाकी रहती है। प्यार में इंतजार बड़ा ही मीठा लगता है।

ढलते हुए रात से गुफ्तगु, चांद का सफर जारी है। चांद का मुस्कुराना उस रोज भी कुछ ऐसा ही था जब हुई थी मुलाकात उनसे। तारों की ओढ़नी पहनकर रात निकल पड़ी थी सैर पर। खूबसूरत हो रात, मनमीत हो साथ, तो बस जिंदगी में और क्या चाहिए।

आंसू और मुस्कान से मिलकर बनती है जिंदगी, पर दिल नहीं मानता। मुस्कानों को अपना हमसफर बनाकर उसी के गले लगना चाहता है, पर कभी कभी आंसू की लड़ियां भी दिल को सहलाती हैं। कई बार ये यादों की घाटी में ले जाकर खुली हवा में छोड़ देती हैं, जहां लम्हों के बेहिसाब फूल होते हैं, जिन्हें छूकर हम हौले से मुस्कुरा देते हैं। आंसू और मुस्कान से बनी जिंदगी से फिर से बे इंतहा मोहब्बत कर बैठते हैं।

0: जाए रात।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पजेश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पजेश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमरीका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर

बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गति शक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। इस दौरान सचिवों ने दो प्रमुख विषयों के अनुरूप अपने मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील तथा अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन

0: विनियमन में ढील तथा अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए।
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातियों भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दे दी है। ये खंड वर्तमान में मानसी साड़ागढ़ मार्ग पर एक सिंगल लाइन कॉरिडोर है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन दीव और राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में टेक्सस में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से हो रहा है। दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। देर रात नॉकआउट चरण में 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। मोरक्को और ब्राजील ने भी अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Kiran Jha. Prime Minister Narendra Modi today had a telephonic conversation with the Iranian President Dr. Masoud Pezeshkian. During the talks, President Pezeshkian briefed Mr. Modi on the recent developments in West Asia and the way forward. The Prime Minister welcomed the understanding reached and reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Mr. Modi reiterated the need for continued efforts to ensure lasting peace and stability in the region and for safeguarding freedom of navigation and commerce. Prime Minister Narendra Modi today interacted with the various secretaries to several ministries at Seva Teerth in New Delhi. The discussion focused on two key themes. The first was deregulation and other reforms for ease of doing business and ease of living, while the second was promoting Atmanirbharta. During the meeting, the Prime Minister stressed the importance of adopting a whole-of-government approach and breaking departmental silos. Highlighting the importance of integrated planning and coordination, Mr. Modi encouraged wider utilization of the PM Gati Shakti as an effective platform for interdepartmental coordination and informed decision making. He exhorted the secretaries to focus on the tangible impact of schemes on the lives of people. The Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen VBG Ramji Act 2000.